मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की नवी तिथि तदनुसार 30 मई सन 2026 प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी दोस्त तुलिका शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये

0: सेंटर शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनते हैं समूह स्वर में ये देशगान।

0: इस भक्ति गीत के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्री केजी माहेश्वरी का आलेख, वाचक हैं यतीन्द्र चतुर्वेदी।
1: मानव का एक स्वभाव है, वो दूसरों की बुराई करने व सुनने में बहुत ही रुचि लेता है। वह नहीं समझता कि जो ही हम किसी की निंदा करते हैं, नरक का द्वार हमारे लिए अपने आप ही खुल जाता है। भले ही आज का मानव विशेष तौर से अपने को शिक्षित कहने वाला मानव, स्वर्ग व नरक में विश्वास न करने वाला मानव है, पर रहीम के शब्दों में रहीमन जिव्वा बाबरी कह गई सरग पताल, आप तो कहे भीतर गई जूती खात कपाल। बहुत से लोग तो ये भी कहते हुए मिल जाएंगे कि निंदा करने से तुरंत ही लाभ प्राप्त होता है। ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि क्षणिक लाभ के लिए हम अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इस निंदा का मूल्य न चुकाना पड़े। इसी भ्रम में एक व्यक्ति ने अमेरिकी पत्र में जेम्स शील्ड नामक व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई। बड़ी चटपटी भाषा में वो पत्र छापा गया। इस पत्र को पढ़कर शील्ड आग बबूला हो गए और पत्र लेखक के गुमनाम होते हुए भी वो उसके घर तक पहुंच गए। बस फिर क्या था, दोनों में बहस हुई और तलवार से द्वंद युद्ध का फैसला हुआ। नियत तिथि को दोनों एकत्रित हुए, पर उनमें से एक व्यक्ति जिसने पत्र छपवाया था द्वंद युद्ध जानता तक न था। खैर, कुछ लोगों ने बीच बचाव करके फैसला किया, तब वह व्यक्ति बच सका। कौन था वह व्यक्ति, जानते हैं? वह अमेरिका के शिखर तक पहुंचने वाले एक राष्ट्रपति थे। इस निंदा के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए यही सलाह है कि वो निंदा से बचें। निंदा करने वाले व्यक्ति के पास आगे पीछे बहुत से लोग एकत्रित हो जाते हैं, उसे उकसाते भी हैं, और वह यह नहीं समझ पाता कि उससे कितना बड़ा पाप हो रहा है। निंदा करने वाला तो दोषी है ही, पर निंदा सुनकर अपना आपा खोना और भी बेवकूफी है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, उस निंदा से हम अपने दोषों को ढूंढने व उन्हें दूर करने का प्रयास करें। निंदक के विरुद्ध मोर्चे बंदी से कोई लाभ नहीं होने वाला। निंदा का बदला निंदा ही नहीं है, क्योंकि बैर का वृक्ष बड़ी तेजी से फलता फूलता है। कभी कभी तो पुस्त दर पुस्त यह बढ़ता ही जाता है। तब आप ही सोचिए कि यह सौदा कितने घाटे का है। अच्छे व घनिष्ठ मित्र इसी के कारण कभी कभी कटु शत्रु बन जाते हैं। जिन्हें हम प्यार करते हैं, उन्हीं को कभी मिट्टी का तेल डालकर भस्मसात करने से भी हम नहीं चूकते। निंदा के चलते

0: आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक हानि तो होती ही है। निंदा करने वाले को लोग दूर से ही पहचान लेते हैं। अतः इस व्यसन से बचें, तभी कल्याण हो सकता है। यदि हम किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो न सही, पर निंदा तो न करें। निंदा करने वाले न तो मानव को देखते हैं और न ही भगवान को, इसीलिए निंदा से बचना ही श्रेयस्कर है।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे केजी माहेश्वरी का आलेख, वाचक थे यतीन्द्र चतुर्वेदी। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं, जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धैर्य की झूठी ध्वजा फहराने के दम भी और कपट के धंधों का बोझ ढोते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर और ज्ञानी। कहते हैं, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूं। कहां तो प्रभु का आपार चरित और कहां सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुधी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती सुनकर राम कथा सुनते हुए कोई उन्हें दोष ना दे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। आम के पौधों में कीट नियंत्रण, इस विषय पर आज जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, आम देश का प्रमुख फल है और इसका उत्पादन भी दूसरे फलों की अपेक्षा अधिक होता है। आम के उत्पादन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। ऐसी फसलों की पूर्ण देखभाल के साथ साथ सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए। आम की फसल में मुख्य समस्या कीटों से होती है, जिससे 20-80% तक आर्थिक नुकसान होता है। आम की फसल में मुख्यतः आम का फुदका कीट नुकसान पहुंचाता है। यह कीट आम के अतिरिक्त नींबू प्रजाति के पौधों पर भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आम का पौधा फुदका कीट का मुख्य परपोषी पौधा है। फुदका कीट की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, रंग गहरा सफ़ेद और सिर पर 3 धब्बे पाए जाते हैं। पिछला हिस्सा सकरा होता है। यह कीट आम पर बौर आते ही सक्रिय होकर जून माह तक सक्रिय रहते हैं। इस कीट की मादा पत्तियों के मध्य सिराओं, फूलों के डंठलों और फलों में एक एक करके छेद कर अंडे देती है और एक मादा कीट लगभग 200 अंडे अपने जीवन काल में देती है। यह कीट प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आम के बौर को नुकसान पहुंचाते हैं। आम के पौधों पर निम्फ और वयस्क कीट असंख्य संख्या में फूलों से, कलियों से और फलों के छोटे डंठलों से रस चूसते हैं, जिसे फूल और फलों का झड़ना शुरू हो जाता है। रस चूसने की प्रक्रिया से निम्फ और वयस्क दोनों ही कीट एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ मधुस्राव छोड़ते हैं, जो फूल और पत्तियों पर जमा हो जाते हैं। फूलों पर जमा हो जाने से फूलों में परागण नहीं हो पाता है, जिससे फलों की संख्या में कमी आ जाती है। साथ ही चिपचिपे पदार्थ के पत्तियों पर जमा हो जाने से उन पर काली फफूंद जमा हो जाती है, जिससे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रुक जाती है। फलों का आकार छोटा रह जाता है। आम की फसल को नुकसान से बचाव के लिए फुदका कीट के नियंत्रण के लिए सभी उपाय अपनाने चाहिए। फुदका कीट के नियंत्रण के लिए धुआं करने वाली मशीन द्वारा 2 भाग मेलाथियन और 8 भाग डीजल में मिलाकर धुआं करने से फुदके के प्रकोप को बहुत अच्छी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। मोनोक्रोटोफास का छिड़काव भी कीट नियंत्रण का प्रभावकारी उपाय है। इसी तरह चूड़ी फफूंद बीमारी लगती है, जिससे पौधों की पत्तियों, फूलों और फलों पर सफ़ेद पाउडर की एक परत सी जमा हो जाती है, जिसके कारण फूल और फल बनने के पूर्व ही गिरने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए रोग के लक्षण प्रकट होते ही केराथिन या क्लेक्जिन 1 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी के अनुपात में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। आम के बगीचों की समय समय पर सफाई करते रहें। आवश्यकता अनुसार पौधों की कटाई छटाई करते रहना चाहिए, जिससे हवा और धूप का आवागमन होता रहे। जहाँ पर पानी भरने की समस्या आती हो, वहाँ पर जल निकास की पूर्णतः व्यवस्था करनी चाहिए। कभी कभी नमी की कमी से भी फल पकने से पूर्व ही गिरने लगते हैं। फलों की बढ़ोतरी और वृद्धि के लिए उचित नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। उचित नमी के लिए नियमित अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पौधों पर अगर 2% यूरिया का घोल बनाकर छिड़काव किया जाए, जिससे फलों को गिरने से रोका जा सकता है। 2,4-D 10 ppm का घोल बनाकर छिड़काव करने से आम को गिरने से रोका जा सकता है, क्योंकि 2,4-D हार्मोन्स का कार्य करता है। फल पौधों से गिरने से नियंत्रित होंगे, जिससे फलों की पैदावार निश्चित रूप से बढ़ेगी। आम पर बौर आते ही कीट नियंत्रण के सभी उपाय अपनाने चाहिए।
0: कार्यक्रम कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे जानकारी आम के पौधों में कीट नियंत्रण। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम।

0: पंछी बोले पते की बात, जंगल धरती की सौगात, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, धरती की खुशियां लौटाएं।
1: जो होंगे जंगल तो आएंगे बादल, बरसेगा पानी, धरती की चूनर हो जाएगी धानी, और पंछी छेड़ेंगे

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छान कर उबाल कर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।
4: भाई,
5: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
4: ए भाई।

0: सूचना परक कार्यक्रम दर्पण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब दिल्ली से हम अनुप्रसारित कर रहे हैं। 7:00 हिंदी में समाचार दिल्ली से ही अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः नूतनस्य क्वाड्रिपार्टाइड सिक्योरिटी ग्रिड इत्यस्य प्रवर्तनेन सीमप्रबन्धने प्रमुखस्य परिवर्तनस्य घोषणाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् अस्माकं सीमायाः रक्षणम्, अवैधप्रवासस्य निर्मूलनं च राष्ट्रस्य जनसांख्यिक्याः रक्षणाय महत्वपूर्णमस्ति। सः ह्यः गुजरातस्य भुजनगरे भारत पाकिस्तान सीमायां सामरिकदृष्ट्या महत्वपूर्णानां G7 तथा G13 बॉर्डर आउटपोस्ट इत्येतेषाम् उद्घाटनानन्तरं सैनिकान् जनसमूहं च संबोधयन् आसीत्।
2: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा

0: टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेगी और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मंत्रिमंडलस्य मंत्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः व्यापारनेतारः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारत यात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ती पेट्रोलियम मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतमस्तरे अस्ति, यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 92,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता, यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानाम् एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीयशिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विण्टल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयनासीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडाङ्गणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7 पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे निर्णायकस्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
0: बीएसएफ के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान

0: इस सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:20 पर आप सुनेंगे वार्ता, बूंद बूंद से घट भरता है। वार्ताकार होंगे दिनेश पाठक। 7:30 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। 8:00 समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम अनुप्रसारित करते हैं।

आज सुबह 8:30 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में पॉडकास्ट जनगणना 2027 में नया क्या है। जिला जनगणना अधिकारी ग्वालियर श्री अनिल बनवारिया से बात करेंगे सुमित गौतम। 9 बजे सूचनाओं और समाचारों का कार्यक्रम होगा गुड मॉर्निंग ग्वालियर। 9:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे निर्भय सक्सेना का शास्त्रीय गायन।

हम अपने श्रोताओं को बता दें 10 बजे आप सुनते हैं रोजाना भोपाल से जिले की चिट्ठी। और आज चूंकि शनिवार है, आज के दिन होता है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। कार्यक्रम का समय होता है 10:05। श्रोताओं, कल यानी 31 मई को है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसी विषय पर हम आपको सुनवाएंगे एक बातचीत, नशा एक मानसिक बीमारी। डॉक्टर प्रियंका शर्मा से बात करेंगी इस विषय पर तूलिका शर्मा। 10:50 पर फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा और 11 बजे से सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे। हमारी सायंकालीन सभा भी आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी, जिसमें शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी। सात बजकर 20 मिनट पर हमारे केंद्र से श्रोता सुनेंगे चौपाल कार्यक्रम। इसमें चर्चा होगी स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया इस विषय पर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस पर भी चर्चा की जाएगी। ग्रामीण बच्चे चौपाल कार्यक्रम के ही अंतर्गत अपना कार्यक्रम सुनते हैं फूलबगिया। आज बच्चों से चर्चा का विषय होगा वृक्षों से दोस्ती करें, पेड़ लगाएं। इसके अलावा बच्चों को डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव की वार्ता सुनवाई जाएगी, जिसका विषय होगा जैव विविधता से पर्यावरण संरक्षण। रात 8 बजे से लेकर सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:10 होने को है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम अनुप्रसारित करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वांग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज गया पहुंचेंगे। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीएसएफ को नई जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार।

0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए, प्रदेश के धार्मिक स्थलों पर बेहतर सुविधाओं के लिए व्यवस्थाओं का अध्ययन जारी। और आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया, कल आरसीबी से होगा फाइनल मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग वाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। यहां वे महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे दिल्ली पहुंचकर विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। वहीं सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी अहम बैठक होगी, जिसमें दोनों देशों के आपसी संबंधों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को नई और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। गुजरात के भुज में कल भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई चौकियों का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने बताया कि अब सिर्फ सीमा की रखवाली नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की नई अवधारणा पर काम होगा। श्री शाह ने कहा,
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि राज्य सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। डॉ. यादव ने कहा कि महाकाल मंदिर, ओमकारेश्वर, भोशाला जैसे धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए देश के बड़े तीर्थस्थलों से सीख ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय खरीफ कृषि सम्मेलन में कहा है कि इस बार खरीफ सीजन के लिए जरूरत से 11% ज्यादा बीज उपलब्ध हैं। मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए 1.74 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार भी तैयार रखा गया है। किसानों को योजनाओं का सीधा फायदा मिले इसके लिए अब तक करीब 9.76 करोड़ फार्मर आईडी भी बनाई जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि तिरुवनंतपुरम के सीमी कंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश की पहली एज एआई चिप नेत्रा A2000 तैयार कर ली है। ये चिप उन्नत 12 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित है। इसका इस्तेमाल निगरानी, ड्रोन, रोबोटिक्स और ऑटोमोटिव जैसे क्षेत्रों में होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार के डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत ये एक बड़ी कामयाबी है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। सरकारी तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। किसी भी वितरण केंद्र पर आपूर्ति बाधित नहीं हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीएम सूर्यघर योजना प्रदेश में रंग ला रही है। प्रदेश में अब तक 1,29,000 से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके हैं और 456 मेगावाट से ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। लाभार्थियों को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी भी दी जा चुकी है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के 6 लाख घरों को इस योजना से जोड़ना है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बनाया है। 100 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के मुकाबले 104 लाख 22 हजार मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीद

0: दिया गया है। सरकार की तरफ से 13 लाख से अधिक किसानों को 23,708 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया
1: कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और सर्वाधिक लंबे समय तक किसी राज्य ने गेहूं खरीदी की व्यवस्था जारी रखी तो वो भी मध्य प्रदेश। सर्वाधिक गेहूं उपार्जन वाले राज्य की तरफ से देखता हूं तो गेहूं की मात्रा में भी पंजाब के बाद मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है जिसके पास गेहूं का इतना विपुल उत्पादन के बाद उन्होंने परचेसिंग की है।
0: भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कल पति समर्थ सिंह और सास किरबाला सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। सास पर सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप है। 12 मई की रात कटारा हिल्स में ट्विशा की मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ कल परिवार ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा में ट्विशा की अस्थियां विसर्जित की। केंद्र सरकार ने पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव जल्द ही यूनेस्को भेजा जाएगा। ये दर्जा मिलने के बाद पेंच को अंतर्राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ रिसर्च के लिए विदेशी फंडिंग भी मिलेगी। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा की तारीखें बदल दी गई हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने कल नई समय सारणी जारी की। पहले ये परीक्षा 1 से 6 जून के बीच होनी थी लेकिन अब ये 16 से 23 जून तक होगी। इसके बाद 24 से 28 जून के बीच कॉपियां जांची जाएंगी। उर्दू के मशहूर शायर और पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र को कल भोपाल में श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में हुई शोक सभा में बड़ी तादाद में शायर, साहित्यकार और नागरिक जमा हुए। 28 मई को उनका निधन हो गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1999 में पद्मश्री से नवाजा था। और अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच मौसम ने करवट ली है। कल ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश हुई और तापमान एक झटके में 10 डिग्री तक गिर गया। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना, नीमच समेत 9 जिलों में ओले और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में कल गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 214 रन बनाए लेकिन गुजरात ने लक्ष्य 18 ओवर से पहले ही हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सिर्फ 53 गेंदों पर 104 रन की धमाकेदार पारी खेली और प्लेयर ऑफ द मैच बने। कल अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे फाइनल में गुजरात का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 2027 तक सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का काम जारी है। शिवपुरी में कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में टीकाकरण महाअभियान की प्रगति का जायजा लिया। झाबुआ में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कलेक्टर ने इस साल दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने का लक्ष्य तय किया। आगरमालवा में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दोषी पाए गए लोगों पर अपर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। अनूपपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। ग्वालियर में सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर पीएम सूर्य घर योजना के तहत बिजली बचत का काम किया जा रहा है। डिंडौरी में किसानों को खाद अब ई टोकन प्रणाली के जरिए दी जाएगी ताकि समय पर और आसानी से उर्वरक मिल सके। पन्ना में गर्मियों में पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इंदौर के ग्राम आशापुरा में 10,000 गौमाताओं की देखभाल के लिए एक बड़ी गौशाला विकसित की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं वार्ता बूंद बूंद से घट भरता है। वार्ताकार हैं दिनेश पाठक।
1: श्रोताओं, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक युद्ध और तनाव के कारण पैदा हुए तेल संकट से निपटने के लिए हम सभी देशवासियों के सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। उन्होंने हमसे कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने की अपील की है। इनमें कुछ समय तक सोना नहीं खरीदने, विदेश यात्रा से बचने, पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करने, कार पूलिंग करने, प्राकृतिक खेती अपनाने और यहाँ तक कि अपनी रसोई में खाने का तेल कम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। वास्तव में ये बिंदु सिर्फ एक तात्कालिक संकट का समाधान नहीं है, बल्कि ये दीर्घकाल में यानी आने वाले कई दशकों तक हर आम भारतवासी के जीवन को समृद्ध, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने वाले हैं। आइए आज इसी बाबत चर्चा करते हैं। श्रोताओं, जब दुनिया के किसी दूरवर्ती कोने में युद्ध होता है तो हमें लगता है कि हमारा इससे क्या लेना देना, हम तो सुरक्षित हैं। लेकिन आज की दुनिया आपस में इतनी जुड़ी हुई है कि विश्व के किसी भी भाग में होने वाली हलचल का सीधा असर हमारी दैनंदिन गतिविधियों, हमारी जेब और यहाँ तक कि हमारी रसोई पर भी पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। जब युद्ध के कारण तेल की सप्लाई रुकती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगते हैं। सरकार को तेल खरीदने के लिए अपना कीमती विदेशी मुद्रा भंडार पानी की तरह बहाना पड़ता है। इसका सीधा असर हमारे रुपये की कीमत पर पड़ता है। महंगाई बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव आता है। वर्तमान हालात ऐसे ही हैं। इनका सामना करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो रास्ते बताए हैं वे असल में आपदा को अवसर में बदलने के मंत्र हैं। आइए एक एक करके इन बिंदुओं का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे भविष्य को कैसे संवारेंगे। शुरुआत करते हैं हमारी रसोई से। प्रधानमंत्री जी ने खाने के तेल का उपयोग कम करने की सलाह दी है। पहली नज़र में यह एक सामान्य आर्थिक सलाह लग सकती है, लेकिन इसके पीछे दीर्घकालिक स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा चक्र छिपा है। दरअसल भारत पाम ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सूरजमुखी जैसे खाद्य तेलों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है। हम अपनी ज़रूरत का करीब 60-65% खाने का तेल इंडोनेशिया, मलेशिया, यूक्रेन और अर्जेंटीना जैसे देशों से मंगाते हैं। हर साल अरबों डॉलर सिर्फ खाने का तेल आयात करने में खर्च हो जाते हैं। जब हम रसोई में तेल की खपत कम करेंगे तो देश का पैसा देश में बचेगा। अगर हम इसे अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पाएंगे कि वर्तमान में भारत में दिल की बीमारियां, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ महामारी की तरह फैल रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है भोजन में अत्यधिक और बार बार गर्म किए गए तेल का इस्तेमाल। जब हम खाने में तेल की मात्रा कम करेंगे तो हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसे LDL कहते हैं, इसका स्तर कम होने से दिल की बीमारियों का खतरा आधा हो जाएगा और आने वाली पीढ़ी ओबेसिटी यानी मोटापे से बची रहेगी। इसके फलस्वरूप अस्पतालों और दवाइयों का भारी भरकम खर्च बचेगा। जो पैसा आज हम स्वस्थ रहने के लिए खर्च कर रहे हैं वह पैसा कल हमारे बच्चों की उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य के काम आएगा और दीर्घकाल में एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा। दूसरा बिंदु है अगले एक साल तक सोना ना खरीदना। श्रोताओं, भारत में सोने को सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच माना जाता है। शादी ब्याह हो या त्यौहार, हम भारतीय सोना जरूर खरीदते हैं, लेकिन कच्चे तेल के बाद भारत का सबसे बड़ा आयात बिल सोने का ही होता है। हम हर साल सैकड़ों टन सोना विदेशों से मंगाते हैं जिसके लिए हमें विशुद्ध रूप से डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। वैश्विक संकट के समय यदि हम सोना खरीदने की जिद छोड़ दें तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहेगा, जिससे रुपये की सेहत सुधरेगी। अगर आम भारतीय सोना खरीदना कम करेगा तो वह अपना पैसा म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, सरकारी बॉन्ड या शेयर बाजार में निवेश करना सीखेगा। यह पैसा बैंकों के माध्यम से देश के नए स्टार्टअप्स, उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, बिजली, पानी के कामों में लगेगा, जिससे नए रोजगार पैदा होंगे। श्रोताओं, आजकल एक फैशन चल पड़ा है कि छुट्टियां मनानी हैं तो थाईलैंड, यूरोप या दुबई जाओ, शादियां करनी हैं तो विदेशों के महंगे रिसॉर्ट्स बुक करो। जब कोई भारतीय नागरिक पर्यटन हेतु विदेश जाता है तो वह भारतीय रुपये को डॉलर, यूरो या पाउंड में बदलकर वहां खर्च करता है। इससे भारत की संपत्ति बाहर जाती है। यदि हम इस पैसे को देश के अंदर ही खर्च करें तो दीर्घकाल में इसके चमत्कारिक

परिणाम दिखाई देंगे। पहली बात तो यह है कि भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और पूर्वोत्तर की वादियों से लेकर राजस्थान के किलों तक दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं। जब हम अपने देश में घूमेंगे तो हमारे टैक्स का

समझदारी से इस्तेमाल को लेकर है। हमारे बीच ऐसे कई लोग हैं जो घर से थोड़ी दूर जाने के लिए भी मोटरसाइकिल या कार की चाबी उठा लेते हैं। गाड़ियां हमारी सुविधा के लिए हैं, ये बात सही है, लेकिन उनका बेतहाशा इस्तेमाल हमारे भविष्य को अंधकार में धकेल रहा है। मान लीजिए आप रोज़ाना अनावश्यक रूप से 5 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। आज के ईंधन के दामों के हिसाब से आप हर महीने लगभग 1500 से 2000 रुपये का तेल फालतू जला रहे हैं। अगर आप छोटी दूरियों के लिए पैदल चलना या साइकिल चलाना शुरू कर दें तो साल भर में आप 20000 रुपये से ज़्यादा की बचत कर लेंगे। रोज़ाना 1-2 किलोमीटर पैदल चलने से आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी आपके दिल की सेहत सुधरती है, पैर मजबूत होते हैं और आपको अलग से जिम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोज़ाना थोड़ा थोड़ा ईंधन बचाकर महीने के अंत में आप एक अच्छी खासी रकम बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को जो 5वां सुझाव दिया है वो कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो या फिर सिटी बस को अपनाने से जुड़ा है। अगर किसी बड़े शहर में आप रोज़ अपनी कार से अकेले दफ्तर जाते हैं, घंटों ट्रैफिक जाम में फंसते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, चिड़चिड़ापन आता है और दफ्तर पहुँचते पहुँचते आप थक जाते हैं। इसके बजाय अगर आप अपने ही ऑफिस के 2-3 साथियों के साथ कार पूलिंग शुरू कर दें या सप्ताह में 3 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं तो गाड़ी चलाने का तनाव खत्म हो जाएगा। अगर 5 लोग अपनी 5 अलग गाड़ियां निकालने की बजाय एक कार शेयर करें या मेट्रो से जाएं तो सड़कों पर गाड़ियों की संख्या 80% कम हो सकती है। इसका मतलब है कम ट्रैफिक जाम, समय की बचत और सफ़र का कम तनाव। कार पूलिंग करने से सहकर्मियों और पड़ोसियों के बीच बातचीत बढ़ती है, संबंध मजबूत होते हैं। आज के इस दौर में जहां लोग डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं वहां यह सामाजिक जुड़ाव मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। जब आपकी कार हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन चलेगी तो उसका वियर एंड टीयर कम होगा, सर्विसिंग का खर्च आधा हो जाएगा और गाड़ी की रीसेल के समय अच्छी कीमत भी लगेगी। साथ ही सड़कों पर ट्रैफिक कम होने से हर नागरिक का कीमती समय बचेगा। सड़कों पर गाड़ियाँ कम होंगी तो ईंधन का उपभोग कम होगा जिससे ईंधन के कच्चे तेल के आयात का बोझ भी कम होगा। श्रोताओं, कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ वर्ष पूर्व हमारे किसान भाइयों ने रासायनिक खादों का उपयोग शुरू किया था, लेकिन आज उन केमिकल फर्टिलाइजर्स के नुकसान हमारे सामने आ रहे हैं। रासायनिक खादों के अंधाधुंध इस्तेमाल से हमारी धरती बंजर हो रही है। प्राकृतिक खेती जिसमें गोबर, गौमूत्र, केंचुए की खाद से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो हमेशा के लिए बची रहती है, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कम करने के पीछे आर्थिक पक्ष यह है कि यूरिया और अन्य रासायनिक खादों को बनाने के लिए कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की ज़रूरत होती है जिसे भारत भारी सब्सिडी देकर विदेशों से मंगाता है। प्राकृतिक खादों के प्रयोग से देश का अरबों रुपये का खर्च बढ़ेगा। जब हम और आप इस प्राकृतिक खेती से उपजा हुआ अनाज और सब्जियाँ खाएंगे तो हमारे शरीर में जो धीमा जहर जा रहा है, स्लो पॉइजन जिसे हम कह सकते हैं, वो बंद हो जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ी तंदुरुस्त पैदा होगी। प्राकृतिक खेती हमें हानिकारक रसायनों से मुक्त शुद्ध और पौष्टिक भोजन देगी। जब देश का नागरिक शुद्ध खाएगा तो बीमार कम पड़ेगा और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होगा। श्रोताओं, संकट चाहे युद्ध का हो या महामारी का, वह हमें हमेशा एक सबक देकर जाता है। प्रधानमंत्री जी द्वारा बताए गए ये बिंदु केवल एक इमरजेंसी प्लान नहीं है, ये असल में हमारी प्राचीन भारतीय जीवन शैली का हिस्सा है जिसे हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में भूल चुके थे। कम तेल मसाले का सात्विक भोजन, सादा जीवन, अपने देश की मिट्टी और पर्यटन स्थलों से प्रेम, प्रकृति के अनुकूल खेती और संसाधनों का संयमित उपयोग, यह हमारी संस्कृति रही है। जब एक आम भारतवासी इस आदतों को अपने जीवन का स्थायी हिस्सा बना लेगा तो दीर्घकाल में हमारा देश किसी भी बाहरी संकट से पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। फिर दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी युद्ध हो, तेल की कीमतें बढ़ें या घटें, भारत अडिग रहेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। आइए आज ही से हम अपने घर में, अपनी रसोई में, आवागमन में इन बातों का ध्यान रखें, एक जिम्मेदार नागरिक बनें और भारत को शक्तिशाली बनाएं। प्रधानमंत्री जी द्वारा देशवासियों को दी गई ये सलाह कोई पाबंदी नहीं है बल्कि ये स्मार्ट लिविंग का एक रोड मैप है। जब हम अपनी रसोई में तेल कम करते हैं, सोना खरीदने की जगह निवेश करते हैं, अपने देश में घूमते हैं, ईंधन बचाते हैं और प्राकृतिक उत्पाद अपनाते हैं तो हम सिर्फ देश की मदद नहीं कर रहे होते, हम सबसे पहले अपने परिवार की जेब, सेहत और सुखद भविष्य की नींव रख रहे होते हैं। यह बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन आज उठाया गया आपका एक छोटा सा कदम आने वाले 10, 20 और 50 सालों में एक समृद्ध और स्वस्थ भारत का निर्माण करेगा।

बूंद बूंद से घट भरता है। अभी आपने दिनेश पाठक से उनकी ये वार्ता सुनी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम, लेकर हाजिर है आपकी दोस्त तूलिका। ये हैं लता मंगेशकर फिल्म कारवां में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। अगला गीत आपको सुनवाते हैं इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा यह गीत है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, फिल्म का नाम कालीचरण और आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम को आइए सुनते हैं। गीत सहल लुधियानवी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम दाग।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी की लिखी ये गीत रचना। बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में फिल्म ज्योति के लिए इसे गाया है लता मंगेशकर ने।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम का ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म मेरा गांव मेरा देश से है। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और आइए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का ही गाया फिल्म समाधि का ये गीत। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन।

सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को

0: देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार। इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है और उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonir.gov.in पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
2: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में द कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक

0: शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। एक महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इनकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is

0: Thank you, Naresh. Ministry of Home Affairs clears record CAPF deployment for 57-day Amarnath pilgrimage, says the Pioneer. IMD lowers monsoon outlook and puts off date of onset to June, is a top headline in the Hindu. Decades driest monsoon looms. Met cuts estimate to 90% of 50-year average, notes the Indian Express. Under the headline, next energy challenge, cheap power, costly transition, Financial Express writes that though consumers understand the long-term savings for a push to green energy, the challenge is affordability at the point of purchase. Hindustan Times carries a picture of Blue Origin's New Glenn rocket exploding in a massive fireball during a test on a Florida launch pad as the firm was preparing the vehicle for its fourth launch, slated to deploy a batch of satellites for Amazon's Leo. In its editorial, Breather for Now, For How Long? The Times of India writes that as a tentative US-Iran deal awaits Trump's signature, the global economy is hoping for a break. But geopolitics, as well as politics in Trump camp and among Iran hardliners, means conflict can restart after a few months. And finally, demand for gold turning cold on steep duty hike. Under that headline, the Economic Times says that gold sales have fallen 70% on muted customer sentiment, already hurt by surge in fuel and food prices. And with that, it's back to you, Naresh.
1: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a five-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under-20 Athletics Championships in Hong Kong, clinch 7 medals, including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण होने के क्रम में ये पॉडकास्ट, जिसका विषय है जनगणना 2027 में नया क्या है। इस विषय पर जिला जनगणना अधिकारी ग्वालियर श्री अनिल बनवारिया जी से बात कर रहे हैं सुमित गौतम।
3: किसी भी देश की जनसांख्यिकी, उसकी विविधता, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और उसमें रहने वाले नागरिकों की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए जनगणना एक बहुत जरूरी माध्यम है। जनगणना 2027 की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसका पहला चरण चल रहा है। इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटली की जा रही है। जनगणना की प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए आज हमने अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है जिला जनगणना अधिकारी ग्वालियर अनिल बनवारिया जी को। स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद सुमित जी।
5: सबसे पहला तो सवाल पूछूंगा आपसे कि जनगणना क्या है और इसकी प्रक्रिया किस तरीके से की जाती है, और इसके बारे में बताइए अपने जिले में कौन कौन अधिकारी, कौन कौन लोग हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में अपने हिस्सेदारी दे रहे हैं।
4: ये जनगणना निदेशालय द्वारा पूरे संपूर्ण भारत में जनगणना, जो कि पूर्व में 2011 में हुई थी और अब इस वर्ष 2027 के आधार पर जो है जनगणना की जा रही है। ये जनगणना दो चरणों में है। पहला चरण अभी 1 मई से 30 मई तक है, जिसमें कि मकानों का सूचीकरण, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स, एक एक घर घर जाके जो है मकानों का चिन्हीकरण, और द्वितीय चरण इसका जो है फरवरी में, 1 फरवरी से 28 फरवरी तक होगा, जिसमें कि व्यक्तियों की जनगणना की जाएगी और अन्य संबंधित जो आंकड़े निदेशालय द्वारा चाहे जाएंगे उसके आधार पर जनगणना की जाएगी।
5: जी,
4: अधिकारियों का प्रश्न है तो हमारे सर्वोच्च इसमें संभागीय जनगणना अधिकारी हैं, जो कि हमारे आयुक्त महोदय हैं। जिले स्तर पर कलेक्टर महोदय हमारी जिला प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी हैं। नगर निगम में प्रमुख नगर जनगणना अधिकारी आयुक्त महोदय नगर निगम हैं। जिला जनगणना अधिकारी के रूप में मैं आपके समक्ष बैठा हूँ, और नगर जनगणना अधिकारी के रूप में मुनीश शिकरवार हैं, जो नगर निगम का काम देख रहे हैं।

0: तो पूरा स्पष्ट है। उनके नीचे फिर चार्ज ऑफिसर हैं जो कि तहसीलदार रैंक के हैं या नगर निगम में जोनल ऑफिसर हैं उस रैंक के हैं, नगर पालिका हैं उनके CMO हैं, नगर परिषदों के CMO हैं, उनके नीचे सुपरवाइज़र और फिर प्रगणक। एक सुपरवाइज़र के अंडर में लगभग 6 के औसत से जो है प्रगणकों को रखा गया है और वो उनको मॉनिटर करते हैं और सुपरवाइज़रों को और प्रगणकों की मॉनिटरिंग चार्ज ऑफिसर करते हैं। इस तरह से इसका प्रशासनिक सेटअप है।
1: जैसे कि यह प्रक्रिया बड़ी विशाल है, बड़ी बारीकी से इन प्रक्रियाओं को अपने को निभाना पड़ता है, तो ऐसे में एक बड़ी तैयारी रही होगी काफ़ी पहले से, तो उस तैयारियों के बारे में बताएं कि कैसे प्रगणकों को अपन ने ट्रेन किया और ये पूरा जो प्रशासनिक अमला है हमारे साथ लगा हुआ, तो उनके काम क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं।
0: सबसे पहले तो भोपाल स्तर पर जो मास्टर ट्रेनर थे उनकी ट्रेनिंग हुई थी और तीन मास्टर ट्रेनर ज़िले में आए थे। उसके बाद में फिर हमारे जो ज़िले के जो मास्टर ट्रेनर हैं उनको उन्होंने ट्रेनिंग दिया था, भोपाल से जो ट्रेनिंग लेके आए थे, और उसके आधार पर जो ट्रेनिंग, ये हमारी अप्रैल माह में ही पूरी हो गई थी 15 के पहले। और उसके बाद स्वगणना का भी इसमें एक ऑप्शन था कि व्यक्ति जो है स्वयं चाहे तो सीधे जो अपने मोबाइल से या ऐप पर जाकर जो है वो अपनी स्वगणना कर सकता है, जो सेल्फ एन्यूमरेशन कहा जाता है, SEID अपनी निर्मित करके उसको कर सकता है। उसका पूरी एक संपूर्ण प्रक्रिया दी गई थी, काफ़ी लोगों ने इसमें भाग लिया, करीब 10,000 लोगों ने सेल्फ आईडी से जो अपना स्वगणना का वो किया। और उसमें स्वगणना में फिर बाद में हमारा जो प्रगणक है उसके बाद में गणना करने के बाद उसका एक आईडी का एक नंबर आता है, वो नंबर को सुरक्षित रखा उसने। और जब प्रगणक मौके पर जो 1 और 30 मई के बीच में पहुंच रहा है तो जिन्होंने किया वो अपनी आईडी वो नंबर दे देते हैं, तो उसको चेक वो अपने स्तर से करते हैं कि जिससे जो जानकारी भरी है उसमें कोई गलती तो नहीं है, तो उसमें सुधार करने का ऑप्शन प्रगणक के पास में रहता है।
1: ये जो प्रक्रिया है जो सेल्फ एम्यूनरेशन की, ये पहली बार शायद इस
0: पहली
1: बार किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जनगणना है पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या चुनौती रही, 2011 में भी आप किसी न किसी माध्यम से इसका हिस्सा रहे होंगे, और आज 2026 में क्या अंतर है, क्या बदलाव आया है इस बीच में, और किस तरीके की चुनौतियाँ हैं नई
0: चुनौतियाँ? तो चूँकि संचार के माध्यम बढ़े हैं और लोगों की सुविधाएं बढ़ी हैं, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, तो उन सब बातों को समावेश करते हुए जनगणना निदेशालय द्वारा 33 प्रश्नों का एक क्वेश्चनर बनाया गया था। और वो क्वेश्चनर जो है हर प्रगणक जो है हर व्यक्ति से घर घर जाकर जो है उसको वहाँ मोबाइल पर ही उसने जो है उसको पूछा है। तो ये पहली बार हो रहा है कि डिजिटल जनगणना है, इसमें कहीं भी त्रुटि की कोई भी संभावना नहीं है। इसके पहले जो HLB-ओं का निर्माण हुआ, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स को भी जो है चार्ज ऑफिसर ने तैयार किया कि एक HLB में कितने घर आएंगे, वो नक्शे पहले ही से उसके मतलब बना लिए गए थे, उसको अपलोड कर दिया गया था जनगणना के सॉफ्ट उस पर पोर्टल पर, और उसके बाद फिर फील्ड में जाके उसका वेरिफिकेशन, एक एक घर घर का वेरिफिकेशन हुआ। इस जनगणना का जो मूल लोगो रखा गया या मंत्र रखा गया कि कोई भी मकान छूटे नहीं और कोई भी मकान डबल एंट्री ना हो, इसकी दोहराव ना हो, तो इस बात पर हमने पूरा ध्यान रखा। समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जो है इसमें मीटिंग के माध्यम से, राज्य भोपाल से भी जो है हमारे जो जनगणना निदेशक आए जो है श्री संजीव श्रीवास्तव साहब, उनके द्वारा भी जो है मीटिंग भी लिया गया, वो फील्ड पर भी उन्होंने भ्रमण किया, डाटा को भी चेक किया, और लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें जो त्रुटियां प्रगणक कर रहे हैं उनको भी हम दोबारा से करेक्ट करवा रहे हैं, कुछ इश्यूज हैं उसमें तो कई बार नहीं उस क्लियर हो पाते हैं, पानी का है जैसे, या उसका ODF का है, या आपका हाथ से मैला ढोने वाला का है, तो वो गलती से कई लोगों ने जो सेल्फ ID भरी अपनी तो उन्होंने उनको नहीं समझ में आया तो उन्होंने उसको त्रुटि कर दिया, या जैसे मोबाइल है, अब मुझसे पूछा मोबाइल है तो मैंने हाँ कह दिया, फिर इंटरनेट भी है, वो ये समझे कि मोबाइल में अगर नेट है तो ये भी एक इंटरनेट ही है, जबकि इंटरनेट वो जो अलग से
1: कनेक्शन
0: ब्रॉडबैंड या जो उसका वो लगता है
1: जी।
0: तो वो चीज़ नहीं क्लियर हो पाई, तो उसको

0: भी हम लोगों ने लगभग उसको दुरुस्त करा लिया है। छोटी मोटी अभी त्रुटियां रह गई, तो अभी 3 दिन हमारे पास में है। अभी हमारे पूरा प्रगणक सुपरवाइजर सभी लगे हुए हैं, और चूंकि इसमें डबल चेक होता है, एक बार प्रगणक अपने उससे आईडी से उसको वो करता है डाटा को सिंक, फिर सुपरवाइजर जो है डाटा को सिंक करता है, तब जाके वो फाइनल होता है जो है।
1: मौसम के हिसाब से बहुत सारी समस्याएं भी होंगी प्रगणकों के साथ भी, कि मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में कई बार ऐसी स्थितियां तो नहीं आती प्रगणक बिना गए ही वो जानकारियां भर दे, तो क्या इसको क्रॉस चेक करने का कोई तरीका है
0: नहीं,
1: तो
0: इसमें उसके प्रगणक घर बैठ के ये ना जानकारी नहीं भर सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे वो हैं, मोबाइल नंबर है, उसके घर की कंडीशन है, जो 33 प्रश्नों का जो क्वेश्चनर बना हुआ है उसमें घर की क्या स्थिति है, ईंटों का मकान है, छत आरसीसी की है, फर्श किसका है, आपका पानी कहाँ से आता है, आपकी बिजली है कि नहीं है, नेट है कि मोबाइल है कि नहीं है, मकान नंबर क्या है, और रसोई घर में एलपीजी यूज़ हो रही है कि नहीं हो रही, गंदे पानी की निकासी कैसी है, शौचालय का प्रकार कैसा है, पेयजल के स्रोत की उपलब्धता क्या है, परिवार में रहने वाले हेड ऑफ़ द फैमिली कौन है और कितने लोगों की है उसमें, उसमें फिर विवाहित जोड़े कितने हैं, तो वो इस तरह का है कि वो घर जा किसी भी कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता, कि एक दो जानकारी हो तो कोई भी कोई करने की कोशिश भी करे, लेकिन इसमें तो ना ही हमारे पास कहीं से ऐसी कोई सूचना आई
1: जानकारी?
0: या शिकायत आई कि साहब प्रगणक ने जो है घर बैठे जानकारी भरी, क्योंकि इसमें दोहरी जिम्मेदारी है, सुपरवाइजर भी है वो, हम सुपरवाइजर की भी मीटिंग लेते हैं, उनसे भी ऑब्जर्व कराते हैं, उनसे भी लगातार उनके, तो दे आर वेरी केयरफुल, दे आर वेरी मतलब प्रॉम्प्ट है वो कि कोई गलत जानकारी ना भर जाए।
1: कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे प्रगणक गया घर में और लोग मौजूद नहीं हैं छुट्टियों में, या कहीं पे वो चले गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ, ऐसी स्थितियों में फिर हम क्या करेंगे वहाँ
0: वो
1: पे?
0: लॉक्ड हाउस है तो उसको 3 बार चेक करने का निर्देश है,
1: जी
0: कोई भी घर अगर बंद मिलता है, ताला बंद मिलता है, तो 3 बार उसको लगातार प्रगणक देखेगा। तो अभी हमारे जो है इस तरह से जो लॉक्ड हाउस थे वो अभी टोटल 5,000 समथिंग जो है पूरे उसमें संख्या आई, 5,988 जो है वो लॉक्ड हाउस थे, तो दोबारा से उनको हम ये धीरे
1: रिविजिट
0: धीरे
1: कर
0: धीरे
1: रहे
0: धीरे
1: हैं।
0: कम होते जा रहे हैं,
1: जी,
0: और ये लगभग जो है ख़त्म होने को हैं पूरे, क्योंकि 6 लाख घरों में से 5-6 हज़ार
1: 5-6
0: रह गए, छः
1: हज़ार
0: हज़ार
1: हैं
0: रह रहे हैं, तो
1: तो बहुत
0: परसेंट
1: बड़ा आंकड़ा नहीं
0: बहुत
1: है।
0: बड़ा आंकड़ा नहीं है वो जो है,
1: तो
0: 0.1
1: अगर मान
0: परसेंट है।
1: लीजिए ये कुछ जो संख्याएं बच जाएंगी, तो इनको हम क्या दूसरे चरण में कुछ करेंगे, या फिर इसके लिए कोई योजना बनी हुई है कि
0: दूसरे चरण के लिए फिर जो निर्देश आएंगे, अगर उसमें मतलब इनका वो संख्या आ जाएगी, मतलब ऑप्शन आएगा, तो फिर इसको करेंगे जो है, ये लॉक्ड हाउस के रूप में तो दर्ज है ही है।
1: एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे अब हम लोग पहले घरों की मैपिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगले चरण में लोगों की मैपिंग, मतलब लोगों के की जनगणना की जाएगी
0: जी
1: या प्रॉपर जनगणना की जाएगी, जिन लोगों के पास घर नहीं है या जो नोमैड्स हैं इस तरीके से, या कहीं जो गी बस्ती इसमें रह रहे हैं, तो क्या उनके लिए क्या व्यवस्था है कि मतलब घरों के माध्यम से ही मैपिंग होगी, या फिर व्यक्तिगत तौर पे भी अलग अलग ढंग से मैपिंग की
0: नहीं, जो
1: जाएगी?
0: जहाँ रह रहा है, जिस घर में रह रहा है, किराए से रह रहा है, तो
1: वो
0: वो
1: भी
0: वहाँ रह रहा है उसमें,
1: जी,
0: तो वो गणना उसकी हो गई है
1: और कई
0: व्यक्तिगत।
1: लोग ऐसे भी हैं ना जो जैसे सड़कों पे निवास कर रहे हैं, या
0: हाँ,
1: वो आते हैं
0: वो
1: ट्रैवल करते हैं फिर कहीं और चले जाते हैं, इस तरीके के भी लोग जो हैं
0: संख्या बहुत मतलब
1: कम
0: बहुत
1: है।
0: कम होगी, और मतलब लेकिन अभी तो चूंकि हाउस लिस्टिंग के आधार पे हो रहा है, मकानों का
1: जी,
0: हो रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, तो उसकी काउंटिंग हो रही है, या उसकी कोई कच्चा मकान भी बनाए अगर उसमें रह रहा है, वो छप्पड़ का घर है या टीन का छत है, तो अभी वो हाउस तो है और उसकी गणना हो रही है।
1: तो ग्वालियर में एक मतलब करीब सलीके से बहुत ढंग से काम
0: बहुत
1: हो
0: ढंग
1: रहा
0: से हो
1: है।
0: रही है, और हमने प्रगणकों का पूरा मतलब ख्याल रखा है, इनको मेडिकल किट की भी हमने जो है सुविधा दी है, और हमने ये भी निर्देश दिया है कि बहुत धूप में काम ना करें,
1: जी,
0: सुबह के समय करें, शाम के टाइम समय करें,
1: बिल्कुल, धूप की
0: और
1: तो बहुत
0: दोपहर में अपने
1: समस्या
0: को
1: है।
0: सुरक्षित रखें, वो समय अपना कार्यालय में भी दे सकते हैं, आप अपना कार्यालयीन कार्य भी कर सकते हैं, और सुबह के 3 घंटे 4 घंटे कर लें, शाम को कर लें, तो जनगणना कार्य आसानी से हो सकता है,
1: जी,
0: क्योंकि एक HLB में 200 से 250 घर हैं, तो बहुत बड़ा वो नहीं है, आपको जो है पूरे 30 दिन के अंदर 200 से 250 घरों के बीच में आपको मूव करना है, तो मतलब सरकार ने, शासन ने, भारत सरकार ने बहुत सोच समझ के और ये मतलब घरों का एक व्यक्ति को दिया है, या एक एक कर्मचारी के लिए, जो कि आसानी से कर
1: बहुत
0: सकता है,
1: बोझ तो नहीं है
0: बहुत बोझ
1: प्रगणकों
0: नहीं
1: के
0: है,
1: ऊपर?
0: बहुत आसानी से हो रहा है, और मतलब अभी नगर निगम का है, थोड़ा सा रह गया है, बाकी तो जिले का तो 15 दिन पहले ही हो गया था, 15 तारीख

0: कोई हो गया था ग्रामीण क्षेत्रों का पूरा, जिसमें नगर पालिका डबरा भी थी, आपके सभी नगर पालिकाएँ, सभी तहसील, आपका कैंटोनमेंट एरिया, ये सभी मतलब काफ़ी पहले ही हो गए। अब तो इनका डाटा शुद्धिकरण का काम हो रहा है
1: जी। आगे दूसरे चरण की तरफ बढ़ने के पहले मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोगों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो प्रगणक आपके यहाँ आ रहे हैं उनके साथ किस तरीके का कॉपरेशन वो लोग करें।
0: प्रगणकों के साथ वैसे भी हम प्रचार प्रसार के माध्यम से कर रहे हैं, जगह जगह आपने सुना होगा कि चौराहों पर उसके ऑडियो विजुअल्स जो है वो मतलब ऑडियो चल बजाए जा रहे हैं। नगर निगम की जो गाड़ी है, कचरा वाहन है, उस पर भी जो है वो मतलब ऑडियो बज रहा है जो है, तो जगह जगह होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं। तो लोगों के लिए यही है कि मतलब एक शासकीय कर्मचारी आ रहा है, वो आपकी गणना कर रहा है, तो कई बार लोगों को लगता है कि हमारी निजी जानकारी साझा हो रही है, तो ये बेहद गोपनीय है। लोगों के लिए मैं यही मतलब संदेश दूंगा कि ये जानकारी बहुत गोपनीय है, किसी भी स्तर पर इसका डाटा लीक नहीं होगा, और केवल ये मतलब देश हित में जो है सही गणना व्यक्तियों की, भवनों की, इससे क्या है जनगणना के आंकड़े से ही हमारी आगे की जो पॉलिसीज बनती हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, आर्थिक नीतियां बनती हैं, सामाजिक नीतियां बनती हैं, हमारे देश में कैसे हो रहा है, कौन किस स्थिति में रह रहा है, किसके पास कितनी सुविधाएं हैं, कौन सा वर्ग कैसे जीवन यापन कर रहा है, कौन कठिनाई में है, कौन सुविधा में है, तो ये सब आंकड़े जब ऊपर जाते हैं और उनकी एनालिसिस होती है, और बहुत सारे हमारे जो सांख्यिकी मंत्रालय हैं भारत सरकार के और आर्थिक मंत्रालय हैं और जो योजना आयोग है हमारा, जो जब नीति आयोग हो गया जो, तो उसको ये अपनी भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए ये बहुत बड़ा
1: डाटा है
0: और आधार है जो है।
1: बिल्कुल, तो लोगों से आपका ये कहना है कि सही जानकारियां ही
0: दें, सही जानकारी दें और पूरा सहयोग करें प्रगणकों का, उसको एक सम्मान की दृष्टि से उसको बैठा लें, उसको एक कम से कम एक चेयर दें, उसको एक गिलास पानी का पूछें, यही मतलब मैं आग्रह करूंगा जो है हाँ नागरिकों से,
1: उनको भी सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, अगले चरण की बात करता हूँ कि ये जो दूसरा चरण है, अगला चरण, वहाँ की क्या योजनाएं हैं, क्या तैयारियां हैं, और ये जो जनगणना है इसमें कहा जा रहा है कि जाति आधार पे भी और आर्थिक आधार पे इस जनगणना को किया जाएगा, ये पहली जात जनगणना है शायद
0: इसमें, तो अभी जो हो रहा है उसमें मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा अन्य, तीन ही वर्ग इसमें बताए हैं, तो इसमें ये तीन कैटेगरी रखी है, बाकी मतलब
1: सब कैटेगरीज
0: अभी शामिल नहीं है, तो ये तीन ही उसमें ऑप्शन है
1: जी। तो आर्थिक आधार पर भी जनगणना होगी, मतलब जनगणना में ये सारे सवाल भी जाएंगे क्या कि
0: वो आगे देखते हैं अब क्या उसका क्वेश्चनर आता है पूरा एग्जैक्ट जो है
1: जी,
0: वो आ जाएगा करीब दिसंबर के जनवरी के माह के मध्य में जो है
1: जी। जनता के लिए भी कुछ ऐसा मैसेज है कि उस जनगणना के लिए अपनी क्या तैयारियां रखें, कोई दस्तावेज वगैरह मांगे जा रहे हैं?
0: दस्तावेज तो कोई भी नहीं मांगा गया अभी
1: जी, जी।
0: ना अभी ना इस जनगणना में मांगा गया है और आगे भी अभी कोई मतलब बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन दस्तावेज नहीं केवल जानकारी मतलब जो डिजिटल जनगणना जैसे अभी हो रही है वैसी व्यक्तियों की होगी
1: जी।
0: और उसमें जो संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी क्योंकि उससे बिल्कुल जो सटीक गणना होती है डिजिटल जो होती है, कहीं भी उसमें पेपर लेस है वो पूरी वो जो है।
1: कई बार ऐसा होता है कि लोगों तक प्रगणक नहीं पहुंच पाया किसी भी कारण से, या वो आए कहीं बाहर चले गए थे, प्रगणक आए दो बार तीन बार और घर बंद रहा, फिर वो आते हैं और उनको ये जानकारी मिलती है कि भाई हमारा जो मैपिंग है वो छूट गई है, वो कहीं संपर्क कर सकते हैं?
0: लॉक्ड हाउस में आ जाएगा, फिर उसके बाद में जो द्वितीय चरण आएगा उसमें उनकी काउंटिंग
1: हो जाएगी, तो वो ऐसा कोई टोल फ्री नंबर या
0: ये तो डाटा 30 तारीख के बाद में मतलब वो हो जाएगा
1: जी जी जी
0: फ्रीज हो जाएगा, तो उस पर तो फिर कोई मैं नहीं समझता कोई छेड़छाड़ मतलब और ऐड हो गया या कम हुआ।
1: कर्मचारियों का जो प्रबंधन है, जैसे अपने यहाँ के ही मतलब अलग अलग विभागों के कर्मचारी ही इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, अगले चरण में क्या ऐसी तैयारी है कि क्या इन्हीं कर्मचारियों को दोबारा रिपीट किया
0: जाएगा? इन्हीं को ही रिपीट किया जाएगा,
1: ट्रेन किया जाएगा?
0: बिल्कुल इन्हीं को, चूँकि इन्होंने घर घर देखा हुआ है और पहले से ही हमने सावधानी बरती है कि जो मतलब व्यक्ति ऐसे कोई दिसंबर में रिटायर हो रहा है तो हमने उसको नहीं लिया है,
1: पहले से ही तैयारी है।
0: कम से कम जून 2027 तक हमने कट ऑफ लिया है कि वहाँ तक जो है कोई रिटायर ना हो, ऐसे ही कर्मचारी को लगाएं।
1: कर्मचारियों को लेकर करें कि कई बार महिलाओं को थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं उन, तो क्या इस चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि उनके लिए एक अच्छा वर्क एटमोसफियर वहाँ पर बन सके?
0: बिल्कुल, महिला कर्मचारियों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया इसमें और बहुत ही मतलब यदि कोई उनके लिए इमरजेंसी है, तो हमने उनकी ड्यूटी से भी मतलब उनको मुक्त किया।

0: दूसरे को लगाया और बाकी कहीं समस्या नहीं है। महिलाएं भी उतना ही अच्छा काम कर रही हैं जितना पुरुष कर रहे हैं।
1: तो लगभग कितने कर्मचारी होंगे जो जनगणना के काम में अभी लगे हुए हैं?
0: जनगणना के काम में तो कुल 3200 हमारी जो 79 HLV हैं, तो इसमें एक माने कुछ HLV ऐसी भी हैं जिनमें एक एक की एक प्रकरण पर 2 HLV भी हैं,
1: जी
0: तो करीब करीब इसमें, लेकिन स्टाफ जो है वो पूरा करीब 4000 आदमी तो इसमें लगे ही हुए हैं, जो है
1: प्रगड़क के तौर पे,
0: प्रगणक
1: तो
0: और सुपरवाइजर के तौर पर, जो है
1: लगभग
0: चार
1: करीब
0: हजार के
1: चार से
0: चार
1: पांच
0: हजार के
1: हजार
0: आसपास 4000
1: जी
0: व्यक्ति कर्मचारी
1: प्रगड़कों
0: लगे हुए हैं।
1: से आपकी उसके बाद भी मीटिंग वगैरह हुई कि जब वो काम कर रहे हैं या उस दौरान पे जो उनकी समस्याएं हैं, उनके पास जो चुनौतियां आ रही हैं, प्रॉब्लम आ रही है ग्राउंड में,
0: प्रॉब्लम
1: क्योंकि
0: ग्राउंड में
1: प्लानिंग
0: ये
1: तो
0: आती है कि जैसे HLV हमने पहले जो काटी है वो ऑफिस में बैठ के काट नक्शे के आधार पर काटी है, और फिर वहाँ मौके पर पता पड़ा कि वो ये वाला मकान जो है HLV इसमें नहीं है, बगल वाले में है, तो फिर वो उस वाले प्रकरण को वो बता देते हैं, और नक्शे को फील्ड के आधार पर सुधारना है, ना कि नक्शे के आधार पर फील्ड को सुधारना है। जो घर जिस वास्तव में जिस वार्ड में से या जिस HLV में आ रहा है उसको यदि नक्शे में नहीं आ पाया तो उसको एडिट हम एडिट कराने को बोला था और कराया गया और हो गया।
1: डिजिटल तौर पे तो कोई समस्याएं नहीं आ रही, जैसे कि पहली डिजिटल संपूर्ण जनगणना डिजिटलाइज्ड की जा रही है, तो कोई ऐसी तकनीकी समस्याएं देखने को मिली कभी पहले?
0: तकनीकी समस्या कुछ नहीं है, कुछ हमारे प्रगणक हैं वो मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं, तो फिर उनके परिवार ने, कोई
1: हेल्प
0: महिला
1: किया
0: है
1: है
0: तो
1: तो
0: उनके पति ने हेल्प की, उनके बेटे ने हेल्प की,
1: ट्रेनिंग में भी तो ये
0: हाँ
1: सारी चीज़ें उनको भी
0: ट्रेनिंग
1: सिखाई
0: बताई
1: गई
0: गई
1: हुई
0: थी तो
1: होंगी।
0: उन्होंने करा लिया अच्छे। जो है हमने भी एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए मतलब लोग लगा दिए, नगर निगम ने जैसे अपने, चूँकि नगर निगम एक HLV में काफ़ी संख्या में घर हैं, क्योंकि ये महानगर है वो
1: जी
0: मध्य
1: जी
0: प्रदेश के जो 4 या 5 बड़े महानगर हैं उसमें से वन ऑफ द सिटी है ग्वालियर, तो उसमें मेजर मेजर जो पॉपुलेशन है वो शहर में रहती है, गांव में रहती है, वो स्कैटर्ड वे में रहती है, तो वहाँ उतनी समस्या नहीं है, बट नगर निगम में बहुत ज़्यादा है। ये कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं यहाँ पर की, तो उसमें कि नगर निगम ने एक्स्ट्रा स्टाफ लगाया है, उनकी हेल्प के लिए लगाया है, दिन भर डाटा वो फॉर्म भी भरा के शाम को फीड कर लिया है, सब तरह से करके जो है काम में एक्यूरेसी रहे, शुद्धता रहे, और कोई भी घर छूटे ना हो, कोई भी घर का दोहराव ना हो, इस बात का हम बार बार हमने सभी को ध्यान दिलाया है, और उसी के आधार पे हमारे जो कलेक्टर महोदय हैं उनके निर्देशन में
1: काम चल रहा
0: पूरा
1: है
0: काम जो है अच्छी तरह से चल रहा है, संपन्न हो रहा है।
1: अभी तक ग्वालियर में कोई ऐसा कोई घटना कोई
0: अभी ईश्वर की
1: चीजें
0: ऐसी
1: आई
0: ऐसी वो
1: या
0: है कि कोई भी अभी सिंगल कैजुअलिटी नहीं है, सभी स्मूथली चल रहा है, और कहीं भी कोई प्रकरण सुपरवाइजर फील्ड स्टाफ कोई भी जो है अभी ऐसा नहीं आया कि साहब ये कई बार हो जाता है, तो वो अभी तक कुछ भी नहीं है, बहुत स्मूथली चल रहा है।
1: लोगों को भी कई बार भ्रांतियां भी होती हैं कि लोग आ रहे हैं जानकारी, ऐसे भी लोग होंगे जो जानकारियां देने के लिए मना कर रहे होंगे
0: मना
1: या गलत
0: करते
1: जानकारियां दे
0: हैं,
1: रहे
0: मना
1: होंगे।
0: करते हैं, फिर समझा देते हैं, जाके
1: जी
0: चार्ज ऑफिसर जाके समझा देते हैं कि भाई दे दो आप ही की जानकारी, आप रह जाओगे फिर आपकी जनगणना नहीं होगी मकान की।
1: पर ऐसे भी प्रकरण आते होंगे
0: हाँ
1: सामने।
0: रेयर आते हैं,
1: जी
0: 1000 में 1 आ गया तो आता है, वो तो अब इतना बड़ा,
1: ग्राउंड लेवल की अपनी
0: हाँ
1: चुनौतियां
0: ग्राउंड
1: हैं
0: लेवल
1: काम
0: की अपनी
1: करने की।
0: चुनौतियाँ हैं, लेकिन वो स्मूथली निबट जाते हैं,
1: जी
0: हमारे जो चार्ज ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही संवेदनशील तरीके से इसको कर रहे हैं।
1: तो चलते चलते आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को, ग्वालियर के नागरिकों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं सहयोग देने के
0: ग्वालियर
1: लिए?
0: जिले के सभी जो हमारे सम्माननीय नागरिक हैं उनसे मैं यही आग्रह निवेदन करूंगा कि वह इस जनगणना के सबसे राष्ट्रहित के जो काम है, जो पुनीत काम है, उसमें जो प्रगणक आ रहा है, सुपरवाइजर आ रहे हैं, उनको पूरा सहयोग दें, अपनी जानकारी सही सही जानकारी दें, और इसकी पुष्टि कर लें कि मैंने जो जानकारी दी है वो वही जानकारी उन्होंने भरी है, तो और प्रगणक को एक अच्छे आदर भाव से देखें, वो भी आप ही के समाज के बीच का एक व्यक्ति है, शासकीय सेवा में है, तो अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है, ये हमारा एक सामाजिक दायित्व भी है, यही मेरा संदेश है।
1: सर, आकाशवाणी के 90 साल इस वर्ष पूर्ण हुए हैं, उस उपलक्ष्य में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी तरफ से कौन सा गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें?
0: एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है,
1: जी जरूर, तो
0: जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
1: आपकी तरफ से ये श्रोताओं को हम अपने ये गीत सुनाते हैं।
0: जी।

0: तो धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, इस जनगणना की पूरी प्रक्रिया को बहुत बेहतर ढंग से समझाया। ग्वालियर में जनगणना की प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है ये भी आपने हमारे श्रोता
1: करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सीमा सुरक्षा बल यानी BSF को नई और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। गुजरात के भुज में कल भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई चौकियों का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय खरीफ कृषि सम्मेलन में कहा कि इस बार खरीफ सीजन के लिए जरूरत से 11% ज्यादा बीज उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तिरुवनंतपुरम के सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश की पहली AI चिप नेत्रा A2000 तैयार कर ली है। ये चिप 12 उन्नत नैनोमीटर तकनीक पर आधारित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। उर्दू के मशहूर शायर और पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र को कल भोपाल में श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में हुई शोक सभा में बड़ी तादाद में शायर, साहित्यकार और नागरिक जमा हुए। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। कल ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश हुई और तापमान एक झटके में 10 डिग्री तक गिर गया। और IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में कल गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तूलिका का नमस्कार। श्रोताओ, हमारे शहर में आंधी और पानी ने नौतपे की तो बैंड बजा दी है। जो 9 दिन भीषण गर्मी के होने चाहिए थे, शायद वो 9 दिन पहले ही निकल गए। ये मौसम में जो परिवर्तन है ना, ये अक्सर हमें हैरान कर देता है। आंधी और पानी की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है, कई पेड़ गिरे हैं जिसकी वजह से लोगों को भी परेशानी हुई है, जो बिजली है उनके घर से गायब हो गई है, जिसको वापस बहाल करने में भी समय लगा है, सड़कें और रास्ते साफ करने में भी दिक्कत हुई है। ये अलग बात है कि ये जो आंधी पानी है ये 2 दिन से जो चल रहा है ये शाम के बाद शुरू होता है, जब थोड़ा सा लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। यदि दिन के समय ये सब हो आंधी, तो ज़्यादा परेशानी लोगों को हो सकती है, क्योंकि रोज़ाना के कामकाज में थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी। लेकिन फिर भी जो एकदम तपता हुआ मौसम था उससे थोड़ी सी राहत हमें मिली है। श्रोता साथियों, ये तो मौसम का हाल था, लेकिन मौसम वैज्ञानिक ये बताते हैं कि आगे आने वाले 2 या 3 दिन लगभग ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तो यदि आप इन 2 या 3 दिनों में कपड़े धोएं तो घर के छत पर खुले में फैला करके और निश्चिंत ना हो जाएं, थोड़ी नज़र रखें, नहीं तो आपके कपड़े फैलाएंगे आप अपनी तार पर, मिलेंगे अड़ोसी पड़ोसी या कहीं नहीं मिलेंगे, ये भी हो सकता है कि वो अपनी मर्ज़ी की जगह चले जाएं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको एक विशेष जानकारी देना चाहते हैं। आज है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। अब आलू जैसी सामान्य सी चीज़,

उसका भी दिन मनाया जा रहा है। मतलब कह लें कि आलू का हैप्पी बर्थडे है तो गलत नहीं होगा। आलू के बारे में यदि हम सोचें तो क्या है आलू, हर एक सब्ज़ी में घुल मिल जाता है, आप किसी भी चीज़ में इसे डाल सकते हैं और ये उस सब्ज़ी के स्वाद में रच बस जाएगा। बहुत सारे लोग आलू को इतना पसंद करते हैं कि वो इसके बगैर खाना नहीं खा सकते। बच्चों को तो ये विशेष तौर पर प्रिय है। इसके इतने पॉपुलर होने का भी एक कारण है कि ये एडजस्टेबल नेचर का है, सबके साथ घुल मिल जाना इसका स्वभाव है। देखा ना, आलू ने हमें एक बहुत बढ़िया चीज़ सिखाई है। 30 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है। और जानते हैं क्यों मनाया जाता है? दरअसल जो पूरे विश्व में जो कृषि प्रणालियां इस्तेमाल की जाती हैं उसमें आलू राजा बन के उभरा है। इसका सांस्कृतिक महत्व तो है ही। यदि हम इसके ओरिजिन की बात करें, इसकी उत्पत्ति की बात करें, तो दक्षिण अमेरिका का एंडीज़ क्षेत्र है एक, वहाँ यह हज़ारों सालों से उगाया जाता रहा है। लेकिन एंडीज़ से ये बाहर निकला है 16वीं शताब्दी में। पहले ये यूरोप पहुँचा और फिर पूरी दुनिया में फैला। यदि हम ये कहें कि आलू हमारा है तो आलू हमारा नहीं है, ये विदेशी है, जिसे हमने अपने यहाँ कभी परांठों में भर लिया, कभी इसका मठे का आलू बना लिया, कभी घुटवा आलू बना लिया, ये सब हमने किया है, लेकिन है ये विदेशी। यदि हमारी थाली में होता है तो पूरी की पूरी थाली देसी हो जाती है। दरअसल आलू पूरे विश्व में तीसरी सबसे अधिक खपत की जाने वाली फसल है। पहली दो हैं चावल और गेहूँ। यानी चावल और गेहूँ के बाद हमारी आवश्यकता जो है वो आलू है। और आलू की यदि हम घटक की बात करें, इसके कॉम्बिनेशन में क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो ये कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट का बहुत बड़ा सोर्स है, शरीर को हमारी ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य रूप से इसमें स्टार्च होता है, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, और कार्ब्स इसमें ज़्यादा होते हैं जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं, इसीलिए ये इतना पॉपुलर है। लगभग 75-80% पानी होता है जो हमारे शरीर को हाइड्रेट भी रखता है। हम आपको बताएं कि आलू से मीठे भी व्यंजन बनते हैं और नमकीन व्यंजन भी बनते हैं। अब मीठे वाले आप सोचिएगा थोड़ा सा क्या क्या हैं, फिर हमें बताएंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। ग्रामीणों को आलू की खेती से बढ़िया रोज़गार भी मिलता है, इसके बाज़ार में मूल्य भी अच्छे मिलते हैं। तुलनात्मक रूप से पानी और की कम ज़रूरत होती है इसे, और बहुत थोड़ी सी छोटी सी खेत में भी, छोटी सी ज़मीन में भी ये लग जाता है। बहुत सारे लोग तो गमलों में भी आलू उगाते हैं, यानी यदि आप छत पर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या किचन गार्डन कर रहे हैं तो वहाँ भी ये बड़े आराम से लग जाता है। भारत जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। पहला कौन सा होगा? बिल्कुल हमारा पड़ोसी चीन। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश में आलू उगाया जाता है, ये मुख्य तौर पर उगाया जाता है, इसीलिए इन क्षेत्रों में आलू खाया भी ज़्यादा जाता है। अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी फसल होती है, यानी रबी का सीज़न होता है आलू का। दिसंबर के बाद इसकी गुड़ाई शुरू होती है, आलू ज़मीन के अंदर लगता है इसलिए गुड़ाई शुरू होती है। और आप देखेंगे कि जैसे ही आलू बाज़ार में आता है दिसंबर में, हम नए आलू के विशेष व्यंजन बनाना शुरू कर देते हैं। अलग अलग आकार प्रकार के आलू होते हैं, उन सब आलूओं का हम अलग अलग उपयोग करते हैं। इसके बाद जब आलू थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो जाता है, फिर हमारे घर की महिलाएं जो हैं वो कभी चिप्स बनाती हैं इसके, कभी पापड़ बनाती हैं, कभी बढ़िया बनाती हैं, होता है ना ऐसा। खैर, आलू के बहुत सारे व्यंजन आपको दिमाग में घूम रहे होंगे। सबसे बेहतरीन व्यंजन जो हर मौसम में अच्छा लगता है, कभी भी खाया जा सकता है, वो क्या हो सकता है आलू का?

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, KYC अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत KYC अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने

0: या ATM या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में, तुलिका आपके साथ है। श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपसे बहुत सी बातें करते हैं, कुछ जानकारियां इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं और कुछ आपके मन को टटोलते हैं या कह लीजिए झकझोरते हैं। हमारे मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जो नेगेटिव मानसिकता है हमारे अंदर पल रही, उसको हम बाहर करें। उसे पहले तो पहचानना ज़रूरी है, हम पहचानें और उसके बाद खुद से दूर करें। ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि कल से मैं एक बात पर विचार और मनन कर रही थी। कल फेसबुक स्क्रॉल करते समय एक स्टेटस पर नज़र पड़ी, एक नई मित्र बनी है हमारी, उनका वो स्टेटस था। उन्होंने स्टेटस में ये लिखा था कि क्या कभी आपको किसी ने बॉडी शेमिंग की है या ट्रोल किया है और इस हद तक किया है कि आप परेशान हुए हों और इसके बावजूद आप उन्हें कोई जवाब न दे पाए हों। ये सवाल था और वही सवाल कल से लेकर आज तक मेरे मन में चल रहा है। ये सवाल मैंने आप तक पहुंचा दिया है, आप भी अब सोचने लगेंगे। हम सब के साथ कभी न कभी ऐसा होता है, लेकिन करने वाले भी हम ही होते हैं, ये भी तय है। कभी किसी को सीकिया कह देना, किसी को मोटा कह देना, गंजा कह देना, काला कह देना, इस तरह के तमाम सारे उपनामों से हम कभी न कभी किसी न किसी को नवाज देते हैं और हम ये जान भी नहीं पाते कि हमारी इस टिप्पणी का सामने वाले पर क्या असर हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे द्वारा कहे गए ये शब्द, हमें नहीं लगता कि हमें कोई फ़र्क पड़ा, लेकिन सामने वाला भीतर तक आहत हो जाता है। सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि यदि हम ये कहें कि जो पब्लिक फिगर्स हैं, पब्लिक फिगर्स में राजनेता भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हो सकते हैं, और विशेष तौर पर वो लोग जो अपने दिखने को लेकर, कैसे वो दिखते हैं उसको लेकर के प्रोफेशन चुनते हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए फिल्म के एक्टर्स या एक्ट्रेसेस, उनको इस तरह की ट्रोलिंग का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इस वजह से लोगों में कुछ ट्रेंड्स जो हैं वो असर कर रहे हैं। पतले होने के लिए तमाम तरह की दवाइयाँ लोग ले रहे हैं, अपनी बॉडी बनाने के लिए तमाम तरह के स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। इससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला, आप कुछ दिन तक आकर्षक दिख लोगे लेकिन अंदर से आपके शरीर को बहुत नुकसान होने वाला है। और जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ना इस तरह के, ये ऊपर से रिस्क कर नीचे तक आ रहे हैं। एक दवा है जिसका नाम हम नहीं आपको बताएंगे, जिस को खाकर लोग पतले हुए जा रहे हैं। ये हो सकता है कि जो फिल्म के एक्टर्स हैं वो अपने डॉक्टर्स की सलाह पर इसे ले रहे हों, लेकिन ट्रेंड को फॉलो करने के लिए लोग तमाम तरह के प्रोटीन शेक्स या इस तरह की दवाएं अपने आप मार्केट से खरीद कर इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर गंभीर शारीरिक दुष्परिणाम उन्हें देखने को मिलते हैं। तो यदि कोई आपकी बॉडी शेमिंग करता है तो आप उसे तुरंत टोकें, उस चीज़ को अपने मन में न रख करके तुरंत ही टोकना शुरू करें, तो सामने वाले को भी एहसास होगा कि ये चीज़ उसने गलत कर दी। और कोशिश ये भी करें कि इस तरह का की कोई भी टिप्पणी

किसी के लिए भी ना करें। कोई हीरोइन पहले कैसी थी अब मोटी हो गई है, या कोई हीरोइन पहले काली थी अब गोरी हो गई है, कोई हीरोइन जैसी पहले थी वैसी ही अब लगती है, ये बहुत क्रेडिटेबल चीज़ है कि जैसे हम पहले थे वैसे ही अब तक हैं, लेकिन इसके पीछे लगातार की गई मेहनत भी हो सकती है। सबसे पहली चीज़ कि बॉडी शेमिंग जो है वो बिल्कुल ना करें। एक और चीज़ यहाँ जोड़ने वाली बात है कि सुंदर होने में और सुंदर दिखने में फ़र्क होता है। हम सुंदर दिख सकते हैं, सुंदर दिखने के लिए तमाम सारे साधन बाज़ार में मौजूद हैं, लेकिन सुंदर होना सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम भीतर से सुंदर होंगे ना, तभी सबको अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे। तो आपके किसी से मिलने पर आपके सुंदर होने का एहसास होता है या सुंदर दिखने का एहसास सामने वाले को होता है, ये आप परखना शुरू कीजिए। और यदि आपको ये समझ में आ गया कि आप सिर्फ सुंदर दिख रहे हैं या सुंदर हैं भी, तो आप भीतर से खूबसूरत और सुंदर होने की कोशिश करने लगेंगे और फिर लोग आपसे मिलकर आपको भूल नहीं पाएंगे।

आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि सुंदर होना चाहिए, सुंदर दिखना नहीं चाहिए। सिर्फ सुंदर दिखना ही जरूरी नहीं है, अंदर से सुंदर होना है। अंदर से सुंदर होने के लिए एक

खास चीज़ की ज़रूरत है कि आप अपनी खूबियों को पहचानें। चलिए इस बात को तफसील से बताने से पहले एक उदाहरण बताते हैं। एक थ्योरी है स्पून एंड फोर्क थ्योरी। स्पून मतलब चम्मच और फोर्क मतलब कांटा चम्मच। दोनों उपयोगी हैं लेकिन दोनों की उपयोगिता अलग अलग है। आपको यदि नूडल्स खाने हैं तो आपको कांटा मुफीद लगेगा, लेकिन वही अगर सूप पीना है तो वहाँ कांटा काम नहीं करेगा, वहाँ आपको चम्मच चाहिए। और यदि आपके हाथ में चम्मच है, सामने नूडल्स हैं, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। बस यही समझना है हमें कि किस जगह कौन काम आएगा। दरअसल चम्मच और कांटे को सूप और नूडल्स के साथ यदि हम रख दें तो आप क्या ये समझ सकेंगे कि यदि नूडल्स सामने हैं तो चम्मच के पास स्किल की कमी है, या वो काफ़ी नहीं है, या वो फेलियोर है, या वो काम नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं, वो काम करेगा लेकिन सूप के साथ। बस यही कॉम्बिनेशन है जो हमें समझना है अपने लिए। दोनों का काम अलग अलग है, हर व्यक्ति की विशेषता अलग अलग है। ठीक इसी तरह से सही जगह पर सही व्यक्ति होना चाहिए। कुछ लोग बेहतर लिख सकते हैं, कुछ गा सकते हैं बेहतर, कुछ अच्छा पढ़ा सकते हैं यानी टीचर्स अच्छे होते हैं, कुछ निर्माण कार्य अच्छा कर सकते हैं, कुछ लोगों को 9 से 5 का जॉब अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बिज़नेस अच्छा लगता है, कुछ लोग ड्राइंग बढ़िया कर सकते हैं। अलग अलग रास्ते सबके हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई भी किसी से कमतर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग स्ट्रेंथ हो सकती हैं सबकी, लेकिन क्या कोई भी कम सक्सेसफुल है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करके हम लोगों को, या लोगों को तो बात की बात है, अक्सर ये जो कंपैरिजन है ये बच्चों के साथ हम कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दरअसल हर एक की अपनी एक विशिष्टता होती है और उसी विशिष्टता को पहचान कर हम अपने आप को यूनिक बना सकते हैं। आपको पहले अंदर की अपनी यूनिकनेस को पहचानना होगा, विशिष्टता को पहचानना होगा, और उसके लिए आपको खुद के लिए, खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी विशिष्टता क्या हो सकती है? वो काम जो आपको हमेशा अच्छा लगता है करना। सिर्फ ऑफिस जाकर के जिस काम के लिए आपको नौकरी मिली है, या जो आप काम इस समय कर रहे हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए, सिर्फ वही नहीं बल्कि ऐसा काम जो आप कभी भी किसी भी समय उठा के आपसे करवा लिया जाए आप कर देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस सिचुएशन में विशिष्ट हो जाते हैं, जैसे कोई मुश्किल परिस्थिति है, आप पहुंचे और आप वहां पे तारनहार बन गए, आपने सबकी समस्याएं हल कर दी, वो आपकी विशिष्टता है। और ये जो विशिष्टता होती है ना, ये एकदम अनूठी होती है, पैदाइशी होती है, धीरे धीरे निखर सकती है, बचपन से आप करते आते हैं। जैसे कुछ लोग अच्छा बोलते हैं या अच्छा लिखते हैं तो वो शुरू से अच्छा लिखते हैं, धीरे धीरे वो उस चीज़ को निखार भले लें, लेकिन वो उनके अंदर इनबॉर्न क्वालिटी होती है, जन्मजात होती है और स्वाभाविक होती है। हो सकता है आपको बहुत ऐसा ना लगे कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, या आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन दूसरे लोग मन ही मन उस चीज़ की सराहना ज़रूर करते हैं। कुछ लोग पार्टी की जान होते हैं। अब एक छोटी सी पार्टी को ही एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, उसमें कोई गा रहा है, सब तो नहीं गाते, कोई बढ़िया गाने वाला होता है, कोई बढ़िया कुक होता है, वो अपनी जगह काम करके और आपकी पार्टी का मज़ा दोगुना कर देता है, किसी को अरेंजमेंट्स में मज़ा आता है, कोई अच्छा

होस्ट होता है। इस तरह से पूरी पार्टी जानदार बन जाती है। तो विशिष्टताएं सबकी अलग अलग हैं, यूनिकनेस सबकी अलग अलग है, लेकिन जब पार्टी होती है तो

अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं निर्भय सक्सेना का शास्त्रीय गायन। आपके साथ संगतकार हैं तबले पर महेश कुमार और हारमोनियम पर अक्षत मिश्रा। आइए सुनते हैं

0: जिसे भेजा है हमारे संवाददाता लोमेश कुमार कौर ने।
1: पिछले एक महीने में जिले में क्या कुछ खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आमजन तक किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सब का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, कौन सी योजनाएं आकार लेंगी, किन कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं और क्या हैं वो खबरें जो हरदा के भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। तो आइए खोलते हैं हरदा जिले की चिट्ठी और पढ़ते हैं बीते दिनों की कहानी आने वाले कल के जुबानी। बात सबसे पहले मौसम की। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों से इस भीषण गर्मी में अपना ख्याल रखने की अपील की है। नौतपा के चलते जिले में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह कुछ राहत जरूर मिली लेकिन दोपहर बाद गर्म हवाओं और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालात ऐसे रहे कि शाम तक सड़कें लगभग सूनी नजर आईं। वहीं हरदा जिले में जनगणना 2026-27 के पहले चरण का काम आज पूरा हो रहा है। 1 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को पहले ही विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रगणक घर घर पहुंचकर भवनों का विवरण दर्ज कर रहे हैं, आवास संबंधी जानकारी जुटा रहे हैं। जिले में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व पूरे उल्लास, श्रद्धा और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और सौहार्द का संदेश दिया। भीषण गर्मी और बढ़ती पेयजल समस्याओं को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ग्रामीण नागरिक हैंडपंप या नल जल योजना बंद होने की शिकायत 07577223212 पर दर्ज करा सकते हैं। इसी कड़ी में हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगनी ने विधायक निधि से विधानसभा क्षेत्र के 24 गांवों को फायर फाइटर पानी टैंकर उपलब्ध कराए हैं। इसका उद्देश्य गर्मी के दौरान पेयजल संकट से राहत पहुंचाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जिले में जागरूकता गतिविधियां जारी है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, महाविद्यालयों में पोस्टर मेकिंग, रैली और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किशोरियां चुप्पी तोड़ो, खुलकर बात करो का संदेश देकर सामाजिक संकोच दूर करने का प्रयास कर रही हैं। वह डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कर्मचारियों को दैनिक कार्यों में ई ऑफिस का बेहतर और प्रभावी

उपयोग सिखाया गया। अब एक महत्वपूर्ण न्यायिक खबर। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। वैवाहिक संपत्ति, मोटर दुर्घटना, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और श्रम संबंधी मामलों की सुनवाई राज्य, जिला और मध्यस्थता केन्द्रों पर की जाएगी। जिले में कुपोषण दूर करने और स्कूलों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पोषण प्रहरी अभियान और विद्या आसन अभियान को समाज का व्यापक सहयोग मिलने लगा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों ने इन अभियानों में सक्रिय भागीदारी का भरोसा दिलाया है। किसानों के लिए भी एक अहम खबर है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। किसानों का पंजीयन 15 जून तक जारी रहेगा। वहीं खरीदी केंद्रों पर उपज बेचने से पहले किसानों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है ताकि योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंच सके। दूसरी तरफ पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए हरदा पुलिस ने कंट्रोल रूम में विशेष शिविर का आयोजन किया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, संतुलित आहार, पारिवारिक सामंजस्य और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। और अब एक और सुखद खबर। मुख्यमंत्री दूरदर्शन योजना के तहत हरदा जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आगामी 3 जुलाई को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। यात्रा राज्य सरकार के खर्च पर कराई जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हरदा जिले की चिट्ठी में आज बस इतना ही। कल सुबह ठीक 10 बजे हम लेकर आएंगे पड़ोसी नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। हरदा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: आकाशवाणी भोपाल से आपके लिए
1: यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ। चूंकि कल 31 मई को है विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इसी संदर्भ में हम आपको सुनवा रहे हैं ये जानकारी, नशा एक मानसिक बीमारी। इस विषय पर डॉक्टर प्रियंका शर्मा से बातचीत कर रही हैं तुलिका शर्मा।

0: सेहत के बाद तरानों के साथ आज के हमारे कार्यक्रम का विषय क्या है, यह आप जानना चाहेंगे। नशा एक मानसिक बीमारी, आज के हमारे कार्यक्रम का यही विषय है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमने अपने विशेषज्ञ को बुलाया है, जिनका नाम आप सब जानना चाहते होंगे। आप हैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है, नमस्कार।
1: थैंक यू सो मच तुलिका जी।
0: डॉक्टर साहब, नशा जो है सामान्य तौर पर सामाजिक अभिशाप समझा जाता है और उसी तरह से उसका निराकरण किया जाता है, लेकिन नशा किस तरह से हमें प्रभावित करता है, क्या क्या आस्पेक्ट्स हैं इसके, किस तरह से सामाजिक अभिशाप बनती है ये मानसिक बीमारी, ये पूरी चर्चा हम आपसे करना चाहेंगे। तो पहले तो नशे के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, किस किस तरह का नशा हो सकता है।
1: देखिए, नशा एक सामाजिक समस्या है और ये बहुत ही विकराल रूप धारण कर रहा है पूरे समाज में। आजकल जो भी टीनएजर्स हैं वो नशे के धुन में आदि हुए जा रहे हैं। हो सकता है वो स्कूल में हो सकता है उनके फ्रेंड्स के साथ हो। तो पहले तो हम जानना चाहेंगे कि नशा लोग लेते क्यों हैं।
0: हर आदमी तो लेता नहीं है,
1: हर आदमी नहीं लेता है। पहले आपने हार्डली सुना होगा, अच्छा नशा ले रहे भी रहे हैं, पता भी नहीं चलता था कि अच्छा कोई अंकल नशा ले रहे हैं या कुछ। और आजकल तो इतना ज्यादा वो हावी हो रहा है कि सबको पता है, अरे ये नशा ले रहा है,
0: और सामान्य सी बात हो गई।
1: सामान्य इतना हो गया है कि लड़कियां भी इस चीज का सेवन कर रही हैं।
0: कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसकी वजह से हम नशे की तरफ मुड़ता है कोई इंसान?
1: जो घर में फैमिली है वो एक साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं, उसमें बीच में एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो बच्चा क्या देखेगा, अच्छा ऐसा ये अंकल कर रहे हैं, ये तो बड़े आदमी है,
0: हीरो टाइप कैरेक्टर है वो, और वो ले रहा है नशा,
1: तो गलत तो नहीं है, ये तो सही है ना। फिर उसके बाद दूसरा लाइन, आई वॉन्ट टू लुक कूल।

0: मेरे फ्रेंड्स ले रहे हैं, वो कूल हैं, मैं भी कूल बन जाता हूँ. ये जो टीनेजर्स हैं जिन, ये एक्चुअली ये सारे शब्द हैं जो बच्चे बताते हैं.
1: अच्छा.
0: जो टीनेजर्स हैं, कोई ग्रुप है उसमें सब लोग नशा कर रहे हैं. पांचवा बंदा है वो चाय पीता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं. अरे ये तो नशा नहीं करता, लड़का नहीं है, ये नहीं है, उसको थोड़ा सा चढ़ावा कर देते हैं. तो उसे लगता है नशा करना तो अच्छी बात है, ले लिया नशा, मजा आ गया उसको.
1: पीयर प्रेशर होता है,
0: पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं. इसके अलावा जैसे एक्सप्लोरेशन, कोई नोवेलिटी सीकिंग, अच्छा इसमें कुछ तो होगा, एक बार चखा जाए. इसके अलावा अगर हम लाइफ इवेंट्स की बात करें, कोई रेप विक्टिम है, अजीब सी चीज हो गई, उससे निकलने के लिए, कोई सेक्सुअल अब्यूज हो गया, या फैमिली में पेरेंटल डिस्कॉर्ड हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, बच्चे ने नशा लिया, अच्छा लगा, अच्छा ठीक है मम्मी पापा लड़ रहे हैं, लड़ने दो. तो एक परिस्थिति से भागने के चक्कर में वो नशे के लत में जा सकता है. लाइफ में जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, मान लीजिए हमने बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, हम घाटे में चले गए, या हमने कुछ सोच के रखा था, कुछ प्लान, वो पॉसिबल नहीं हो पाया, थक गए, हार गए, क्या करें, नशा लेके देखते हैं,
1: असफलता का डर.
0: इसके अलावा घर में किसी का डेथ हो गया, उसको भुलाने के चक्कर में, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस बताऊंगी मैं, 4 साल पहले की बात है. रेलवे स्टेशन से एक बच्चे को पकड़ के लाया गया एनजीओ द्वारा. उस बच्चे से पूछा गया क्या करते हो, पहले तो कुछ बताया नहीं, फिर उसने बताया कि मैं इनहेलेंट्स यूज़ करता हूँ. जो इनहेलेंट्स मतलब जैसे ग्लू सूंघना, आयोडेक सूंघते हैं लोग, पेट्रोल सूंघते हैं. तो वो नशे के ड्रॉप लेने के लिए वो मथुरा जाता था, उससे कुछ पैसे में, 100 रुपये में 2 बूंद मिलता था, फिर वो ट्रेन से वापस आता था. तो जो लोग सोचते हैं ना कि अच्छा ये रेलवे स्टेशन के पास जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उन गरीब हैं, उनको कुछ खाने को आप दीजिए वो नहीं लेंगे, उन्हें पैसे चाहिए,
1: पैसे
0: होते हैं
1: चाहिए.
0: क्योंकि उन्हें इनहेलेंट्स और जो सस्ते नशे हैं जैसे कि कैनबिस, जो भांग, गांजा, ये सब चाहिए होता है. हमारा पूरा समाज है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कहीं ना कहीं से ये गिरफ्त में आते जा रहा है नशा.
1: डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, ये शुरुआती ट्रेंड हो सकता है, लेकिन नशा जो है वो लत कब बनता है? मतलब आदमी इतना आदि हो जाता है कि वो उसके बिना रह नहीं सकता, लोग सामाजिक अपराध की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, पता नहीं क्या ऐसी स्थिति है कि पत्नी, बच्चे या घर का सामान बेचने लगते हैं.
0: बिल्कुल.
1: तो ये वाली स्थिति कैसे आती है?
0: तो जो नशे के लत के 6 क्राइटेरिया होते हैं, उसमें तो एक तो हुआ क्रेविंग, जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा अर्ज हो रहा है कि हम ले ही लें. दूसरा हुआ टॉलरेंस, हमने एक पैक से शुरू किया, अब वो बढ़ के 4 हो गई है, फिर भी हमें मज़ा नहीं आ रहा है, 6 कर दो तो मज़ा आए. तीसरा हुआ विड्रॉल, हमने छोड़ दिया, शरीर में उलझन, घबराहट, नींद नहीं आना, हाथ थर थर आना, जिसको ट्रेमर्स कहते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स जाना जाता है इसे, वो आने लगे, फिर से जाके उसने नशा लिया. तो ये 3 क्राइटेरिया हुआ. इसके अलावा पता है कि नशा गड़बड़ है तो भी हम उसको यूज़ किए जा रहे हैं, ये 4थी चीज़ हुई जिसको बोलते हैं हार्मफुल यूज़. 5वीं चीज़ हुई जिसमें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल, पता है कि उसकी हेल्थ और फिजिकली और मेंटली गड़बड़ होगी तो भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है. और 6ठी चीज़ जिसमें मान लीजिए घर में कोई पार्टी है तो वो प्लेजरेबल एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसको सिर्फ नशे से मतलब है. तो इन 6 में अगर 3 भी फुलफिल होते हैं पिछले 1 साल से, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंस. तो इसका मतलब कि हमें काम करना लत का शुरू कर देना चाहिए, मरीज को फटाफट या तो भर्ती करें या उनको गाइड करें. नशा भी जैसे 2 चीज़ का होता है, जैसे मान लीजिए एक होता है सब्सटेंस यूज़, कभी कभार ले लिया, दूसरा होता है हार्मफुल यूज़, पता है कि फिजिकली हमें प्रॉब्लम हो सकती है, और फिजिकली में मतलब लीवर डैमेज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, और मेंटली भी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं लेंगे तो नींद नहीं आएगी, घबराहट होगी, तो भी हम ले रहे हैं. और तीसरी चीज़ होती है डिपेंडेंस, जो मैंने 6 चीज़ें आपको बताई उसके अंदर. ठीक है, तो ये नशे की लत कहा जाता है.
1: डॉक्टर साहब, इस लत पे हम और बात करेंगे. हमारे श्रोताओं का एक और लत है वो गाने सुनते हैं बहुत, और स्पेशली जो डॉक्टर आते हैं उनकी पसंद के गाने सुन के हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लगता है. कौन सा गाना आपका पसंदीदा है?
0: नमस्ते लंदन का मैं जहाँ रहूँ.
1: हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, चलिए सुनते हैं, ये गीत हमें भी बहुत पसंद है.

0: एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का। कार्यक्रम है सेहत की बात तरानों के साथ। हम बात कर रहे हैं नशा एक मानसिक बीमारी इस विषय पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, आप मनोचिकित्सक हैं। हम बात कर रहे थे कि नशा एक लत बन जाता है, क्या ये सिर्फ परिवार की कोशिशों से लत बंद हो सकती है या डॉक्टर की सहायता लगती है, और किस परिस्थिति में जाके डॉक्टर की सहायता ले लेनी चाहिए?
1: देखिए, परिवार छोटे मोटे नशे छुड़वा सकता है, मतलब वो भी पूरी तरीके से नहीं।
0: जी,
1: परिवार वाले बोलते हैं, जैसे वाइफ बोलती है या माँ बोलती है, बेटा नशा छोड़ दे, बेटा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो नशे का गुलाम हो जाता है। जो परिवार वाले बोलते हैं वो आवाज़ें उसको अच्छी नहीं लगती, क्या है ये जब देखो टोकते रहते हैं, जबकि वो रियलिटी से दूर होते जाता है, वो किसी का गुलाम हो रहा है और वो है नशा, उसके लाइफ में एक ही प्रायोरिटी रह जाती है नशा। तो परिवार वाले सिर्फ इतना हेल्प कर सकते हैं कि जब उनको पता चले कि ठीक है नशा कर रहा है, मान लीजिए कोई टीनेज में कोई किसी ने नशा किया, तो उनके घर वाले समझाएं उनको कि नहीं, नशा करना गलत बात है,
0: शुरुआती दौर में ही।
1: शुरुआती दौर में, और

0: दूसरी चीज, अगर मान लीजिए किसी गलत तरीके से कहीं जाके लड़का फंस गया इन सब नशों में, तो फैमिली का ही काम है कि उसको हम लेके जाएं और साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का हेल्प लेके, या उसको भर्ती करने की जरूरत है तो भर्ती करें और उसका उपचार दें।
1: बिहेवियरल चेंजेस जो हो रहे हैं उसको बहुत बारीकी से नोटिस करना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि वो किधर जा रहा है।
0: बिल्कुल। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है कि जैसे बच्चा अगर चिड़चिड़ कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, गुमसुम सा है, अपनी दुनिया अलग ही बना के रखा है, आपके साथ उसका बिहेवियर चेंज है, तो हमें सबसे पहले चीज तो नशे पे देखना पड़ेगा कि कहीं बच्चा गलत जगह पे तो नहीं फंस गया। उसे हमें उसी समय निकालना पड़ेगा और ये सिर्फ एक बॉन्डिंग ही अच्छा कर सकता है। तो फैमिली का यही काम है कि आप फटाफट उसे लेके जाओ और नशे की लत छुड़वाओ।
1: आप किस लेवल पे जाकर के डिसाइड करेंगे कि अब यहाँ डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
0: देखिए, फैमिली तो हेल्प कर सकती है, जैसे एक दो बार लिया तो उसको मना कर दिया, ठीक है, समझा दिया कि गलत है, और अगर बच्चा मान जाए या कोई एडल्ट मान जाए तो ठीक है। लेकिन अगर नशा लगातार है, जैसे कि मैंने आपको 6 क्राइटेरिया बताए, और दिख रहा है कि रोज कई शाम रोज पी रहा है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, उसके बिना नींद नहीं आ रही है, उसके बिना बेचैन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं हो जा रहा है, क्योंकि कई बार ना लीवर में पीलिया वगैरह की शिकायत, पेनक्रेटाइटिस, ये सारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो डैमेज होने लगते हैं,
1: अच्छा,
0: बीपी बढ़ रहा है, डायबिटीज की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें फटाफट उस समय मेडिकल इंटरवेंशन, मतलब जो MD मेडिसिन वाले होते हैं, उनकी भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, साइकेट्रिस्ट की भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, और बाद में साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब हमारे शरीर से जब नशा निकलने लगता है, हमें जो प्रॉब्लम होने लगती है जब हम भर्ती होते हैं, तो उस दौरान जो विड्रॉल सिम्टम जो मैंने आपको बताया था, जिसमें नींद नहीं आना, घबराहट, बेचैनी, हाथ में थरथरापन, ठीक है, और कई बार तो अफीम जैसे नशों में नाक से पानी, आँख से पानी, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द, मिर्गी के दौरे आना, जो घर में पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज़ के लिए हमें एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर शराब का नशा है लगातार है, तो हमें बिल्कुल डॉक्टर की सलाह से उसको छुड़वाने की कोशिश करनी चाहिए।
1: लेकिन अक्सर ऐसा होता है डॉक्टर साहब, कि परिवार के जिस सदस्य को भी इस तरह की लत होती है, वो डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार नहीं होते, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? परिवार के सदस्यों की भी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे वो कैसे उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास तक लेके जाएं। पहले तो खुद एक्सेप्ट करना, परिवार के सदस्य ही एक्सेप्ट कर लें कि ये आदि हो चुका है, लत लग चुकी है, और दूसरा उस आदि व्यक्ति जिसको लत लगी हुई है उसको ये एक्सेप्ट कराना कि अब आपको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है।
0: देखिए, इस पे मैं कुछ स्टेजेस की बात करूँगी। एक होता है प्री कॉन्टेम्पलेशन, जिसमें मरीज को लगता ही नहीं है कि मैं नशा लेता हूँ। जैसे हमें कभी मोटापा आता है, हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, मोटापा छुड़ाना है, देखी जाएगी, कोई मतलब नहीं है, जिसको प्री कॉन्टेम्पलेशन बोलते हैं। तो जो जब तक कि नशा वाला खुद अग्री नहीं होगा कि मुझे नशा छोड़ना है, परिवार हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। जब कॉन्टेम्पलेशन स्टेज आता है, जिसमें उसको पता है कि सही क्या है नशे से और गलत क्या हो रहा है, वो समझने लग जाए, फिर उसके बाद लगता है कि नहीं, मुझे अब इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, और फिर हमने एक्शन लिया कि नहीं, मुझे बिल्कुल एडमिट होके अपने इस नशे की लत को ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे मेरा बॉडी में तो दिक्कत हो ही रही है, मेरा पर्सनल लाइफ भी ख़राब हो रहा है, जैसे कि वाइफ गुस्सा हो गई, मायके चली गई, मैंने नशे में कई लोग पीट देती हैं वाइफ को, माँ को पीट देते हैं, उसे ये जब तक कि एहसास नहीं होगा वो कैसे नशा छोड़ेगा। तो पहले तो हमें उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसको सही गलत का तरीका बताना पड़ेगा, फिर उसको प्लान करना पड़ेगा, फिर कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके बाद उसको नशे की लत को छुड़ानी पड़ेगी। तो फैमिली मेंबर जो सबसे ज्यादा करीबी हो वो उसको बता सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड उस समय वो नशे के इन्फ्लुएंस में ना हो। अगर वो नशे के इन्फ्लुएंस में होगा तो यही लगेगा ना, क्या है बोल रहे हैं, चले जाएगा।
1: नशे का इन्फ्लुएंस, यहाँ आपने बोला, यहाँ रोकूंगी मैं आपको। नशे का इन्फ्लुएंस एक्चुअली, एक बार उसने नशा किया और अगले दिन दोबारा उसी समय यदि उसे चाहिए, तो बीच का पीरियड जो है, क्या उसे आप नशे का इन्फ्लुएंस नहीं बोलेंगे? क्योंकि नशे में वो नहीं है, तो क्या वो बीच में वो सारी बातें सुनेगा? क्योंकि वो अपनी स्थितियों से तो वाकिफ है ही।
0: देखिए, इस पे डिपेंड करता है डोज क्वांटिटी जो उसने कंज्यूम किया। जैसे मान लीजिए उसने एक बियर लिया, हैंगओवर कितने देर का होता है? कम मुश्किल से 12 से 24 घंटे, ठीक है, मान लीजिए कई जो नया वाले लोग होते हैं, बिल्कुल कभी लिया नहीं, एक बियर लिया 12 घंटे

0: हैंगओवर है, फिर बिल्कुल फ्रेश हो गए, ठीक है। लेकिन जो रोज़ रोज पीने वाला आदी है, कई बार ऐसा होता है बिंज ड्रिंकिंग करते हैं लोग, जैसे 3 दिन लगातार पिए जा रहे हैं, 4-5 दिन और पिए पिए पिए, उसके बाद अचानक से छोड़ दिए, 20 दिन तक बिल्कुल नहीं लिए, फिर सोचे नहीं हमें सुधर जाना चाहिए, हम नहीं करेंगे। तो वो जो पीरियड है जिसमें बिल्कुल वो नॉर्मल है, सोचने और समझने की शक्ति है उसमें, उसका कॉग्निशन बिल्कुल ठीक है, वो सामने वाले की बात को समझ सकता है बिना इरिटेट हुए, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकता है, हमारा वो टाइम है कि हम उसको फटाफट लेके जाए।
1: वेरी गुड।
0: नहीं तो अगर आप नशे के इन्फ्लुएंस में, जैसे उसने 4 पैग मार लिया और वो सोया पड़ा है, फिर वो सुबह उठा थोड़ा सा झूम रहा है, फिर उसको लग रहा है मैं और पी लूँ, तो उस समय हम उसको कुछ भी बोलेंगे वो हमारे लिए व्यर्थ है, उल्टा लड़ाई झगड़े और हो जाएंगे। जैसे कई बीवियां पिट के आती हैं कि डॉक्टर साहब मार दिया, ये जब भी पी लेते हैं ऐसे करते हैं, तो हमें उस स्थिति का वेट करना होगा कि नशा शरीर से निकल रहा है, नॉर्मल मरीज हो चुका है, और हम उसको एहसास दिलाएं कि क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि नशा से पूरी फैमिली भी खराब हो रही है, उसकी पर्सनल लाइफ भी खराब हो रही है, और फिजिकल हेल्थ तो हो ही रहा है।
1: डॉक्टर साहब यहाँ एक ब्रेक लेंगे, गीत सुनना चाहेंगे हम, कि कौन सा गीत अब डॉक्टर प्रियंका शर्मा हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं।
0: तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, मासूम मूवी का
1: बहुत सुंदर ये भी गीत है, चलिए सुनते हैं।

0: नशे दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है सब्सटेंस यूज। सब्सटेंस यूज में जो चीजें हम मुंह से खाएं, ठीक है, नाक से सूंघें, अपने शरीर पे लें, और एक होता है नॉन सब्सटेंस जो वर्चुअल होता है, जो दिखाई देता है, वो डिजिटल भी हो सकता है, इंटरनेट एडिक्शन, गैम्बलिंग भी हो सकता है, पोर्नोग्राफी भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: हाँ, ये है नॉन सब्सटेंस। मैं नॉन सब्सटेंस पर पहले बात करूंगी, जैसे पोर्नोग्राफी। आजकल 17-18 साल के बच्चे पोर्नोग्राफी मोबाइल पे देखते हैं, उसके बाद उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम आने लगती है, तो उसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं, धात सिंड्रोम लेके आ जाते हैं। पोर्नोग्राफी में टाइम इंडल्ज कर रहे हैं इतना कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऑनलाइन गैम्बलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, और प्लस इंटरनेट एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, ये सब चीजें जो है ये नॉन सब्सटेंस। जो सब्सटेंस वाली होती है उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है लीगली एक्सेप्टेड, जैसे कि शराब की दुकान कहीं भी जो वो लिया, लाइसेंस लिया, खोल दिया। लीगली एक्सेप्टेड में टोबैको है, एल्कोहल है, और बेंजोडाइजेपिन, जो नींद की गोलियां होती है, जो सिर्फ साइकेट्रिस्ट लिख सकता है, लेकिन जो दुकानदार है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी
1: दे
0: बच्चों को दे देते हैं और बड़ों को भी दे देते हैं, जिसकी लत पड़ी रहती है। और इसी में लीगली एक्सेप्टेड अलग था, एक इलिसिट ड्रग होता है। इलिसिट में होता है कैनबिस, जिसको भांग, गांजा, चरस ये बोलते हैं, एक ही प्लांट से अलग अलग कंपोजिशन के, उसमें ट्राई टेट्रा हाइड्रोकैनबिनॉल होता है, तो उसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कम होता है भांग में, ठीक है। उसी को जब हम रोल करके पियेंगे उसमें 9% होगा THC, वो गांजा हो गया। उसी में चरस हो जाती है जो और ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म हो, ठीक है, तो ये है कैनबिस। कैनबिस जो है वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस करता है, जैसे हमने शराब की बात की कि हमें ट्रेमर्स आएंगे, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, ये सब उसमें नहीं होता। उसमें ना दिमाग में रहता है अच्छा मुझे जाके लेना है, उसके बिना नींद नहीं आएगी। तो अगर कोई कैनबिस लेता है, मतलब भांग लेता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है आँखें बिल्कुल रेड दिखेंगी आपको।
1: अच्छा,
0: ज़्यादा लेने के बाद अजीब सी स्मेल आएगी, स्मेल ही डिफरेंट होगी, और वो खाने का बहुत ही, मतलब जो वो दो चपाती खाता था वो उसी समय 6-7 खा ले।
1: अच्छा।
0: और मीठा बहुत पसंद आएगा उसको, तो इससे पेरेंट्स जान सकते हैं कि अच्छा बच्चा ये करके आया है, क्योंकि जो भांग और गांजा है आजकल हर स्कूल में, लोग सिगरेट तो पीना शुरू करते हैं, गांजा भी मिला मिला के पीते हैं, और ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स आते भी हैं हेल्प के लिए। इसके अलावा जब हमने दारू की बात कर ली, कैनबिस की बात कर ली, अब मैं बात करूंगी अफीम। ओपियोइड में घर में कोडीन की सिरप आती है खांसी के लिए, ठीक है, वो भी एक्चुअली उसमें भी अफीम है। अफीम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि ब्राउन शुगर, मॉर्फीम, अफीम, डोडा, स्मैक। स्मैक जिसको हम एल्युमिनियम के फॉइल में नाक पाउडर रख के जला के नाक से लेते हैं, तो अगर वो सफ़ेद है तो इसका मतलब वो बिल्कुल प्योर है, लेकिन आजकल प्योर नहीं मिलता। आजकल वो हल्का सा कलर चेंज होता है उसका, और जो इम्प्योर होता है उसमें लोग बेसिकली बेंजोडाइजेपिन या कुछ मिला देते हैं। अफीम से मिर्गी नहीं आता, लेकिन मैंने जितने यहाँ पे केसेस देखे हैं, अफीम ले रहे थे मैम, उसके बाद छोड़ा और हमें मिर्गी आ गया, तो इसका मतलब वो मिलावटी अफीम है। एक चुटकी अफीम 300-400 ऐसे में आती है। इसी का एक और नाम है स्पैस्मोप्रोक्सिबिन, लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि उससे वजन कम होता है। फोर्टमिन फिनार्गन इंजेक्शन सुना होगा आपने। जब मैं लखनऊ में थी, पीजी कर रही थी एमडी, तो 2014 के आसपास कोई औरत आई, बहुत ही पतली दुबली, उसने बोला मुझे बहुत शरीर में दर्द होता है, मुझे तो इंजेक्शन नहीं मिला, रहा नहीं जाता। जब पता किया तो पता चला कि क्वैक्स जो होते हैं झोला छाप डॉक्टर, उसको रोज फोर्टमिन फिनार्गन लगाते थे, था तो वो अफीम। तो अफीम एक्चुअली गांव में इंजेक्शन के तौर पे लोग ऐसे लगा देते हैं कि ठीक है इससे दर्द खत्म हो जाएगा, मरीज को आराम मिल जाएगा, लेकिन वो है अफीम। और अफीम कैंसर के रोगियों में दिया जाता है जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो उसमें, लेकिन हम उसका गलत लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जैसे कि अफीम में ही आता है एक सिरप, जिसको एक सिर्फ पीना शुरू किया फिर वो 4-5, तो अफीम भी एक बहुत ही मुश्किल वाला ड्रग है, जो ग्वालियर में भी अच्छे धड़ल्ले से बिक रहा है, जिसकी बिक्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये अफीम अगर हम छोड़, मतलब जो मरीज छोड़ता है, तो उसे उलझन, घबराहट, नींद नहीं आना, हाथ पैर में दर्द, नाक से पानी, आँख से पानी, दस्त, ये मुख्य लक्षण होते हैं। इसको छुड़ाने का एक तरीका होता है कोल्ड टर्की। अगर मरीज बिना डॉक्टर के पास जाए हुए, बिना कोई दवाई लिए हुए अपने आप को रोक दे अफीम लेने से, तो 7-8 दिन उसको

0: बहुत मुश्किल होगी, फिर खुद वो सेल्फ मोटिवेट कर लेगा कि मुझे नहीं लेना, तो वो नहीं लेगा और वो डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, मतलब उसका शरीर से पूरी अफीम निकल जाएगी, फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी जगह पे तो हमें डॉक्टर्स की मदद लेने की जरूरत पड़ती ही है। चौथा नशा है सिडेटिव हिप्नोटिक्स, जो नींद की गोलियां होती है, जो बिल्कुल शराब जैसी होती है, उसके सिम्टम्स वैसे ही होते हैं, लक्षण नींद नहीं आना, ये बस इसमें फर्क ये होता है कि जब नींद की गोली लेते हैं उसमें स्मेल नहीं आती, शराब में तो स्मेल आती
1: है। स्मेल आती है।
0: इसके अलावा स्टिमुलेंट्स, जो रेव ड्रग, आजकल जो पार्टी में लोग जाते हैं रेव ड्रग बड़े बड़े सिटीज में करते हैं, उसमें स्टिमुलेंट्स यूज़ करते हैं, एम्फेटामिन, कोकेन, इसको क्लब ड्रग भी कहते हैं, MDMA, एक्टेसी, ये ड्रग अगर एक बार इंसान ले ले, कोकेन एक बार सूंघ लेना, बाकी नशे तो छूट सकते हैं, लेकिन कोकेन ऐसा है कि अगर एक बार ले लिया तो वो दोबारा ज़िंदगी में छोड़ नहीं सकता, इतनी हानिकारक दवाइयाँ ये सब। जो मैंने शुरू में बात की थी डोपामिन की, वो ऐसा सक्रेट होता है कि लगता है हम तो बिल्कुल
1: जन्नत में आ गए,
0: जन्नत में आ गए। एग्जैक्टली, आपने सही वर्ड दिया। इसके अलावा एक नशा होता है टोबैको, जिसको निकोटिन जो होता है
1: तंबाकू,
0: वो भी
1: नशा ही है।
0: उसके बिना लोग टॉयलेट भी नहीं जा पाते। कई बोलते हैं ना कि अगर हम नहीं खैनी खाएं या हम सिगरेट नहीं पिए तो हमें टॉयलेट नहीं आती। फिर कैफीन, जो हम कॉफी, चाय और सारे कोल्ड ड्रिंक्स, आपने देखा होगा कि लोग एक दो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अब वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो बेसिकली कैफीन का नशा है। इसके अलावा हेलुसिनोजेनिक रिलेटेड ड्रग्स होते हैं, जैसे कि LSD, ये भी पार्टी ड्रग्स होते हैं। फिर एक नशा आता है इनहेलेंट्स, जिसमें ग्लू, एडेसिव और थिनर, इससे नाक में होल भी हो सकता है और कई सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
1: अच्छा।
0: नींद नहीं आएगी, विड्रॉल सिम्टम्स होगा। ये आजकल बहुत मैं देख रही हूँ छोटे बच्चों में, जो रोड स्ट्रीट
1: इजीली अवेलेबल होता है, शायद इसीलिए सस्ता होता है।
0: बिल्कुल। और फिर इसके अलावा होता है एक स्टेरॉइड, एनाबोलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, जो जिम वाले मतलब बॉडी बिल्ड कर रहे हैं, उसकी भी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो वो हानिकारक ही। इसके अलावा गैम्बलिंग, जो मैंने आपको बताया कि वो नॉन सब्सटेंस है, गेमिंग डिसऑर्डर, इंटरनेट और सेलफोन, इतने तरह के एडिक्शन है। और कहीं ना कहीं ये एडिक्शन किसी को जाता है तो उससे सिर्फ वो बंदा परेशान नहीं होता, पूरी परिवार, पूरी कम्युनिटी परेशान होती है।
1: डॉक्टर साहब, इतनी तरह के नशे आपने बताए हैं, मुझे तो लग रहा है कि हम सबको अपने अंदर झांक के देखने की ज़रूरत है कि कहीं हम इन सब की लत में तो नहीं पड़े हैं, क्योंकि सब्सटेंस अब्यूज़ और नॉन सब्सटेंस अब्यूज़, ये दोनों ही चीज़ें समाज में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम, एक गीत सुनेंगे और उसके बाद अपने इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। गीत बताइए हमारे श्रोताओं को, कौन से सुनवाएंगे आप?
0: रॉकस्टार का नादान परिंदे।
1: क्या बात है। चलिए सुनते हैं हम आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक बार फिर स्वागत है हमारे श्रोताओं का कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा और हम बात कर रहे हैं नशा एक मानसिक बीमारी के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी बता दिया, नशे किस तरह के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं ये भी बता दिया। हमें ये बताइए कि किस तरह से रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं वो काम करते हैं और रिहैब के बाद परिवार को किस तरह से काम करना चाहिए।
1: देखिए, अगर हम रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाते हैं तो पहले तो पेशेंट का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, मतलब कि जैसे वो कोई भी तरीके का जो नशा ले रहा था उसे हम बिल्कुल रोक देते हैं। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में वो पेशेंट, जब हमने शुरू में बात की थी कि हमें स्टेज आया कि हमें अब प्लान करना है और अपने ऊपर कंट्रोल करना है और हम नशा से मुक्ति चाहते हैं इसलिए हमें भर्ती करो, हमें वो बंदे को लें तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो जब वो पेशेंट आता है तो उसको हम पहले बताते हैं कि देखिए, आपको जो भी परेशानी हो रही थी जब आप नशा 2-3 दिन के लिए छोड़े थे या 1 दिन के लिए छोड़े थे, जब आपको दिक्कत हो रही थी, वो दिक्कत हम नहीं होने देंगे। 70-80% हम वो दिक्कत नहीं होने देंगे, 10-20% आपको थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा, जैसे कि उलझन, घबराहट, बेचैनी, ठीक है। उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट ड्रग्स देते हैं जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे और आपको ये दवाइयाँ लेनी है, तो उससे जो उसको बेचैनी थी वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, काम डाउन हो जाएगा। बेसिकली हम लोग उस दौरान बेंजोडाइजेपिन, जो नींद की गोलियाँ होती हैं, उनके कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और उनको थोड़ा सा, जो भी नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, तो जो जो उनके प्रकार के ड्रग्स हैं, जो अभी मैं मतलब नाम लेने से कोई मतलब नहीं होगा, वो हम यूज़ करके मरीज़ को डिटॉक्सिफाई करते हैं 7-8 डेज में। तो शरीर से पूरा नशा निकल गया। जैसे ही शरीर से पूरा नशा निकला, हम मरीज़ से पूछेंगे, जब यहाँ से जाओगे तो नशा लोगे? तो बोलेगा, अरे दोस्त यार बैठेंगे, फिर

0: में कोई बोल देगा कि तुम बीवी के गुलाम हो गए हो, तुम
1: हम्म,
0: माँ बाप की सुनते हो, तब क्या करेंगे डॉक्टर साहब? तो क्या चाहते हो, उनसे ये पूछा जाता है कि आप विल पावर कैसा है आपका? अगर आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है कि आप नो करने की हिम्मत रखो तो ठीक है, लेकिन आपके ऊपर बहुत प्रेशर है और आपको खुद डर लगता है कि अच्छा मैं इस सेंटर से जब निकल के जाऊँगा उसी रास्ते जाऊँगा, एक पी लूँगा, ठीक है? तो उस दौरान हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं, साइको एजुकेट करते हैं। कई केस में तो हम उनको बताते हैं तीन चीज़ें, नशा, दोस्त और काम करना। नशे से दूर रहना है आपको, कैसे रहना है उसके लिए आप कुछ कुछ प्रोडक्टिव वर्क करो, फैमिली में टाइम स्पेंड करो। कई लोग होते हैं ना सुबह से नशा कर रहे हैं, फैमिली से कोई मतलब नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो, अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करो, ठीक है? और घर का, मम्मी पापा का ध्यान रखो, वाइफ का ध्यान रखो, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाओ, ठीक है? कुछ काम करने के लिए नहीं है तो सब्जी लेके आ जाओ। दूसरा, दोस्त, जो दोस्तों के साथ उठते बैठते थे उनके साथ बैठना छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको वो सर्कमस्टेंस में लाएंगे
1: वापस
0: ही लाएंगे,
1: खींच लेंगे।
0: बिल्कुल। और तीसरा, जिंदगी में हमेशा एक मकसद रखो कि मुझे ये करना है, मुझे 3 महीने बाद ये करना है, तो हम काम करना। तो जब आप ये उसकी धुन चढ़ जाएगी ना, तो जो काम करके हमें सेटिस्फेक्शन होगा, सेम चीज जब हम डोपामिन रिलीज होगा वो धीरे धीरे होगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। तो शराब के मरीजों में हम उनको अल्टरनेटिव देते हैं कि ठीक है आपको नशा से मुक्ति चाहिए, ये दवाइयाँ हम लिख के आपको दे रहे हैं। अगर वो बोलेगा नहीं मेरे ऊपर शराब ज़्यादा हावी हो जाता है, तो हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दो जिससे हम डरे रहें और हम नशा ही ना करें। तो उसके लिए एक आती है डाइसल्फिराम, जो झोले छाप बाबा लोग होते हैं ना, वो कई माँ और कई बीवियों को दे देते हैं कि अपने बेटे को या अपने पति को खाने में ला के दे देना,
1: तो छूट जाएगा नशा,
0: उसका कॉन्सिक्वेंस नहीं जानते, उसे डेथ भी हो सकती है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि हमेशा जब हम लोग उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, कंसेंट लिखवाते हैं मरीज से, एक आई कार्ड देते हैं मरीज को कि मरीज इस ड्रग पे है, अगर इसको कोई दिक्कत होगा, शराब अगर ये पीता है, ये अगर अनकॉन्शियस हो गया या इसकी सांसें चलने लगी, तो फटाफट इमरजेंसी में लेके जाना है और इसकी ट्रीटमेंट ऐसे करनी है। वो बकायदा मरीज के साथ रहना चाहिए। और ऐसे कई सारे पेशेंट हैं जो कंसेंट लेके और नशा को छोड़े हुए हैं। कई लोग तो ड्रग ही छोड़ देते हैं, उन्हें फिर से नशे में जाना होता।
1: अच्छा, तो ड्रग लेते ही नहीं,
0: लेते ही नहीं है। तो हमें उसमें भी फैमिली की हेल्प चाहिए, बिल्कुल, कि जिससे वो बहुत ही डरता हो। जैसे घर होता है ना, घर में कोई मदरली फिगर या फादरली फिगर, इससे ये बंदा बहुत डरता है, वो सुबह सुबह उसको दवाई खिलाए ताकि वो 24 घंटे उनके शरीर में बना रहे और वो नशा ना ले। अगर नशा लेंगे तो उनको रिएक्शन होगा। कई लोगों को हम वो इस्तेमाल करके दिखा भी देते हैं कि अगर आप नशा लोगे तो यही रिएक्शन आपको बाहर होगा, अस्पताल में तो मैनेज हो जा रहा है, बाहर कैसे होगा। तो ये नशे के साथ हुआ, मतलब अल्कोहल के साथ हुआ। एक अफीम जो आती है, अफीम के भी ट्रीटमेंट के लिए, एक तो कोल्ड टर्की कर सकते हैं, घर में ही बिल्कुल छोड़ दिया, हमें उतना विड्रॉल दिक्कत नहीं होगी, और नहीं तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में गए, वहाँ भी जो हमें परेशानियाँ हो रही थी, दस्त हो रहे थे, हाथ पैर में अकड़न, दर्द, उसका ट्रीटमेंट लिया, अपने आप शरीर से निकल गया अफीम 7 से 10 दिन में। तीसरी, जैसे बाकी स्टिमुलेंट्स हैं, आई होप कि ग्वालियर में शायद नहीं मिलते होंगे, लेकिन ग्वालियर में भांग, गांजा, अफीम और अल्कोहल, निकोटिन, ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो उसमें बेसिकली है कि हम घर में जब मरीज को रिहैबिलिटेशन सेंटर से छोड़ें,
1: मतलब डिटॉक्स कराने के बाद रिहैबिलिटेशन सेंटर से वापस लाते हैं,
0: लाते हैं, तो उनको 3-4 चीज़ें बिल्कुल बताएं कि आप बिल्कुल नो करना सीखो। अगर वो डाइसल्फिराम पे है तो उसको कुछ नहीं होने वाला, वो खुद ही डरा रहेगा कि मुझे नहीं लेना है। और अगर मान लीजिए वो बिना किसी ड्रग के, जैसे हम लोग हार्डी, जैसे किसी को डिप्रेशन है, कई बार अल्कोहल और ये सारे ड्रग्स लेने से डिप्रेशन, गांजा लेने से तेजी की बीमारी, बड़ी बड़ी बात करना, अपने हैसियत से बड़ी बातें करना, जिसको मैनिया कहते हैं, तो भांग वाले लोगों को इसकी वजह से ये भी होते हैं ये लक्षण। तो हमें रिहैबिलिटेशन सेंटर से जब छोड़ते हैं तो उसकी जो बाकी साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डिप्रेशन है या तेजी की बीमारी है या सिजोफ्रेनिया, पागलपन, जो गांजे से हो जाता है, कई बार मैंने पेशेंट देखे हैं, अल्कोहल से भी हो जाता है। आपने सुना होगा हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर शक कर रहा है, जिसको डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी बोलते हैं, तो साथ में जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं उसका भी ट्रीटमेंट दे के हम उनको अलविदा कहते हैं। लेकिन अब मेन काम यहाँ आ जाता है मरीज का और उनके फैमिली मेंबर्स का, कि हमें आगे की लाइफ कैसे संभालनी है, मैनेज करनी है। कोई भी आदत लाने में 21 दिन लगते हैं, और अगर हम बिल्कुल छोड़ना चाहें कि हमें नहीं लेना है नशा, तो हमें 21 दिन तक

0: हम कंट्रोल कर ले जाएंगे तो हम 80% हम उसको कंट्रोल कर ले जाएंगे, लेकिन 2 to 5 years लगता है बिल्कुल नशे को ना कहने में.
1: अच्छा.
0: अगर 2 साल कोई बिना नशे का रह गया तो 99% चांस है कि वो जिंदगी भर
1: नहीं लेगा.
0: लेकिन अगर वो 1 महीने में फिसल गया तो फिर तो फैमिली की भी मुश्किल और वो पेशेंट की भी मुश्किल. तो रिहैबिलिटेशन सेंटर से निकलने से पहले हम उनको कई सारी चीज़ें बताते हैं कि आपका फुल टाइम जैसे टाइम टेबल मेंटेन करो, दवाइयाँ टाइम पे लो, ज़िंदगी में एक मकसद रखो कि हमें ये पाना है. ये नहीं कि आपने कुछ खोया तो ये तो बहाने होते हैं ना नशे वालों के. अच्छा ये ख़राब हो गया इसलिए अच्छा तो मैं थोड़ा नशा ही कर लेता हूँ, ये सब बहाने होते हैं. तो यहाँ पे फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है. देखिए 95% लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो नशे में जब डूब जाते हैं तो वो क्या गलत है क्या सही ये भूल जाते हैं. तो हमें नशे से कोई फ़ायदा नहीं है. फ़ायदा तो सिर्फ वो होगा ना मरीज़ के लिए कि अच्छा मुझे मज़ा आया मैं और कर लूँ, लेकिन वो उस दौरान उसके क्या नुकसान हो रहे हैं वो भूल जाता है कि उसकी सोसाइटी में नाम ख़राब हो रही है, वो जो काम कर रहा था वो करना ख़त्म कर दिया, फैमिली के वो टाइम नहीं दे पा रहा है, पैसे अलग वेस्ट हो रहे हैं. तो मेनली रिहैबिलिटेशन सेंटर से जब वो जाएंगे कुछ ड्रग्स के ऊपर तो उसको मेंटेन रखें और 10-15 दिन में आके विजिट करें. और उनको एक और काम दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये का नशा किया था, एक आप पिगी बैग बना लो उसमें 100 रुपये डालते जाओ महीने के अंत में. कई लोग 1000 के बीच नशा कर लेते हैं, महीने के अंत में अगर मान लीजिए आपका अच्छा खासा अमाउंट जमा हो तो आप कहीं अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे चले जाओ.
1: क्या बात है.
0: तो उससे आपको अच्छा लगेगा कि अरे यार मैंने इतने नशे में वेस्ट किया, अब देखो मैं कितना 4-5 दिन की ट्रिप पे चले गए. और अगर आप 100 रुपये वाले हो तो 3000 का जाके बाहर मूवी देख लो, खाना खा लो, वो भी एंजॉय करो. तो कई सारे ऐसे टैक्टिक्स और ट्रिक्स हैं जो हम पेशेंट को बताते हैं, बस पेशेंट उसको अगर फॉलो करे तो नशे से मुक्ति बिल्कुल मिल सकती है.
1: डॉक्टर साहब कितनी अच्छी सारी बातें समझ में आई कि नशा जो वास्तव में एक मानसिक बीमारी है उसको यदि तरीके से हैंडल किया जाए तो अभिशाप बनने से, सामाजिक अभिशाप बनने से रोका जा सकता है. और इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए सभी लोगों का मिलकर काम करना बेहद जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर प्रियंका आपने. हमारे श्रोताओं की तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच. नमस्कार.
1: नशा एक मानसिक बीमारी. अभी आप इस विषय पर कार्यक्रम सेहत की बात तरानों के साथ में डॉक्टर प्रियंका शर्मा से तूलिका शर्मा की बातचीत सुन रहे थे. यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है. लीजिए सुनिए फिल्म संगीत. सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया ये गीत. फिल्म का नाम है आपकी कसम.
2: सुनो
3: कहा
2: कहा
3: सुना.

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फिल्म खेल खेल में का ये गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में।

0: इस गीत को हम आपको फिर कभी सुनवाएंगे पूरा। फिलहाल फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। यह आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा।
1: देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में कार्य किया है। प्रदेश में 5वें और 8वें के

0: निर्णय परीक्षा की तारीखें बदल दी गई हैं। पहले ये परीक्षा 1 से 6 जून के बीच होनी थी, लेकिन अब ये 16 से 23 जून तक होगी। इसके बाद 24 से 28 जून के बीच कॉपियां जांची जाएंगी। केंद्र सरकार ने पेंच, कान्हा और बांधवगढ़ को यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार का प्रस्ताव जल्द ही यूनेस्को को भेजा जाएगा। उज्जैन संभाग के 11 मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए के टेम्पल बॉन्ड जारी कर दिए जाएंगे। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार पर कुल 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 31 जुलाई तक टेम्पल बॉन्ड जारी कर दिए जाएंगे। भोपाल में एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने कल पति समर सिंह और सास गिरिबाला सिंह को 5-5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार 7:00 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे।
2: हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पर्यटन के बदलते आयाम के बारे में। गर्मी की छुट्टियां लग गई हैं और काफ़ी सारे लोग घूमने का, कहीं ना कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। तो इन सब का क्या मकसद है, क्या इनके फ़ायदे हैं, इस विषय पर हम आप सभी की राय लेंगे और सुनवाएंगे कुछ मनपसंद, हमारी पसंद के गीत। तो चलिए कॉल कीजिए 2660902 पे और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। हमें इंतज़ार है आपके फ़ोन कॉल्स का। हेलो
3: मैडम, नमस्ते।
2: नमस्ते जी।
3: जी फोन करेगी सुने हैं
2: जी? नहीं, बात आपकी गीत हमारे।
3: बात आपकी गीत हमारे हैं।
2: आज हम किसी विषय पर आपसे बात करेंगे और फिर सुनवाएंगे अपनी पसंद का गीत।
3: जी मैडम।
2: तो बताइए क्या शुभ नाम है आपका?
3: हमारा नाम गिरधारी सेन है।
2: गिरधारी
3: सेन
2: कहाँ से? कहाँ से बोल रहे हैं गिरधारी जी?
3: दमोह से बोल रहे हैं मैडम।
2: दमोह से, अच्छा। तो फैमिली में कौन कौन है?
3: फैमिली में बच्चे हैं हमारे दोनों।
2: अच्छा, और कितने बड़े बड़े हैं आपके बच्चे?
3: अभी 12th पास हुआ है लड़का।
2: हाँ,
3: तो कॉलेज में जा रहा है। बच्ची अभी 10वीं पास हुई तो 11वीं क्लास में जा रही है।
2: अच्छा। चलिए, तो कहीं घूमने का प्लान बनाया है कि नहीं आपने?
3: घूम आए हैं मैडम।
2: अच्छा, घूमा है? कहाँ पर घूम कर आए?
3: दो तीन जगह हुआ है, जो उज्जैन हो गया है।
2: हाँ?
3: हाँ, और यहाँ पे अभी मैहर से लौटी है।
2: चलिए बढ़िया। तो हम यही बात करना चाह रहे हैं कि जो अपन पर्यटन के लिए जाते हैं।
3: जी,
2: पर्यटन के लिए जाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है?
3: अब उसमें क्या है कि मैडम जी, अब गर्मियों की छुट्टी भी चल रही है, बच्चों का एंजॉय हो जाता है।
2: हाँ,
3: और का, और घूमने फिरने में थोड़ी क्या है कि अपने यहाँ से हट के दूसरे जगह वहाँ का माहौल भी अपना वो आ जाता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि है ना, हम लोगों का जो मन है वो भी इतने सुंदर दृश्य देख के थोड़ा सा, जो कहते हैं ना, रिचार्ज हो जाता है
3: जी,
2: है ना, परिवेश बदलने से, माहौल बदलने से, सुंदर सुंदर नज़ारे देख कर। बस इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो गिरिधर जी, आपका बहुत बहुत आभार आपने कॉल किया, और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा और कल अपना प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। ठीक है, नमस्ते।
3: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ जी
0: नमस्कार।
1: नमस्ते। हाँ जी नमस्ते।
0: हेलो, नमस्कार।
1: हाँ जी कौन बोल रहे हैं
0: बुरहानपुर से सलीम,
1: जी?
0: बुरहानपुर से सलीम बोल रहा
1: बुरहानपुर से सलीम
0: हूँ।
1: जी। सलीम जी क्या हाल है?
0: अच्छे हाल है आप? जो बोलो मैडम, बहुत दिनों से सुन रहे थे तो मैंने कहा आज लगा के देखो,
1: अच्छा।
0: आपका कार्यक्रम बहुत।
1: हाँ तो ये बताइए सलीम जी, फैमिली में कौन कौन है आपके?
0: हमारी फैमिली में दो भाई है,
1: हाँ
0: सात भतीजी है, भतीजा है।
1: अच्छा। तो कहीं घूमने उमने जाते हैं कि नहीं जाते आप?
0: जाते हैं मैडम, मैं तो नाबीना हूँ मैडम, मेरे को दोनों आंखों से नहीं दिखता।
1: अच्छा लेकिन है ना महसूस तो कर सकते हैं आप,
0: हाँ मैडम,
1: है ना? तो
0: हाँ
1: बस यही जानना था कि जो हमारे पर्यटन हैं
0: हाँ
1: उनके बदलते आयाम क्या हैं, हम लोग क्यों घूमना पसंद करते हैं कहीं भी अपने घर से बाहर जाकर, थोड़ा सा
0: मैडम,
1: बाहर की वादियों।
0: मैं तो इसलिए घूमना पसंद करते हैं कि वहाँ वातावरण साफ होना चाहिए, सुंदर
1: हाँ
0: होना चाहिए। हाँ,
1: हाँ
0: गंदगी साफ होना चाहिए बिल्कुल, और माहौल अच्छा होना चाहिए, भाईचारा
1: बिल्कुल। और
0: का।
1: आज जो पहले हम लोग घूमते थे और आज के घूमने में कुछ तो फर्क आया है ना? अब ज्यादा आसान हो गया है या कठिन है, आप क्या कहना
0: नहीं
1: चाहते हैं?
0: मैडम, आसान तो हो गया, पर क्या है कि अभी भी जैसे कुछ परेशानी जाने में लगती है
1: जाने में बल्कि अब आसान हो गया, सबके पास स्मार्टफोन
0: ना।
1: है।
0: अपन जैसे बाहर जाओ,
1: हाँ
0: बाहर पर्यटन में तो ट्रेनों में इतनी गर्दी रहती कि मैं बता नहीं सकता,
1: हाँ लेकिन पहले
0: उसमें
1: की तुलना
0: पड़ता
1: में अब
0: ना।
1: अपन
0: वहाँ वहाँ पहले से आसान हो गया
1: पहले से
0: जाना।
1: काफ़ी आसान हो गया है। हमारी बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाती हैं। हम अपने होटल्स की बुकिंग कर लेते हैं, ट्रेन की
0: ये
1: बुकिंग
0: बात तो सही
1: एडवांस में
0: बात
1: कर लेते हैं, और गूगल मैप के ज़रिए हम अपना रास्ता भी चुन लेते हैं आसान तरीके से, है ना?
0: है। हाँ मैडम,
1: जी। चलिए समीर सलीम जी
0: हेलो
1: आपका।
0: मैडम,
1: हाँ जी
0: आपका नाम क्या है?
1: कविता रावत।
0: सविदास।
1: चलिए
0: चलो
1: सलीम
0: ठीक
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया।
0: है, आपका भी धन्यवाद। बॉय पहली बार लगाया मैडम, बहुत दिनों से सुन रहा था रेडियो, मैं सुनता
1: चलिए
0: रहता हूँ, तो मैंने कहा
1: बिल्कुल,
0: आज
1: आपका
0: ट्राई
1: हमेशा
0: करूँ।
1: लगेगा, आप ट्राई किया करिए,
0: हाँ
1: और धन्यवाद कॉल करने के लिए।
0: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी।
0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम
1: आरती भारद्वाज।
0: आरती भारद्वाज।
1: हाँ
0: आरती जी, आपने कॉल 1 हफ्ते बाद ही किया होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ।
1: नहीं, बहुत दिन में, करीबन 3-4 महीने हो गए
0: चलिए कोई
1: मतलब।
0: बात नहीं, एक्चुअली 1 हफ्ते के अंदर हम दोबारा कॉल नहीं ले पाते हैं अपने लिसनर्स का, इसलिए
1: क्योंकि
0: कोई बात।
1: फरवरी में लगाई थी।
0: अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हेलो,
0: कहाँ से बात कर रही हैं?
1: बुरहानपुर से।
0: अच्छा, बुरहानपुर से हैं आप भी।
1: हाँ,
0: अभी हमारे जो
1: बुरहानपुर।
0: श्रोता का कॉल आया था सलीम जी का, और वो भी बुरहानपुर से थे, तो बुरहानपुर की
1: बुरहानपुर
0: लाइन आज काफी क्लियर है ना फोन कॉल
1: मैं
0: से
1: बार
0: जी।
1: बार लगाई थी, 2 बार पहले लगाई लगा चुकी हूँ।
0: अच्छा।
1: वो दो
0: आरती
1: तीन
0: जी क्या
1: दोस्त थे,
0: करती हैं
1: मतलब
0: आप?
1: कुछ नहीं, घर का काम। वो खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत आ जाते हैं, बाड़ी वगैरह लगाते हैं
0: अच्छा।
1: ऐसे
0: फैमिली में
1: कुछ
0: कौन कौन है?
1: नहीं।
0: और
1: क्या
0: आपके

0: परिवार में कौन कौन सदस्य हैं?
1: मेरे सास ससुर देवर देवानी ननद हाँ सब है।
0: अच्छा।
1: दो अच्छी दो लड़कियां हैं।
0: तो आरती जी कहीं घूमने जाती हैं आप पर्यटन के
1: हाँ
0: लिए?
1: अभी आए घूम के तो अभी घर थे मायके। हाँ
0: अच्छा, तो
1: भोपाल से जरा साइड में पड़ता नर्मदापुरम जिले में शिवनी
0: हाँ
1: बनपरा।
0: हाँ अच्छा, तो कैसा लगता
1: हाँ
0: है आपको? मतलब इसके अलावा भी आपने कहीं जो सुंदर सुंदर वादियां हैं, अच्छे अच्छे दृश्य वाली जगह जो होती हैं घूमने के हिसाब से,
1: हाँ
0: वहां भी घूमे हो?
1: हाँ बहुत घूमने की जगह हमारे यहीं पे बुरहानपुर में।
0: ये बात सही है। कैसा लगता है आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। बहुत अच्छा घूमने लायक बहुत जगह है। आशीर्वाद का किला है। हम मतलब यहाँ रहते हैं वहाँ 12 मंदिर है। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग बनी है नागझिरी घाटे।
0: हाँ,
1: तो वहाँ भी रोज शाम को जाते घूमने।
0: ऐसा
1: आपके
0: लगता है
1: वहाँ
0: आपको कि है ना, घूमने से मतलब पर्यटन से हमें कई लाभ होते हैं, हमारी दिनचर्या में बदलाव आता है, मन को खुश खुशी मिलती है, ऐसा होता है या नहीं?
1: घूमने
0: होता है ना
1: से बहुत अच्छा
0: ऐसा?
1: लगता
0: जी। चलिए आरती जी, बहुत बहुत
1: है। मैं
0: धन्यवाद।
1: हमारे प्रतिदेव जी बात करना चाह रहे थे।
0: हाँ जी बिल्कुल, करवाइए।
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
2: बोलिए। जो
0: आप बोलिए, हम तो सुन रहे हैं आज।
2: टॉपिक पे बोले वही तो आप बोलोगे तो
0: आप ये
2: बोलेंगे।
0: बताइए कि पर्यटन के कुछ लाभ हमको मिलते हैं या नहीं मिलते? हम घूमने जाते हैं तो हमारा मूड थोड़ा रिफ्रेश होता है या नहीं होता है?
2: बिल्कुल
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा
2: हाँ ठीक है, धन्यवाद।
0: जी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्कार।
1: जी, नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ,
0: पूरा नाम?
1: राकेश कुमार बात कर रहा हूँ, शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: अच्छा, पहले भी आपसे बात हो चुकी है?
1: नहीं, मैंने तो दो दो हफ्ते के बाद कॉल लगाया आपके पास।
0: अच्छा,
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: इसके पहले कभी बात हुई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आवाज़ सुन के कि आपसे मैं बात कर चुकी हूँ।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप कर चुकी है, क्योंकि जैसे कि आपका जो नियम होता है 10 दिन का, तो मैं 2 हफ्ते के बाद कॉल लगाया, तो
0: बहुत
1: इसलिए कॉल
0: अच्छी
1: लगाया
0: बात, बहुत अच्छी बात। राकेश जी,
1: जी।
0: आज का जो हमारा विषय है वो है पर्यटन के बदलते आयाम। तो उस बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जो पर्यटक जो है बदलते जो राय, तो जैसे कि इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल जो पर्यटक जो आते हैं हम कहीं भी, उनकी बदलती राय ये होनी चाहिए कि जैसे आप कहीं भी घूमने जाए, अगर मानो कि अगर आप शिमला आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है पर्यटक स्थल है, वो तो आप सभी जानते हैं, तो अगर आप पर्यटक अगर आप घूमने आए, तो आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसे कि मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को एक नियम बनाना चाहिए इसके ऊपर, कि जो जो पर्यटक आए, तो अगर वो कहीं वो है तो है नियम, पर मानते नहीं है। जैसे कि कोई पर्यटक आए, अगर कूड़ा कवाड़ा कचरा जो है हर कहीं फेंक देते हैं, तो उन पर जो है जुर्माना होना चाहिए पर्यटक पर।
0: देखिए, हाँ वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने तो काफ़ी नियम बनाए हैं, लेकिन उसे मानना ना मानना ये तो हम आम इंसानों के हाथ में
1: आम इंसान
0: है
1: का,
0: ना।
1: कि अब
0: एक
1: देखो,
0: व्यक्ति
1: जैसे कि मानो कि मैं आपके क्षेत्र में हूँगा, तो मैं आपके क्षेत्र में कूड़ा कचरा फेंक दूंगा, तो हम सोचेंगे अरे चलो हमने क्या है, हम आज के दिन आने हैं, कल हम चले जाएंगे अपने एंजॉय करके।
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: हम ये सोच नहीं रखनी कि हम आज के दिन आए हम, तो मेहमान की, क्योंकि ये भारत देश हमारा, ये अकेला नहीं। जैसे कि अब ये मध्य प्रदेश का भोपाल, ये मध्य प्रदेश ये आपका नहीं है, ये आपके क्षेत्र का नहीं है, पूरे भारत का हिस्सा है।
0: एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरा भारत हमारा है और उसकी देखभाल करना, उसे स्वच्छ
1: देखभाल
0: रखना हम
1: करना
0: सबका
1: सबका
0: कर्तव्य है।
1: कर्तव्य है।

0: और जो ओ इस टाइप का कुछ अगर करते भी हैं तो वो नहीं करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। पूरा भारत हमारा है, उसकी सुरक्षा, उसकी स्वच्छता का ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा।
1: जो
0: ठीक
1: आकाशवाणी
0: है?
1: भोपाल सुन रहे हैं, जो पूरा जो देश सुन रहा है, तो आप हिमाचल आए, कृपया करके आप स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखिए,
0: हिमाचल
1: आप
0: जाएं
1: ध्यान
0: या कहीं भी
1: रखिएगा।
0: जाएं, स्वच्छता का ध्यान हम सबको रखने की बेहद आवश्यकता है, तभी हम
1: जी
0: अपने
1: जी
0: भारत को स्वच्छ रख पाएंगे। ठीक है
1: स्वच्छ रख
0: ना?
1: पाएंगे।
0: और
1: जी जी
0: स्वच्छ
1: जी
0: रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे।
1: जी जी
0: ठीक है
1: जी जी
0: राकेश जी, बहुत बहुत
1: जी
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी।
1: जी
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नमस्ते।
1: मंदिर भोपाल जी
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश में ही आप बात कर रहे हैं।
1: जी कालीचरण यादव बोल रहा हूँ, संदलपुर से। कालीचरण
0: क्या नाम बताया आपने?
1: यादव, संदलपुर से। हाँ, तेरे पास गाँव मेरा मिला।
0: कालीचरण यादव।
1: हाँ जी, कालीचरण यादव, ग्वालियर पास गाँव मेरा
0: अच्छा।
1: जी। मेरे गाना सुनना, फोन करके उसने कार्यक्रम में।
0: देखिए, आप है ना, आज जो कॉल लगाए हैं वो बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में। तो आज हम सिर्फ आपसे बात करेंगे, आपकी राय जानेंगे, आपसे अपने विचार साझा करेंगे और गीत आज हमारी पसंद के होंगे। ठीक है, तो कालीचरण जी, ये बताइए कि आप घूमने जाते हैं बाहर कहीं अपनी फैमिली को लेकर, आउटिंग के लिए,
1: घूमने जाते घूमने बसता मैडम, मेरे को मैडम
0: पर्यटन के लिए जाते हैं, तो वहां जाके आपको क्या लगता है? कुछ आपको मन आपका खुश होता है वहां जो
1: मेरे
0: अच्छी
1: को पता
0: अच्छी
1: चला था, घूमने बाहर जाने ऐसा लगता है कि वहीं घूमते रहो, घर घर घर पे नहीं जाओ।
0: ऐसा? नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
1: नहीं,
0: घर तो
1: मेरे को
0: रहना
1: ऐसा
0: बेहद
1: लगता है।
0: जरूरी।

0: हाँ
1: पता चला था अंग्रेजी।
0: हाँ कहाँ कहाँ घूम चुके हैं आप?
1: मैं तो कानपुर वगैरह घूमया, दिल्ली दिल्ली फरीदाबाद या इधर गया था।
0: अच्छा, तो वहाँ कभी आप ऐसा पहाड़ों पर खूबसूरत वादियों के बीच में गए हैं?
1: नहीं मैंने पार्क है इधर,
0: नहीं पहाड़ उधर नहीं है, पर किधर तो होंगे ना, कहीं तो गए होंगे कि नहीं गए?
1: पहाड़ की तरफ इधर है गांव, इधर पड़ती है गांव में, उधर हमारे पास में उधर पहाड़ है, इधर चले जाएंगे घूमने के लिए।
0: तो गए हैं आप? आपको कैसा लगता है वहां पर जाकर?
1: बहुत अच्छा लगता है, खुली हवा मिलती है, ठीक ठंडक मिलती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ मंदिर भी, मंदिर में चढ़ गए थे। हाँ अच्छा लगता है।
0: चलिए कालीचरण,
1: आप कौन बोली मैडम?
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ। अच्छी है, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल अपना प्रोग्राम सुनिएगा, कल अपना प्रोग्राम सुनिएगा आप, ठीक है? बोल दीजिए।
1: हमारे नाम ग्वालियर से 45 साल पुराना सोता हूँ ग्वालियर का मैं।
0: जानते हैं,
1: मेरे पत्र मिलने दे, मेरे को जब ग्वालियर से लेता हूँ तो मिलने दे, भोपाल नहीं पहुँच रहे मेरे।
0: ठीक ठीक चलिए ओके।
1: हमारे नाम बोलने 2:30 बजे
0: आपका नाम आएगा ना, कल आप प्रोग्राम सुनिएगा 11 बजे से।
1: परमात्मा बोलते
0: बिल्कुल बोलेंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है कालीचरण जी,

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: हेलो, फोन करें गीत सुने दीदी। नमस्कार
0: नमस्कार। फोन करें गीत सुने नहीं, बात आपकी गीत हमारे।
1: जी। दीदी, हम ग्राम पोस्ट तालगांव, तहसील भांडेर, जिला दतिया, मध्य प्रदेश से दीदी मेहरबान सिंह नागल बोल रहे हैं।
0: मेहरबान सिंह।
1: जी दीदी,
0: मेहरबानी आपकी, कॉल की आपने।
1: बड़ी मुश्किल में कॉल लगती दीदी। कार्यक्रम सभी सुनते हैं आकाशवाणी भोपाल के,
0: ये
1: और
0: तो बात
1: बचपन से
0: सही है।
1: रेडियो का शौक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं।
1: जी वंदे
0: मेहरबान
1: मातरम।
0: सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आज का विषय है कि पर्यटन के बदलते आयाम क्या है, उसका उद्देश्य, हम जब घूमने जाते हैं तो मन में क्या विचार आते हैं, ये बताइए, क्या क्या लाभ हैं उससे हमें।
1: पटल जाते हैं दीदी।
0: बताइए ना, आप जाते हैं कहीं घूमने,
1: हाँ
0: तीर्थ
1: दीदी,
0: यात्रा पे गए।
1: अगर हाँ समय समय जब समय मिलता है तो बिल्कुल जाते हैं, लेकिन अभी तो टाइम मिला नहीं, तो अभी तो नहीं जा पाए हैं।
0: इस बार नहीं जा पाए होंगे, लेकिन वैसे तो कभी गए हैं ना, तो क्या फर्क दिखता है आपको? आप पहले भी जाते थे और अब भी जाते हैं, तो क्या फर्क महसूस होता है आपको?
1: देखिए दीदी, जाते तो हैं और घूमते हैं, और थोड़ा अच्छा भी लगता है। और घूमने भी चाहिए।
0: बिल्कुल। देखते ऐसा होता है ना, जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो थोड़ी सी कभी कभी बोरियत होने लगती है, और जब कुछ समय के लिए हम बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा नयापन आता है, बदलाव आता है ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: बिल्कुल।
1: हकीकत।
0: और अब नए आयाम में यही फर्क बहुत आया है कि जैसे पहले हम लोग है ना, कहीं बाहर जाते थे तो बहुत सारा पैसा रख के ले जाना पड़ता था, फिर उसकी हिफाजत करने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती थी कि अरे पैसा रखा है, पैसा रखा है पास में, कहीं निकल ना जाए, कहीं कोई निकाल ना ले, है ना।
1: जी
0: आजकल ये
1: बिल्कुल
0: हो गया, सबके पास है ना, सब पेटीएम गूगल पे यूज़ करते हैं, तो आसानी से कहीं भी कैशलेस होकर जा सकते हैं, है ना।
1: बिल्कुल। हाँ जी
0: फ़ोन के ज़रिए पेमेंट करते हैं, छोटे छोटे पेमेंट भी करना होता है तो लोग अधिकतर फ़ोन के ज़रिए ही करने लगे हैं, तो ये काफ़ी सुविधाजनक हो गया है हम सभी के लिए।
1: जी बिल्कुल, ये तो बात हकीकत है दीदी, क्योंकि अब तो पहल पहल से सुविधा बहुत हो गई है, क्योंकि अब तो
0: बिल्कुल।
1: मोबाइल लेन देन में आसानी हो रही, कहीं भी अपन कैच ले सकते हैं।
0: हाँ, हम दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से हम सारे अपने लोगों से संवाद भी कर पाते हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: हकीकत में
0: ठीक है, चलिए बस।
1: आत्म विचार दिया आपने दीदी। और जो आप दीदी, हम जो कहना पूछना चाह रहे थे, कौन दीदी बात कर रही हैं?
0: कविता रावत।
1: जी कविता जी, आपसे शायद हमारी दूसरी बार बात हो रही हो। जो आप लोग बड़ी मेहनत से बातचीत करते हैं, अच्छी प्रस्तुति रहती है आप लोगों की।
0: जी थैंक यू वेरी मच मेहरबान सिंह जी, और
1: जी
0: एक
1: जी
0: हफ्ते
1: जी
0: बाद
1: धन्यवाद।
0: दोबारा कॉल कीजिएगा। जी
1: जी बिल्कुल जरूर लगाएंगे, हम तो सुनते रहते हैं कार्यक्रम, आप
0: जी
1: लोगों की बातचीत अच्छी लगती है दीदी।
0: जी धन्यवाद,
1: धन्यवाद दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार मैम, कैसे हो?
0: हम अच्छे हैं। पहले आप अपना शुभ नाम तो बताइए और कहाँ से
1: हाँ,
0: बोल
1: मैं
0: रहे
1: कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी बोल रहा हूँ मैं, मनमोजी।
0: हैं। नियाज मोहम्मद
1: हाँ
0: जी,
1: जी, फरमाइए मैम, कैसे है आजका
0: हम तो
1: त्यौहार?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं आप।
1: हम
0: आपका
1: बहुत
0: त्योहार
1: अच्छे,
0: कैसा बीता परसों
1: और
0: आप?
1: त्यौहार का तो बहुत अच्छा देता है हमारा। हम गांव से देहात में थे अभी, तो बहुत अच्छा मिलनसार गांव देहाती होता है ना। तो अपने अभी इंदौर में
0: बिल्कुल।
1: रहता हूँ, मगर मैं वहाँ अभी यहाँ पेटत्र गांव में आया हूँ। मैं
0: अच्छा,
1: अपना गांव है जहाँ
0: हाँ
1: से अभी अभी मेरे भाई ने भी फोन किया था, वो वहाँ से भी बहुत श्रोता, बहुत अच्छे दर्पण में बहुत अच्छा आता था पहले। जहाँ आप पढ़ती थी, सर भी पढ़ते थे। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: कार्यक्रम आपका जो होता है मैम, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा रहता है। कहते हैं ना कि जीना तेरी गली में, रहना उसी में, जैसे प्यार के रंग भरे प्यारे अल्फाजों में। आपकी आवाज बड़ी दिलों की बातों, आवाज बड़ी सुरीली होती है सब।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: हाँ, वो बहुत अच्छी लगती है आपका जो प्रसारण का जो है, ये जो ये कार्यक्रम जो बहुत अच्छा श्रोताओं को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है।
0: बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं से बात करते हैं तो कई बार हमें अपने श्रोताओं की बातें भी बड़ी अच्छी और काम की लगती हैं,
1: हाँ
0: तो वो तो परस्पर एक दूसरे से विचार साझा करके सभी को फायदा होता है। हमें भी आप
1: बिल्कुल
0: लोगों की बातचीत से काफी फायदा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो एक दूसरे से दोनों का तालमेल
0: बिल्कुल,
1: होगा
0: हाँ
1: तो इस
0: जी
1: कार्यक्रम रंगत रंगत बन जाती है।
0: बिल्कुल मंसूरी जी।
1: हाँ
0: और अभी हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे
1: जी
0: हम घूमने जाते हैं पर्यटन के लिए,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: उसके
1: बिल्कुल।
0: जो चेंज हुए हैं, बदलते आयाम, वो आपको कैसे लगते हैं? पहले की तुलना में अभी
1: मैम
0: आपको क्या फर्क महसूस होता है?
1: देखो, पहले हमारी अपनी अपनी पीढ़ी के वक्त वक्त में इतना साधन नहीं थे, और युवा पीढ़ी के हर जगह वक्त में है। उनका जो प्रभावित है और हमारे जो प्रभावित जो शब्द है, उनमें बहुत काफी अंतर हो गया ये। जैसे
0: जैसे बताइए आप।
1: कि जैसे आप जैसे युवा वर्ग है, युवा वर्गों को घूमने को नई नई चीजों से होती है। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी, और भाई यहाँ गर्मी लग रही है, तो वहां चले, वहां पर उस थोड़ा सुकून मिल सकता है आप
0: हिल
1: लोगों को।
0: स्टेशन वगैरह, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: हाँ, तो ये वहाँ सुकून मिल सकता है आप लोगों को मिलने से। तो वास्तव में जाना भी चाहिए, घूमना भी जरूरी है मनुष्य की मानसिक जीवन को संतुलन करने के लिए। थोड़ा सा घूमना भी बहुत जरूरी हो गया।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा नियाज जी,
1: जी
0: धन्यवाद
1: शुक्रिया
0: कॉल
1: मैम।
0: करने के
1: मैम
0: लिए।
1: आपका नाम, शुभ नाम थोड़ा सा
0: कविता
1: बता
0: रावत,
1: सकते
0: कविता रावत
1: आज? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया मैम, शुक्रिया आपका। आप
0: जी,
1: फोन, धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: आपको भी।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे। इसके साथ ही अब अनुमति दीजिए अपने रेडियो से की कविता रावत को। फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनाधिकृत गतिविधियों को हटाने का आदेश दिया गया है। ये निर्णय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय सुरक्षा सीमा बैठक में लिया था। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में काम किया है। प्रदेश में 5वीं 8वीं की पुनः परीक्षा की तारीखें बदल दी गई हैं। पहले ये परीक्षा 1 से 6 जून के बीच होनी थी, लेकिन अब ये 16 से 23 जून तक होगी। इसके बाद 24 से 28 जून के बीच कॉपियां जांची जाएंगी। भोपाल के भारत

0: में सदानीरा जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन 2 जून तक किया जा रहा है। आज शाम 5:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मालवी लोकायन से शुरू होगा। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम ने राहत भरा रुख अपनाया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है श्रोताओं की पसंद के गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम श्रोताओं की पसंद के गीत से, जो कि मौसम के अनुसार है। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की है, फिल्म सिंदूर, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, सरिता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर, सुखी, विश्वकर्मानगर नागपुर से शैलेश गवांडकर, वैशाली गवांडकर, श्वेता सुमेध गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपिका कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का सिंदूर फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे सिंदूर फिल्म का गीत। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में श्रोताओं आपको सुनवाते हैं आपके पसंद किए हुए गीत जो कि आप पत्रों के माध्यम से अपनी पसंद हमें भिजवाते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से। आवाज़ किशोर कुमार की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आर डी बर्मन का। और पसंद करने के लिए अपने पत्र के माध्यम से अपनी फरमाइश आपने हमको भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, आदिति, शिवानी, शिवा श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले, नुरेशा बेगम फूलवाले, काप सहेड़ा नई दिल्ली से नशरीन आज़ाद, आसमान आमना आसमा परी और इमरान अहमद बागवान। तो आइए आप सबकी पसंद का गीत सुनते हैं जो है फिल्म कटी पतंग से। आवाज किशोर कुमार की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हम भेजने वाले श्रोताओं के नाम है नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं उनका समस्त राजावर परिवार। इसी गीत की पसंद हमें मिली है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया की। इस गीत की एक पसंद हमें ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम की मिली है। और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से पसंद मिली है हरदेव मीका, बलविंदर पिरक, जेतिक बिरक और मीका पिरक की। आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फरिश्ता या कातिल फिल्म का गीत, शब्द रचना अनजान की है और संगीत

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फरिश्ता या कातिल फिल्म का गीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश में आप भेजते हैं हमें अपनी फरमाइश के पत्र और हम सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नवरंग से, आवाज़ें आशा भोसले चितलकार और साथियों की, शब्द रचना भरत व्यास की है और संगीत सी रामचंद्र का है। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं बिल हरी खेरा से, संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल मुन्ना खान एवं ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी, गोविंद यादव।

0: इसी गीत को पसंद किया है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और साइना शर्मा ने। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है करियादंड हट्टा जिला बालाघाट से हलास राम कटरे और नानेश्वरी कटरे की। इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराजा आज़ाद नगर लखसर हरिद्वार से। तो आइए आप सबकी पसंद का सुनते हैं ये गीत जिसे हम सुनवा रहे हैं फिल्म नवरंग से।
1: कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न न न न न गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस

जीरे बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पपीहा पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपीहा सन में लगन लगी मन में अगन जगी बंद किए दोना नैना उभार

0: आशा भोसले चितलकार और साथियों के गाए नवरंग फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनिए धारावाहिक सिसकियां की चौथी कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की चौथी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि मुश्ताक सायरे को अपने घर वापस ले जाने के लिए आता है, लेकिन फाता सायरे को वापस नहीं भेजती है और उसे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। मुश्ताक खाली हाथ वापस लौट जाता है। अब आगे।

0: अम्मी
1: मुश्ताक आ गया बेटा।
0: हाँ अम्मी।
1: अरे अकेला आया है, सारे नहीं आई?
0: नहीं अम्मी, सारे नहीं आई।
1: क्यों भला, तू गया था ना?
0: हाँ गया तो था, पर वो नहीं आई अम्मी। कह रही थी कि कुछ दिन और रहेगी अपनी अम्मी के घर।
1: बहुत दिन बाद गई थी, सो मन कर गया होगा रहने को। अच्छा चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ।
0: नहीं अम्मी अभी रहने दो, मन करेगा तो खा लूंगा।
1: अच्छा हसन बट भाई और फाता कैसी हैं, और उनकी तबीयत तो ठीक है ना?
0: हाँ अम्मी सब ठीक है, सलाम भेजा है आप लोगों को।
1: अल्लाह सबको सलामत रखे।
0: अम्मी मैं कमरे में जा रहा हूँ।
1: खाना नहीं खाएगा क्या?
0: नहीं अभी नहीं, थोड़ी थकावट लग रही है।
1: ठीक है, जब तेरे अब्बा आ जाएंगे तो खा लेना।
0: अम्मी अब्बा गए कहाँ हैं?
1: कह कर तो नहीं गए, कहीं बैठ गए होंगे गप्पे मारने। इस उम्र में बचा ही क्या है करने को।
0: अच्छा अम्मी अब्बा आ जाएं तो बता देना, तब तक मैं आराम कर लूं।
1: ठीक है।

0: कौन?
1: अरे मैं हूँ।
0: आ गए?
1: हाँ, वो जानवरों के चारे के लिए गया था। असलम को कह दिया है, वो कल पहुंचा देगा।
0: चलो, अच्छा किया।
1: सुनो, हाँ? मुश्ताक सारे को लेने गया था, आया नहीं अभी तक क्या?
0: थोड़ी देर पहले ही आया है।
1: है कहाँ?
0: अपने कमरे में है।
1: सारे?
0: सारे नहीं आई।
1: क्या? सारे नहीं आई है? मुश्ताक तो लेने गया था ना?
0: गया तो था, पर सारे नहीं आई।
1: वहाँ सब सलामत तो है ना?
0: मुश्ताक तो कह रहा था कि सब सलामत है।
1: तो फिर सारे क्यों नहीं आई?
0: कुछ दिन और रहना चाहती है अम्मी के पास।
1: कुछ और बात तो नहीं हुई ना वहाँ?
0: और कुछ तो बताया ही नहीं मुश्ताक ने। जो बताया था वो मैंने आपसे कह दिया।
1: तो ठीक है, अरे कुछ दिन रहकर ही सारे को बुला लिया जाएगा।
0: मुश्ताक को बुला लेती हूँ, उसने खाना भी नहीं खाया।
1: ठीक है, बुला लो, आज साथ ही खाना खा लेंगे।

0: मुश्ताक नहीं आया?
1: नहीं, मुश्ताक की तबीयत ठीक नहीं।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: हुआ तो कुछ नहीं, पर परेशान लग रहा है।
0: अरे पूछा नहीं, क्यों परेशान है वो?
1: पूछा तो था, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।
0: ये क्या बात हुई बोला?
1: अजी, जवान बेटे पर कोई बात बताने को जोर भी तो नहीं डाल सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के ना आने से मुश्ताक थोड़ा परेशान है, इसीलिए ऐसा कर रहा है।
0: ठीक है, ये हो सकता है, हो सकता है।
1: हाँ, अभी अभी तो निकाह हुआ है, सो सारे की याद तो आएगी ही।
0: फजी, मुश्ताक का खाना उसके कमरे में ही भेज दो और मेरी थाली में निकाल दो। ठीक है, बाकी बातें खाते हुए करेंगे।
1: हाँ, मुंह हाथ धोकर आओ, मैं खाना निकालती हूँ।
0: ठीक है, अरे रे जाओ, पहले मुश्ताक को खाना दियाओ।
1: तुम बैठो तो, मैं अभी देकर आती हूँ।

0: बहुत मुश्किल काम है।
1: क्या कहते हो जी?
0: अरे सच कह रहा हूँ फजी, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है।
1: कहते तो तुम ठीक हो जी, पर इस बुढ़ापे में हम कर भी क्या सकते हैं?
0: नहीं, कुछ भी नहीं, बस देखते रह सकते हैं। वो जो भी करे बस देखते रहो, देखते रहो।
1: हमारे

0: बच्चे अब अपने फैसले खुद लेने लगे हैं और उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल है।
1: क्या कर सकते हैं हम, मुश्ताक को ही लो, सारे नहीं आई

0: अल्लाह ताला पर ही तो भरोसा है जिससे मन को तसल्ली होती है, नहीं तो इन बच्चों के बर्ताव से तो।
1: और रोटी दूं?
0: नहीं, रहने दो।

0: एक प्याली गर्म चाय पिला देना।
1: इतनी रात को चाय?
0: बस सिर भारी लग रहा है।
1: ठीक है, अभी बना देती हूँ।
0: नहीं, अगर परेशानी हो तो रहने देना।
1: अजी, परेशानी किस बात की, अभी बना देती हूँ।
0: सुनो, वो कुछ लकड़ियां देती जाना, अलाव में आग जला दूं। अब ये ठंड कुछ बढ़ गई लगती है।

0: क्या कर रही हो फजी?
1: अरे मेहर, आओ आओ, बर्तन मांज रही हूँ।
0: क्यों, बहू कहाँ गई?
1: मायके गई हुई है, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी सो मिलने गई थी।
0: तो क्या अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है?
1: तबीयत तो ठीक हो गई है, पर सारे कुछ दिन मायके में रहना चाह रही थी सो अभी आई नहीं है।
0: एक बात कहूँ फजी, बुरा तो ना मानोगी?
1: ऐसी भी क्या बात है बीबी कि बुरा मानू, पहले बात तो कहो।
0: अपने पर ना लेना फजी, ये पहले कह देती हूँ। हाँ
1: बीबी, तुम बात तो कहो, यूं पहेलिया क्यों बुझा रही हो?
0: फजी, आजकल की लड़कियों का क्या कहूँ, दिमाग खराब हो गया है।
1: अरे बात क्या हुई?
0: बात क्या होनी थी, तुम नहीं पहचानती, मेरी दूर की रिश्तेदार थी, उसने तो हद ही कर दी।
1: मेहर बताओ तो हुआ क्या?
0: वो अपने शौहर को छोड़ दूसरे लड़के के साथ चली गई।
1: अरे रे, ये तो बुरा हुआ बीबी, पता नहीं आज के बच्चों को

0: होता क्या जा रहा है? फजी, मेरी मान, तू बहू को बुला ले। ज्यादा दिन लड़की मायके में रहे तो लड़की का सर घूम जाता है। और अपने लड़के को भी थोड़ा समझा कि बीवी पर लगाम रखे। बुरा ना मानना, सुना तो मैंने यही है कि अपनी अम्मी की बीमारी का बहाना बनाकर मायके में रह रही है।
1: मेहर बीबी, तुम्हारा कहना सही हो सकता है, पर सब के लिए नहीं। मेरा बेटा और मेरी बहू ऐसे नहीं हैं कि उन पर दबाव बनाने के लिए मुझे कुछ करना पड़े।
0: अरे फजी, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो यूं ही कह रही थी, तूने तो बात अपने पर ले ली।
1: बीबी, बुरा नहीं मानती, पर
0: छोड़ फजी, मैंने दुनिया देखी है और उसी तजुर्बे से कहती हूँ, तेरी बहू ठीक है, तेरा कहा मानती है, पर सबका नसीब तेरे जैसा तो होता नहीं कि बहू की सेवा पाए।
1: मेहर बीबी, बहू पर दबाव बनाने से बहू सेवा करेगी ही, अब ये बात तो कोई तय नहीं है ना।
0: फजी, तू मेरी बात समझ नहीं रही है कि मैं कह क्या रही हूँ। लोग कहते हैं कि मुश्ताक को घुमाकर बहू मायके में मजे कर रही है।
1: किसने कहा तुमसे? ये सब झूठ है।
0: अरे ये तो मैं भी जानती हूँ कि झूठ है, पर कहने वालों के जुबान थोड़े ही बंद की जा सकती है। उनके मन में जो आए सो कहते हैं, पर उनकी बातों पर तू ध्यान न देना।
1: मेहर बीबी, मैं जानती हूँ कि मेरी बहू अच्छी है और मुश्ताक को भी प्यार करती है। जमाने को क्या, किसी का भला तो देखा जाता नहीं, बकने लगते हैं।
0: छोड़ो भी उनकी बातों को। सुना है कि मुश्ताक बहू को लेने गया था, ये बात तो सच है ना?
1: हाँ, गया तो था मुश्ताक,
0: फिर भी बहू नहीं आई, यही ना?
1: अरे अम्मी की बीमारी में गई थी, कुछ दिन रहना चाहती थी सो नहीं आई, और क्या।
0: लोग ये तो नहीं जानते, बस कह देते हैं कि।
1: क्या कहते हैं?
0: यही कि मुश्ताक का अपनी बीवी पर कोई जोर नहीं चलता, बीवी जो कहती है मुश्ताक वही करता है, गुलाम हो गया है।
1: देखो बीबी, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, उन्हें ही ये फालतू बातें सूझती हैं। और एक बात कह देती हूँ, हाँ, बुरा ना मानना, तुम जहाँ भी ये फालतू बातें सुनती हो ना, अल्लाह कसम अपने तक ही रखा करो बीबी। मुझे इन फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने बेटे मुश्ताक को जानती हूँ और अपनी बहू सारे को भी जानती हूँ।
0: नाराज ना हो फजी, लोग तो यूं ही बकते हैं, मैंने तो जो सुना था वही कह दी, बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना।
1: तुम भला क्यों माफी मांग रही हो मेहर बीबी? वक्त आएगा तो वे लोग देखेंगे कि घर क्या होता है और घर को चलाया कैसे जाता है।
0: अच्छा फजी, मैं तो अब चलूंगी, बड़ी देर हो गई।
1: थोड़ी देर बैठो, चाय तो पीती जाओ।
0: फिर कभी पी लूंगी, अभी तो चलती हूँ। और हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानना, तुम्हें अपना समझती हूँ इसीलिए कह देती हूँ।
1: कोई बात नहीं, अपनों की बातों का भी कोई बुरा मानता है क्या?
0: अच्छा, अब चलती हूँ। खुदा हाफिज।
1: हाफिज खुदा।

0: Freddy? Freddy? Freddy? क्यों क्या हुआ फ्रेडी? यूं गुमसुम से क्यों बैठी हो?
1: नहीं कुछ नहीं, यूं ही बैठी हूँ।
0: यूं ही बैठी हो तो गुमसुम सी क्यों? कोई बात हुई क्या? भाई तुम्हें इस तरह से उदास बैठे पहले तो नहीं देखा।
1: छोड़ो भी बातें बनाना।
0: अरे अरे तुम तो नाराज हो गई। बोलो बोलो क्या बात है?
1: नहीं कुछ भी तो नहीं।
0: फजी तुम परेशान हो और तुम्हारी परेशानी साफ साफ पता चल रही है। ठीक है अब तुम बताना ना चाहो तो भाई तुम्हारी मर्जी।
1: सारे को बुलवा लेते।
0: सारे को बुलवा लूं? क्यों क्यों बोला? अरे वो मायके ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: सारे है तो मायके में, पर लोगों को क्या कहें।
0: अरे इसमें लोगों को कहने वाली क्या बात हो गई?
1: आस पास के लोग क्या क्या बातें करते हैं तुम्हें क्या पता।
0: लोगों का क्या है? वैसे हुआ क्या जो तुम इतनी जिद कर रही हो कि सारे को बुला लूं?
1: आज मेहर बीबी आई थी, उन्होंने ही बताया कि लोग सारे और मुश्ताक को लेकर क्या क्या कहते हैं।
0: अरे तुम भी किसकी बात लेकर बैठ गई? अरे वो मेहर बीवी को तो बस जो मन में आया बक दिया, ना आगे सोचा ना पीछे, यूं ही मनगढ़ंत बोलती रहती है।
1: पर सारे को मायके गए भी तो कितना समय हो गया।
0: अरे भाई सारे अपनी अम्मी के घर ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: देखो जी निकाह के बाद मायके में इतने दिन रहना अच्छा नहीं होता। अब मुश्ताक को बोल दो कि सारे को ले आए।
0: ठीक है मुश्ताक को तुम ही बोल दो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
1: ठीक है मुश्ताक घर आता है तो कहूंगी कि कल ही सारे को लेने चला जाए।
0: ठीक है जैसा तुम ठीक समझो। और हाँ देखो देखो ये एक बात मैं कह देता हूँ, तुम मेयर बीवी जैसी औरतों की बातें मत सुना करो।
1: अरे मैं कोई सुनने थोड़े ही गई थी, वो तो खुद आई थी यहाँ।
0: देखो फजी लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो।
1: कैसे ना दूं, आखिर रहना तो इन्हीं लोगों के बीच में है।
0: तो ठीक है हसन भट्ट को पैगाम भेजता हूँ कि वो सारे को भेज दे।
1: हाँ मुश्ताक को भी कहती हूँ कि सारे को लेने के लिए चला जाए।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की चौथी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अकरम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सतीश कक्कड़ और कोयना। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आपने सुनी धारावाहिक सिसकिया की चौथी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। इसके तहत सरकारी तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसान कल्याण वर्ष के तहत अब प्रदेश में सिर्फ 5 रुपये में सिंचाई पंप का नया बिजली कनेक्शन मिल रहा है। बाकी की राशि किश्तों में चुकानी होगी और अधिक जानकारी के लिए बिजली दफ्तर या कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। उज्जैन संभाग के 11 मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए के टेंपल बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार पर कुल 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगामी 31 जुलाई तक टेंपल बॉन्ड जारी कर दिए जाएंगे। भोपाल के भारत भवन में सदनीरा जलरंग संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो 2 जून तक चलेगा। आज शाम 5:30 बजे से आयोजन मालवी लोकगायन के जरिए शुरू होगा। और मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड, दतिया, छतरपुर, पन्ना, नीमच और प्रदेश के कई जिलों में ओले और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

0: क्या है, कल ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम।

सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी के नजरों में। इस सुविचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, आज का युग वैश्वीकरण का युग है। दुनिया के सभी देश एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। जब विभिन्न देश आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रों में मिलकर कार्य करते हैं तो इसे वैश्विक सहभागिता कहा जाता है। यह सहभागिता विश्व में शांति, विकास और सहयोग को बढ़ावा देती है। वैश्विक सहभागिता के माध्यम से देश अपने ज्ञान, तकनीक और संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। इससे नई खोजों और विकास कार्यों को गति मिलती है, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्रों में, और देशों के बीच सहयोग से मानव का जीवन अधिक सुविधाजनक बना है। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान भी अकेले किसी एक देश द्वारा संभव नहीं है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर कार्य करना पड़ता है। कोरोना महामारी के समय विश्व के कई देशों ने एक दूसरे की सहायता की, जो वैश्विक सहभागिता का अच्छा उदाहरण है। वैश्विक सहभागिता से विभिन्न देशों की संस्कृत, भाषा और परंपराओं को जानने का अवसर मिलता है। विद्यार्थी देशों में शिक्षा प्राप्त कर नए अनुभव हासिल करते हैं। इससे आपसी समझ और भाईचारा बढ़ता है। बहनों, वैश्विक सहभागिता आधुनिक विश्व की आवश्यकता है। यह केवल देशों के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। बहनों, सभी देश मिलजुल कर कार्य करें तो विश्व में शांति, समृद्धि और सहभागिता स्थापित की जा सकती है। बहनों, गीत संगीत जो सभी के दिलो दिमाग को तरोताजा करते हैं, तो आइए सुनते हैं गीत साथी हाथ बढ़ाना, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है नया दौर।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत साथी हाथ बढ़ाना, जिसे गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम नया दौर।
1: बहनों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर करिमा तिवारी, जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं, जो टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में है। अच्छा करिमा जी, ये बताइए, जैसे कि गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां फैलती हैं?
2: गर्मी के मौसम में, चूंकि गर्म पूरा वातावरण गर्म होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में लू लगना, डिहाइड्रेशन, दस्त, उल्टी, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और त्वचा संबंधी बीमारियां अधिक फैलती हैं।
1: अच्छा अच्छा, ये जैसे कि लू लगने के मुख्य कारण क्या होते हैं?
2: लू लगने के मुख्य कारण है तेज धूप में अधिक

0: समय तक रहना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, क्योंकि बहुत पसीना आता है जिसकी वजह से हमारे शरीर से पानी की कमी होने लगती है, गर्म हवाओं के संपर्क में आना और सिर ढककर बाहर ना निकलना लू लगने के मुख्य कारण।
1: जी अच्छा कर्मा जी, जैसे कि ये गर्मी से बचने के लिए लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: लोगों को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, हल्के सूती कपड़े पहनने चाहिए, दोपहर की तेज धूप से बचना चाहिए और बाहर निकलते समय छाता या टोपी का उपयोग करना चाहिए, और जब भी घर से बाहर निकले तो एक गिलास पानी पी के निकले।
1: अच्छा,
0: आने के बाद तो पानी ना पिए, लेकिन जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहले एक गिलास पानी पी के निकले।
1: अच्छा, शरीर में पानी की कमी से क्या समस्याएं हो सकती हैं?
0: पानी की कमी होने से चक्कर आना, कमजोरी, सिर दर्द, थकान, बेहोशी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती
1: है। अच्छा गर्मी में जैसे कि गर्मी में कौन कौन से पेय पदार्थ लाभदायक होते हैं? आजकल गर्मी में जैसे कि पेय पदार्थ लोग ज्यादा पीते हैं, तो कौन से पेय पदार्थ लाभदायक होते हैं
0: जो इस मौसम में अवेलेबल होते हैं? पहली बात तो उन पेय पदार्थों को पीना चाहिए, जैसे गर्मी में नींबू का पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, आम पना, ताजे फलों का रस, गन्ने का रस, ये सभी लाभदायक है।
1: अच्छा, ये गर्मी के मौसम में लोग जैसे बाहर का खाना, अब आजकल का चलन ही है कि लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो गर्मी के मौसम में बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल हाँ, गर्मी में बाहर का बासी या खुला खाना जल्दी खराब हो जाता है, जिससे फूड पॉइजनिंग और पेट की बीमारियां हो सकती हैं।
1: अच्छा, ये डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण क्या होते हैं?
0: डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण है अत्यधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, कमजोरी, चक्कर आना, कम पेशाब आना, और जो पेशाब का कलर होता है वो बहुत डार्क येल्लो हो जाता है।
1: अच्छा,
0: और शरीर में थकान महसूस होना डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गर्मी के मौसम में संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए, हमेशा कभी भी जाएं तो पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, साफ सफाई रखें, तेज धूप से बचकर रहें, तभी हम सब स्वस्थ रह सकते हैं।
1: सचमुच गर्मा जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि हमारी बहनों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर्मा जी।
0: भी सब बहनों को बहुत प्यार और बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत आनंद आया। नमस्कार।
2: बहनों, जल मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी पर जीवन जल के बिना संभव नहीं है, लेकिन आज बढ़ती गर्मी, जनसंख्या वृद्धि और जल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गर्मी में तापमान बढ़ने से जल स्रोत तेजी से सूखने लगते हैं। लोग पानी, खेती और अन्य कार्यों के लिए अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वर्षा जल का सही ढंग से संरक्षण न हो पाना भी जल स्तर गिरने का मुख्य कारण है। पेड़ों की कटाई, बढ़ता शहरीकरण और कंक्रीट सड़कों के कारण वर्षा का पानी जमीन में नहीं समा पाता, परिणाम स्वरूप भूजल का पुनर्भरण नहीं हो पाता और जल स्तर नीचे चला जाता है। बहनों, जल स्तर कम होने से कुएं, तालाब और हैंडपंप सूखने लगते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, जिससे फसलें प्रभावित होती हैं और कई स्थानों पर लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। बहनों, इस समस्या के समाधान के लिए जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बारिश की पानी जमीन में पहुंच सके। पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए, क्योंकि वह जल संरक्षण में सहायक होते हैं। हमें पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और अनावश्यक जल व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। खेतों में सिंचाई जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। सरकार और समाज दोनों को मिलकर लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। बहनों, जल ही जीवन है। यदि आज हमने जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में जल संकट और भी गंभीर हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पानी

बचाए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। सामूहिक प्रयासों से ही हम गिरते जल स्तर की समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहनों, आइए सुनते हैं गीत आया सावन झूम के, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

ने। फिल्म का नाम आया सावन झूमके। बहनों, मुझे पता है आपको इंतजार है आज के व्यंजन का, तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आम का पना। बहनों, आम पना भारत का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक पेय है, जो विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में बनाया और पिया जाता है। यह कच्चे आम से तैयार किया जाता है और शरीर को ठंडक पहुंचाने में बहुत लाभदायक माना जाता है। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, इसलिए बच्चे और बड़े सभी इसे पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं आम पना बनाने के लिए किन सामग्री की जरूरत पड़ती है। सामग्री है कच्चा आम, चीनी, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, पुदीने की पत्तियां, पानी और बर्फ के टुकड़े। विधि है कच्चे आम को अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद आमों को कुकर या बर्तन में उबाल लें और ठंडा होने पर छिलका हटा दें। फिर आम के गुदे को मिक्सी में डालें और उसमें चीनी, काला नमक, भुना जीरा और पुदीने की पत्तियां मिलाएं और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से पीस लें। तैयार मिश्रण को बड़े बर्तन में निकालें और ठंडा पानी मिला दें। अब गिलास में बर्फ डालकर ठंडा ठंडा आम का पना परोसें। बहनों, आम का पना शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लू से बचाने में मदद करता है, पाचन के लिए लाभदायक होता है और विटामिन सी से भरपूर होता है। बहनों, आइए सुनते हैं गीत पीपल के पतवा पर, जिसे गाया है सोनू निगम और जसपिंदर नारुला ने। फिल्म का नाम है सूर्यवंशम।

बहनों, अभी हमने सुना गीत पीपल के पतवा पर, जिसे गाया था सोनू निगम जसपिंदर नारुल्ला ने। फिल्म का नाम सूर्यवंशम। बहनों, अब इसी के साथ समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

अपनी और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड की।

अभी आपने सुना परचन गीत, आवाज़ संध्या पाठक की थी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है सुहाग गीत, आवाज़ संध्या पाठक की। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संध्या पाठक के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए एक बैलन गीत, आवाज संध्या पाठक की और प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

संध्या पाठक के गाए इस बैलन गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के अंतर्गत अब सुनिए सुगम संगीत। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी रीवा की ही प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए भजन और गीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए कुछ भजन। अभी आपने सुनी कबीर की रचना, अब सुनिए ब्रह्मानंद की रचना आवास।

0: राम की।
1: वृंदावन कुंज भवन नाचत
0: आवाज ललू राम।

0: अभी आप सुन रहे थे नीरज की रचना, आवाज़ लल्लूराम शुक्ला की। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की उपस्थिति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।
1: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। ट्यून कीजिए मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर या फिर न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। लॉगिन करें और सुने ज्ञान सूचना मनोरंजन की त्रिवेणी युवाओं की वाणी युववाणी प्रतिदिन शाम 5:02 पर।
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी में हर शाम 5:02 पर सुनिए शानदार नगमे, ज्ञान विज्ञान और करियर की बातें, युवा प्रतिभाओं से भेंट, विषय विशेषज्ञों के साक्षात्कार और रेडियो एंकर्स की रोचक लुभावनी प्रस्तुतियां। ट्यून करें मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। तो सुनना ना भूलिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी।
3: कवि श्री राग तेलंग।
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीतमय संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लोफर फिल्म के गाए आशा भोसले के गीत से, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना लोफर फिल्म का गीत, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से। आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भी आपने सुना दो रास्ते फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध एक हफ्ते में दूर कर लिया गया है।
2: G7 और G13 का लोकार्पण हुआ है। वॉर टावर से लेकर कनेक्टिंग रोड से लेकर पीने से पानी से लेकर मेडिकल सुविधाएं, रहने की व्यवस्थाएं और नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना, हर दृष्टि से एक लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी और 2 साल में हमारा ये वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र दुश्मन की बुरी

0: नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने दो दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में हैं। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोकभवन श्रीनगर का दौरा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन का अध्ययन कर वे मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का मॉडल स्टेट बनाएंगे। सीएम डॉक्टर यादव आज शाम को भोपाल वापस आ जाएंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस बार रक्षा अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी ये डिग्री प्रदान की गई है। छतरपुर में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जिला प्रधान न्यायाधीश रविन्द्र सिंह और कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश राजेश देवालिया आज साइकिल से अदालत पहुंचे। न्यायाधीश ने बताया कि अब प्रत्येक शनिवार सभी न्यायिक अधिकारी साइकिल से ही न्यायालय आएंगे ताकि आमजन को ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जा सके। ऐसा करना दरअसल पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है और हम अपने देश हित के लिए भी काम कर सकेंगे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मंत्रालय ने यह सर्वेक्षण 2023-24 में संचालित किया था। और अब बात मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। प्रदेश का आधा हिस्सा जहां भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं बाकी आधे हिस्से में तेज आंधी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड और मंदसौर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 8 जिलों में लू की भी चेतावनी है। हाल ही में हुई बारिश के कारण प्रदेश के ग्वालियर और दतिया जैसे शहरों के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट आई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शिक्षा पुंज पॉइंट 2 नवाचार जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर अक्षर साथी घर घर जाकर ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शाला से जोड़ रहे हैं। आगरमालवा जिले में महावारी स्वच्छता दिवस पर ग्राम खेरिया और कानड़ स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। किशोरियों को इस दौरान स्वच्छता, एनीमिया से बचाव और पौष्टिक आहार की जानकारी दी गई। भोपाल जनजातीय संग्रहालय में कल संभावना कार्यक्रम होगा। इसमें राजगढ़ का मालवी गायन, नर्मदापुरम का कबीर गायन और डिंडोरी का गुदुम बाजा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। और रतलाम जिले में गुलाब चक्कर पर साहित्यिक संगम कविताई शब्दों की शान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें नए रचनाकारों ने देशभक्ति, मातृप्रेम और नारी शक्ति पर मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति दी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुने 7:10 पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि

0: अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
3: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री डिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
4: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
5: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावरचंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा

0: बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बुद्धि खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई

0: बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिनाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए खट्टा मीठा फिल्म के गीत से। लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं किशोर कुमार और साथी, शब्द रचना है गुलजार की और संगीत राजेश रोशन का।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना गुलजार का लिखा गीत। आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की थी और फिल्म का नाम था खट्टा मीठा। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम थे ग्राम भैंसवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोटकर। इसी गीत को पसंद किया था कोटवा नारायणपुर बापापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने। दुविधा नेवादा गाजीपुर से इस गीत को पसंद किया था प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय ने। और रेलवे कॉलोनी बठिंडा

0: इस गीत की पसंद आई थी जमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार की। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म चरस से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कोटवा नारायणपुर, बापावट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया, नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं गोरीनगर इंदौर से आनंदपुर कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। गीत की एक पसंद मिली है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिण ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर की। तो इन सब की पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म चरस से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: अच्छा, गुड नाइट।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में चरस फिल्म का गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म दादा से, और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनोरी, प्रकाश वीर राजपूत डोंडी लोहारा बालोद से, कमलेश जयपुरिया टाउनशिप भिलाई से, अनुश्री प्रदीप, पिंकी और प्रमिला प्रदीप जेल रोड रायगढ़ से, लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित व मोहित, बेरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तनु करमरकर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुर, दतरंगी से भागवत वर्मा। इन सब की पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है दादा से, आवाज़ यशोदास की है, शब्द रचना कुलवंत जानी की और संगीत उषा खन्ना का है।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में भी आपने सुना कुलवंत जानी का लिखा गीत, आवाज़ यशोदास की थी और फिल्म का नाम था दादा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुस्ताबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। इस गीत की एक फरमाइश हमें मिली है प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की, गौतम नगर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। इसी गीत को पसंद किया है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर ने। भाटापारा ततरंगी से इसे पसंद कर रहे हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा। और सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सबने पसंद किया है फिल्म वो कौन थी का गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने, शब्द रचना राजा मेहंदी अली खान की है और संगीत मदन मोहन का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, आवाज़ कुमार सानू और साधना सरगम की है और फिल्म का नाम है जुर्म। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का जुर्म फिल्म का ये गीत।

कुमार सानू और साधना सरगम के गाए फिल्म जुर्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।

0: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल एक दिवसीय दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे वहां कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 144वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में हैं। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोकभवन श्रीनगर का दौरा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन का अध्ययन कर वे मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का मॉडल स्टेट बनाएंगे। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओले गिरने और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सायंकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी।

फिल्म संगीत का आनंद श्रोता ले सकते हैं शाम 5:33 पर और रात 8:15 पर। शाम 6 बजे प्रसारित करेंगे भारतीय प्रसारण के 90वें वर्ष पर आकाशवाणी की विकास यात्रा। इस विषय पर पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी भोपाल एवं राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेश भट्ट से शुभम तिवारी की बातचीत। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का कार्यक्रम प्रसारण समय है 7:45। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रात 8 बजे सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे युवा भारती और रात 10 बजे संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए स्मिता मोक्षी का ख्याल गायन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:02 और 23 सेकेंड हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

अभी आपने सुना संध्या पाठक की आवाज में ये परचन गीत। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। कार्यक्रम है लोक संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुहाग गीत है, आवाज साधना पाठक की, संध्या पाठक की। इसे दोबारा सुन लीजिए। अगला गीत सुहाग गीत है और आवाज संध्या पाठक की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संध्या पाठक के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए बेलन हाय गीत, आवाज संध्या पाठक की।

संध्या पाठक के गाए इस बेलन हाई गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए भजन और गीत। कार्यक्रम की शुरुआत कबीर की रचना से।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए भजन और गीत। अभी आपने सुनी कबीर की रचना, अब सुनिए ब्रह्मानंद की रचना, आवाज़ लल्लू राम शुक्ला की।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है सुगम संगीत और आप सुन रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए भजन और गीत। अभी आपने सुनी ब्रह्मानंद की रचना, आवाज़ थी लल्लू राम शर्मा की। अब सुनिए लल्लू राम शर्मा कार्यक्रम के अंत में आप सुनिए लल्लू राम शुक्ला के का गीत आवाज़ नीरज की।

लल्लूराम शुक्ला के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है चित्रपट संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना शैलेंद्र का लिखा गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की थी और फिल्म थी प्रोफेसर। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म मन की आंखें से, आवाज़ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है, शब्द रचना साहिर की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मन की आंखें। अभी आपने सुना इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शब्द रचना थी साहिर की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है चित्रपट संगीत एक थी लड़की। इस फिल्म का गीत आप सुनिए लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जी एम दुरानी और साथियों की आवाज़ में।

एक थी लड़की, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जी एम दुरानी और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना थी अज़ीज़ काश्मीरी की और संगीत विनोद का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है चित्रपट संगीत तलाश। इस फिल्म का गीत अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना मजरू की है और संगीत एस टी बर्मन का।

बेजू बावरा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना थी शकील बदायूनी की, संगीत नौशाद का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मौसम फिल्म का गीत। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत मदन मोहन का।

0: मौसम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश हैं इस घंटे की खास खबरें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल एक दिवसीय दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे वहां कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े सामने आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में हैं। वे यहां वे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए और लोकभवन श्रीनगर का भी उन्होंने दौरा किया। देर शाम को उनका भोपाल वापस पहुंचने का प्रोग्राम है। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आज कई जिलों में तेज धूप के कारण गर्मी पड़ रही है और कुछ जिलों में आंधी तूफान का दौर चल रहा है, जबकि कुछ जिलों में ओले गिरने और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब सुनिए झलक की लॉटरी खुल गई। लेखक अशोक बुरानी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।
2: प्रस्तुत है अशोक बुलानी की लिखी झलकी लॉटरी खुल गई। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल।

0: पहना। नवयुग का अंधियारा नहीं, नवयुग का उजियारा, उजियारा छाया।
1: पर चिंटू आजकल तो अंधियारा ही छाया हैगा।
0: अरे छाया होगा अंधियारा, पर गीत में तो उजियारा ही हैगा।
2: अरे ओ महारानी, ये गाने बजाने का काम ही रह गया है बस, ढेर सारा काम पड़ा हैगा, वो कौन करेगा? डूड जैसी बड़ी हो गई, पर अकल नाम को नहीं हैगी तेरे में। हाँ
1: पर अम्मा, हम तो भजन गा रहे हैंगे।
2: अरे तो ससुराल जाकर क्या भजन ही गाएगी? चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन तेरे मियाँ करेंगे।

0: भी नहीं करनी शादी। हाँ
1: क्या
0: क्या कही?
2: लो कर लो बात, शुद्ध हिंदी में कह रही हैंगी दीदी कि हमें नहीं करनी है शादी।
1: अरे तू चुप कर रहे, बीच में झकर झकर किए जा रहा है।
0: हाँ हाँ सही कह रहे हैंगे, हमें नहीं करनी शादी।
1: तो क्या जिंदगी भर बैठी रहेगी हमारी छाती पे? हमें नहीं करनी शादी, जैसे लड़के वाले लाइन लगा के खड़े हैंगे तुझसे शादी करने को, छे छे लौट गए।
2: अम्मा आए भी तो एक से एक नमूने ही थे।
1: अरे तो कोई राजकुमार आएगा इसे बहाने?
0: ना आए कोई राजकुमार, पर किसी दहेज के लालची से भी शादी नहीं करनी हमें। हाँ
1: अरे वाह रे।
2: अरे वाह की क्या बात है अम्मा, सही तो कह रही है दीदी।
1: अरे पर ऐसे लोग कहाँ है इस दुनिया में।
2: अम्मा ये पिछली बार वाला लड़का तो थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा था, बात भी जमती दिख रही थी।
1: खा पी के पूछताछ करके छोरे के बाप बोले गाना बजाना जानती हो, कोई भजन सुनाओ।
2: भजन नहीं गा सकती इसलिए वापस चले गए, जे तो बहुत जाती हैगी।
1: लड़के वालों के तो ऐसे ही नखरे होवे रे। अब पूछो उन समझदारों से कि भैया रे भजन सुनने का शौक है तो क्या बार बार बहू को सामने बिठा कर भजन सुनोगे? रेडियो का है नहीं खरीद लेते, फिर सुनो बैठ के भजन जो जी में आए।
2: अच्छा तो इसीलिए हमारी बहना भजन की प्रैक्टिस कर रही है।
1: क्यों बेटा? अच्छा तो ठीक है गा बेटा गा, पता नहीं कौन सिर फिरा फिर भजन की फरमाइश कर बैठे। ये है हमारी जान के दुश्मन, डले हैं आराम से खटिया पर, खर्राटे ले रहे हैं। चिंटू उठा तो अपने बापू को।
2: हम नहीं उठाते हैं अम्मा, डांट लगाएंगे हम ही को। हाँ
1: अरे उठा दे बेटा।
2: नहीं तुम क्यों नहीं उठाती?
1: सुबह सुबह ही हमारा झगड़ा करने का मूड नहीं है।
2: हाँ तो सुबह सुबह हमारा भी पिटने का मूड नहीं है।
1: अरे वाह रे आजकल की औलाद, अरे क्या फायदा ऐसी औलाद का। हाँ
2: ठीक है अब ज्यादा ताव मत दिलाओ अम्मा, हाँ अभी उठाए देते हैंगे।
1: उठते ही दन्न से हुक्म देंगे, चाय कहाँ है? घर कोई ऑफिस समझ रखा है, आवाज दो और चपरासी चाय लेके हाजिर।
2: बापू ओ बापू बापू बापू।
3: अबे कौन है कमबख्त?
2: हमें बापू।
3: अबे बापू के बच्चे कहे को आधी रात को उठा रहा है?
1: आधी रात? सुबह के 8 बज गए हैंगे और अभी तक तुम्हारी आधी ही रात हो रही है।
3: अरे बच्चों की अम्मा दरअसल बात ये है कि हम बढ़िया सपना देख रहे थे।
1: हाँ सपना ही देखते रहना कि सोने चांदी के बर्तनों में माल पुए उड़ा रहे हैं।
3: सच्ची में आज भी यही सपना आ रहा था, पिछले कई दिनों से यही सपना आ रहा है।
2: वही सपना बापू कि हम बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैंगे, ढेरों नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े हैंगे।
0: कलर टीवी हैगा, फ्रिज हैगी,
2: डीवीडी पर फिल्म देख रहे हैंगे और अम्मा बापू झगड़ रहे हैंगे कि कौन सी फिल्म देखें।
0: चिंटू अम्मा बापू सपने में भी झगड़ रहेंगे क्या?
3: अबे चुप। ए चिंटू की अम्मा तुम्हें मालूम है सुबह सवेरे वाला सपना बिल्कुल सच होता आएगा।
1: तो ये तुम्हारा सुबह सवेरा है? 8:30 बज रहे हैंगे।
3: अरे पर मेरा सपना तो सुबह 4 बजे ही शुरू हो गया था। हाँ मंदिर की घंटी बज रही थी उस वक्त और उसी वक्त मेरी नींद खुल गई। अरे देखता क्या हूँ कि सारा कमरा रोशनी से जगमगा रहा है। मैंने सोचा बत्ती बंद करना भूल गया हूँ।
2: फिर क्या हुआ बापू?
3: अरे फिर क्या, देखता क्या हूँ कि जे रोशनी तो साक्षात देवी माँ के चरणों की थी, साक्षात लक्ष्मी मैया दरवाजे पे मुस्कुराती खड़ी हैंगी।
1: अरे जाओ रहन दो, गप्पे हाँक रहे हैंगे सवेरे सवेरे।
3: अरे गप नहीं है बच्चों की अम्मा, सच्ची कह रहे हैं हम। हाँ 10 लाख का आशीर्वाद दिया है हमें।
2: पर बापू 10 लाख आएंगे कहाँ से?
3: अच्छा ये बताओ आज कौन सी तारीख है?
1: 28 तारीख है जी आज।
3: 28 तारीख? अरे वो मारा।
2: क्या मारा बापू, मच्छर?
3: अबे चल। ए बच्चों की अम्मा तुमको लॉटरी का टिकट दिया था ना, ये संभाल कर रखने को।

0: वो लेके आओ तो जरा जल्दी लाओ।
1: पर इनाम विनाम कुछ निकलता तो है नहीं।
0: ओहो, जब बोलती हो बेसुरा बोलती हो। तुम लाओ तो।
1: हाँ हाँ लाती हूँ।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, कल 27 तारीख को लॉटरी का डिरा खुल गया होएगा। आज 28 तारीख है, आज अखबार में डेरा छपा तो जरूर होएगा। अभी थोड़ी देर में अखबार वाला हमारी किस्मत का दरवाजा खटखटाएगा।
2: अखबार वाला? पर बापू, हमारे यहाँ अखबार आता कहाँ है?
1: ये लो जी टिकट।
0: टिकट? अरे 10 लाख का चेक हैगा जे। चिंटू बेटा, जा वर्मा जी के जहाँ से अखबार तो ले आ।
2: हम नहीं जाएंगे वर्मा जी के यहाँ।
0: क्यों?
2: रोज रोज मांगने में हमें शर्म आवे। हाँ।
0: अरे जा जा बेटा, आज हो ले यार, ये बस आखिरी दिन, फिर कल से तो आनंद ही आनंद है। अरे दुनिया भर के अखबार मंगाएंगे और क्या कहते हैं वो तेरी खूब सारी मैगजीन।
1: ए जा बेटा जा ले आ।
2: ठीक है जी, ले आता हूँ। हाँ।
1: रुक चिंटू, हम भी चलते हैं।
2: हाँ, चल चल चल।
1: अरे दो दो लोग जाओगे, एक अखबार उठाने।
0: अरे जाने दे जाने दे, लॉटरी वाला अखबार है आखिर।
2: बापू बापू बापू,
0: क्या हुआ?
2: वर्मा जी के अखबार तो नहीं मिला बापू।
0: अखबार नहीं मिला?
2: हाँ बापू, उनका अखबार तो शर्मा जी ले गए होंगे।
0: अरे यार, जे शर्मा जी अजीब लीचड़ आदमी है, अपना खुद का अखबार तक नहीं मंगा सकते जे।
1: अरे तो वर्मा जी का अखबार शर्मा जी ले गए हैं तो शर्मा जी के यहाँ से लेते आते रहा ना। तू बुद्धू के बुद्धू।
2: अम्मा, अब बुद्धू मत कहियो ना, दीदी गई है शर्मा जी के अखबार लाने।
1: ये लो बापू अखबार।
0: हाँ, ये अखबार नहीं 10 लाख का पिटारा है जे। मुझे दे, कहाँ है ना दे।
1: ये लो।
0: हे लक्ष्मी मैया, लगा दे बेड़ा पार। अरे चिंटू, एक कौन से पेज पर आता है वो लॉटरी का रिजल्ट?
2: अंदर के पेज पे आवे बापू, पन्ने पलट कर देखो ना।
0: अरे यार, ये तो भविष्य फल है। लिखा है बीबी से खटपट। देखा देखा बच्चों, सही लिखा है ना। आज ही तुम्हारी माँ से खटपट हुई कि नहीं हुई?
1: अरे वो तो रोज ही होती है, कौन सी नई बात है।
0: चुप रहे, आगे लिखा है अचानक धन की प्राप्ति। अरे आज तो सच्ची में कुछ होने वाला है। ये रहा लॉटरी का डेरा। अरे चिंटू पढ़ तो बेटा नंबर ले।
2: हाँ, लाओ लाओ।
0: देख देख देख।
2: हाँ। पहला इनाम जो निकला है ना, वो है के सीरीज का।
0: ओ महाराज, यही तो अपनी सीरीज है। और नंबर वो
2: के।
0: अरे कितनी बार के बोलेगा यार, आगे का नंबर क्यों नहीं बोलता?
1: अरे बोल तो रहा है। हाँ बेटा बोल बोल।
0: अबे बोलता है कि दूर अगला पाड़ा खींच के।
1: देखो अम्मा बापू को, अभी तो पैसा आया नहीं, तभी हाल हैगा।
0: अरे तू चुप कर। हाँ बोल रहे नंबर। नहीं नहीं, तू टिकट ला इधर दे दे
2: के।
0: अरे फिर के?
2: के 54
0: के क्या के 54? अरे वो मारा यार, आगे आगे 53 है क्या रे चिंटू?
2: हाँ बापू, आगे 53 ही है।
0: और आखिर के?
2: आखिरी के 521 है बापू।
0: क्या? हे लक्ष्मी मैया।
1: अरे क्या हो गया इन्हें बापू? ओ बापू
2: जी, तो हो गए बेहोश।
1: क्या
2: अम्मा, लगता है आखिरी के नंबर भी मिल गए होंगे। लॉटरी निकल गई है 10 लाख की। हाँ सच्ची में अम्मा, अम्मारे 10 लाख का पहला इनाम। अब सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे हमारे। 10 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है बहना।
1: अरे आग लगे तुम्हारी रकम में। जरा अपने बापू को तो देख, हराम क्या हो गया इनको।
2: अम्मा खुशी के मारे बापू बेहोश हो गए होंगे।
1: बेहोश हो गए?
2: हाँ अम्मा, अभी चप्पल सुगाते होंगे, अभी ठीक हो जाएंगे।
0: अबे जे चप्पल गिन गिन के लगाएंगे हम तुम्हें, चप्पल सुगाता है हमें है? हम लखपतिये को
2: बापू 10 लखपतिये कहो।
0: हाँ 10 लखपतिया हो गया हूँ मैं। अब सारे अरमान पूरे करेंगे हम। बंगला होएगा, फ्रिज होएगा।
2: बापू हम बहुत दिनों से कह रहे हैंगे, पहले हमारी फरमाइश पूरी करने हैं।
0: हाँ हाँ हाँ, बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को?
2: मुकर मत जाना बापू।
0: अरे नहीं नहीं रे, तू बोल तो
2: बापू। हमें है ना

0: हमें है ना एक मोपेड दिलवा देना बस।
1: अरे था तेरे की मोपेड। अबे स्कूटर की बात कर, कार की बात कर, तुम बताओ बच्चों की अम्मा तुम्हें क्या चाहिए।
2: हिस्सलो के लिए कोई अच्छा सा लड़का देकर इसका ब्याह धूमधाम से कर दो जी।
0: बापू हम ऐसा करते हैं, कॉपी पेन लेकर आते हैं।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ जे सही है यार, जे सही है, एक एक आइटम और उसका खर्चा लिखते जाते हैं।
0: हाँ।
1: जा।
3: मुरारीलाल, अबे ओ मुरारीलाल।
1: ऐ वर्मा जी, अबे तुम्हें किससे कर रहे हो?
3: तुम्हें कह रहे हैं, तुम्हें मांगते कहीं के।
1: मांगते कहीं के हैं? क्या मतलब? तुमसे कौन सी चीज मांगी भाई हमने?
3: अखबार लेकर नहीं आया हमारा, लाओ तो हमारा अखबार।
1: खबरदार जो अखबार को हाथ लगाया तो।
3: अरे वाह, हमारा अखबार और हम ही हाथ नहीं लगा सकते?
1: अरे काय का तुम्हारा अखबार। अरे बेटा सल्लो, हाँ। कहाँ से लाई तुम ये अखबार बताओ तो?
4: शर्मा अंकल के यहाँ से लाए थे। हाँ।
1: लो सुन लिया।
3: पर शर्मा जी हमारा अखबार ही तो ले गए थे।
1: तो ये तुम शर्मा से बात करो जाकर, शर्मा जी लेकर गए हैं तो शर्मा जी से ही जाकर लो अपना अखबार। दिमाग खराब हो गया है जो यहाँ चले आए।
3: अबे ए मुरारी, मुंह संभाल कर बात करना।
1: अरे क्या मुंह संभाल कर बात करना, लखपति हो गए हम।
3: लखपति?
1: हाँ
3: लखपति हो गए मतलब?
1: अरे 10 लाख की लॉटरी निकली हमारी समझे, 10 लाख की।
3: अबे तो चाहे जैसी बात करेगा क्या है, एक उल्टा हाथ मारूंगा तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा तेरा।
1: क्या क्या क्या क्या क्या, क्या कहा? थोबड़ा तो मैं तेरा सही करता हूँ अभी के। ये ले।
2: अजी अजी क्या हो गया, क्यों बिस्तर को पीट रहे हो नींद में?
0: बापू बापू ये तकिये लेकर किससे मारामारी कर रहे हो?
4: कोई सपना देख रहे थे क्या बापू?
1: अरे सपना? अरे मेरे 10 लाख कहाँ गए? वो वर्मा का बच्चा कहाँ गया?
2: पर वर्मा जी आए कहाँ? हाँ उनके यहाँ से अखबार जरूर लाया है चिंटू।
1: अरे तो लॉटरी का इनाम निकला?
2: हाँ निकला है, 10 रुपए का इनाम निकला है।
1: क्या 10 रुपए? हाय मेरे 10 लाख।

0: लॉटरी खुल गई। अभी आप अशोक बुलानी की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे बालेंद्र सिंह कुशवाह, शिवांगी पवार, राजीव सिंह, कंचन राजानी और राकेश जैमिनी। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म के गीत से। आवाज़ लता मंगेशकर और सोनू निगम की है, शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत निर्देशन मदन मोहन और संजीव कोहली का।

वीर जारा। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ में। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत मदन मोहन और संजीव कोहली का था। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है फिल्म संगीत दिल से। इस फिल्म का गीत आप सुनिए उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज़ में। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत ए आर रहमान का।

उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दिल से फिल्म का गीत। शब्द रचना गुलजार की थी और संगीत AR रहमान का। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म बॉर्डर का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में, शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत अनु मलिक का।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए फिल्म बॉर्डर के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनिए धारावाहिक सिसकियां की चौथी कड़ी।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की चौथी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि मुश्ताक सायरे को अपने घर वापस ले जाने के लिए आता है, लेकिन फाता सायरे को वापस नहीं भेजती है और उसे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। मुश्ताक खाली हाथ वापस लौट जाता है। अब आगे।

0: अम्मी
1: मुश्ताक आ गया बेटा।
0: हाँ अम्मी।
1: अरे अकेला आया है, सारे नहीं आई?
0: नहीं अम्मी, सारे नहीं आई।
1: क्यों भला, तू गया था ना?
0: हाँ गया तो था, पर वो नहीं आई अम्मी। कह रही थी कि कुछ दिन और रहेगी अपनी अम्मी के घर।
1: बहुत दिन बाद गई थी, सो मन कर गया होगा रहने को। अच्छा चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ।
0: नहीं अम्मी अभी रहने दो, मन करेगा तो खा लूंगा।
1: अच्छा हसन बट भाई और पाता कैसी हैं, और उनकी तबीयत तो ठीक है ना?
0: हाँ अम्मी सब ठीक है, सलाम भेजा है आप लोगों को।
1: अल्लाह सबको सलामत रखे।
0: अम्मी मैं कमरे में जा रहा हूँ।
1: खाना नहीं खाएगा क्या?
0: नहीं अभी नहीं, थोड़ी थकावट लग रही है।
1: ठीक है, जब तेरे अब्बा आ जाएंगे तो खा लेना।
0: अम्मी अब्बा गए कहाँ हैं?
1: कह कर तो नहीं गए, कहीं बैठ गए होंगे गप्पे मारने। इस उम्र में बचा ही क्या है करने को।
0: अच्छा अम्मी अब्बा आ जाए तो बता देना, तब तक मैं आराम कर लूं।
1: ठीक है।

0: कौन?
1: अरे मैं हूँ।
0: आ गए?
1: हाँ, वो जानवरों के चारे के लिए गया था। असलम को कह दिया है, वो कल पहुंचा देगा।
0: चलो, अच्छा किया।
1: सुनो,
0: हाँ?
1: मुश्ताक सारे को लेने गया था, आया नहीं अभी तक क्या?
0: थोड़ी देर पहले ही आया है।
1: है कहाँ?
0: अपने कमरे में है।
1: सारे?
0: सारे नहीं आई।
1: क्या? सारे नहीं आई है? मुश्ताक तो लेने गया था ना?
0: गया तो था, पर सारे नहीं आई।
1: वहाँ सब सलामत तो है ना?
0: मुश्ताक तो कह रहा था कि सब सलामत है।
1: तो फिर सारे क्यों नहीं आई?
0: कुछ दिन और रहना चाहती है अम्मी के पास।
1: कुछ और बात तो नहीं हुई ना वहाँ?
0: और कुछ तो बताया ही नहीं मुश्ताक ने। जो बताया था वो मैंने आपसे कह दिया।
1: तो ठीक है, अरे कुछ दिन रहकर ही सारे को बुला लिया जाएगा।
0: मुश्ताक को बुला लेती हूँ, उसने खाना भी नहीं खाया।
1: ठीक है, बुला लो, आज साथ ही खाना खा लेंगे।

0: मुश्ताक नहीं आया?
1: नहीं, मुश्ताक की तबीयत ठीक नहीं।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: हुआ तो कुछ नहीं, पर परेशान लग रहा है।
0: अरे पूछा नहीं, क्यों परेशान है वो?
1: पूछा तो था, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।
0: ये क्या बात हुई बोला?
1: अजी, जवान बेटे पर कोई बात बताने को जोर भी तो नहीं डाल सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के ना आने से मुश्ताक थोड़ा परेशान है, इसीलिए ऐसा कर रहा है।
0: ठीक है, ये हो सकता है, हो सकता है।
1: हाँ, अभी अभी तो निकाह हुआ है, सो सारे की याद तो आएगी ही।
0: फजी, मुश्ताक का खाना उसके कमरे में ही भेज दो और मेरी थाली में निकाल दो। ठीक है, बाकी बातें खाते हुए करेंगे।
1: हाँ, मुंह हाथ धोकर आओ, मैं खाना निकालती हूँ।
0: ठीक है, अरे रे जाओ, पहले मुश्ताक को खाना दियाओ।
1: तुम बैठो तो, मैं अभी देकर आती हूँ।

0: बच्चे अब अपने फैसले खुद लेने लगे हैं और उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल है।
1: क्या कर सकते हैं हम, मुश्ताक को ही लो, सारे नहीं आई तो परेशान होकर खाना खाने भी।

0: अल्लाह ताला पर ही तो भरोसा है, जिससे मन को तसल्ली होती है। नहीं तो इन बच्चों के बर्ताव से तो
1: और रोटी दूं?
0: हाँ, नहीं, रहने दो तो।

0: भी बना देती हूँ।
1: नहीं, अगर परेशानी हो तो रहने देना।
0: अजी, परेशानी किस बात की, अभी बना देती हूँ।
1: सुनो, वो कुछ लकड़ियां देती जाना, अलाव में आग जला दूं। अब ये ठंड कुछ बढ़ गई लगती है।

0: क्या कर रही हो फजी?
1: अरे मेहर, आओ आओ, बर्तन मांज रही हूँ।
0: क्यों, बहू कहाँ गई?
1: मायके गई हुई है, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी सो मिलने गई थी।
0: तो क्या अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है?
1: तबीयत तो ठीक हो गई है, पर सारे कुछ दिन मायके में रहना चाह रही थी सो अभी आई नहीं है।
0: एक बात कहूँ फजी, बुरा तो ना मानोगी?
1: ऐसी भी क्या बात है बीबी कि बुरा मानू, पहले बात तो कहो।
0: अपने पर ना लेना फजी, ये पहले कह देती हूँ। हाँ
1: बीबी, तुम बात तो कहो, यूं पहेलिया क्यों बुझा रही हो?
0: फजी, आजकल की लड़कियों का क्या कहूँ, दिमाग खराब हो गया है।
1: अरे बात क्या हुई?
0: बात क्या होनी थी, तुम नहीं पहचानती, मेरी दूर की रिश्तेदार थी, उसने तो हद ही कर दी।
1: मेहर बताओ तो हुआ क्या?
0: वो अपने शौहर को छोड़ दूसरे लड़के के साथ चली गई।
1: अरे रे, ये तो बुरा हुआ बीबी, पता नहीं आज के बच्चों को होता क्या जा रहा है।
0: फजी मेरी मान, तू बहू को बुला ले, ज्यादा दिन लड़की मायके में रहे तो लड़की का सर घूम जाता है, और अपने लड़के को भी थोड़ा समझा कि बीवी पर लगाम रखे। बुरा ना मानना, सुना तो मैंने यही है कि अपनी अम्मी की बीमारी का बहाना बनाकर मायके में रह रही है।
1: मेहर बीबी, तुम्हारा कहना सही हो सकता है पर सब के लिए नहीं। मेरा बेटा और मेरी बहू ऐसे नहीं हैं कि उन पर दबाव बनाने के लिए मुझे कुछ करना पड़े।
0: अरे फजी, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो यूं ही कह रही थी, तूने तो बात अपने पर ले ली।
1: बीबी बुरा नहीं मानती पर
0: परवर छोड़ फजी, मैंने दुनिया देखी है और उसी तजुर्बे से कहती हूँ, तेरी बहू ठीक है, तेरा कहा मानती है, पर सबका नसीब तेरे जैसा तो होता नहीं कि बहू की सेवा पाए।
1: मेहर बीबी, बहू पर दबाव बनाने से बहू सेवा करेगी ही, अब ये बात तो कोई तय नहीं है ना।
0: फजी, तू मेरी बात समझ नहीं रही है कि मैं कह क्या रही हूँ। लोग कहते हैं कि मुश्ताक को घुमाकर बहू मायके में मजे कर रही है।
1: किसने कहा तुमसे ये सब झूठ है?
0: अरे ये तो मैं भी जानती हूँ कि झूठ है, पर कहने वालों के जुबान थोड़े ही बंद की जा सकती है, उनके मन में जो आए सो कहते हैं।

0: और उनकी बातों पर तू ध्यान न देना।
1: मेहर बीबी, मैं जानती हूँ कि मेरी बहू अच्छी है और मुश्ताक को भी प्यार करती है। जमाने को क्या, किसी का भला तो देखा जाता नहीं, बकने लगते हैं।
0: छोड़ो भी उनकी बातों को। सुना है कि मुश्ताक बहू को लेने गया था, ये बात तो सच है ना?
1: हाँ, गया तो था मुश्ताक,
0: फिर भी बहू नहीं आई, यही ना?
1: अरे, अम्मी की बीमारी में गई थी, कुछ दिन रहना चाहती थी, सो नहीं आई, और क्या?
0: लोग ये तो नहीं जानते, बस कह देते हैं कि...
1: क्या कहते हैं?
0: यही कि मुश्ताक का अपनी बीवी पर कोई जोर नहीं चलता। बीवी जो कहती है मुश्ताक वही करता है, गुलाम हो गया है।
1: देखो बीबी, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, उन्हें ही ये फालतू बातें सूझती हैं। और एक बात कह देती हूँ, हाँ, बुरा ना मानना, तुम जहाँ भी ये फालतू बातें सुनती हो ना, अल्लाह कसम अपने तक ही रखा करो बीबी। मुझे इन फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं। मैं अपने बेटे मुश्ताक को जानती हूँ और अपनी बहू सारे को भी जानती हूँ।
0: नाराज ना हो फजी, लोग तो यूं ही बकते हैं। मैंने तो जो सुना था वही कह दी, बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना।
1: तुम भला क्यों माफी मांग रही हो मेहर बीबी? वक्त आएगा तो वे लोग देखेंगे कि घर क्या होता है और घर को चलाया कैसे जाता है।
0: अच्छा फजी, मैं तो अब चलूंगी, बड़ी देर हो गई।
1: थोड़ी देर बैठो, चाय तो पीती जाओ।
0: फिर कभी पी लूंगी, अभी तो चलती हूँ। और हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानना, तुम्हें अपना समझती हूँ, इसीलिए कह देती हूँ।
1: कोई बात नहीं, अपनों की बातों का भी कोई बुरा मानता है क्या?
0: अच्छा, अब चलती हूँ। खुदा हाफिज।
1: हाफिज खुदा।

0: Fuzzy? Fuzzy? Fuzzy? क्यों क्या हुआ फजी? यूं गुमसुम से क्यों बैठी हो?
1: नहीं कुछ नहीं, यूं ही बैठी हूँ।
0: यूं ही बैठी हो तो गुमसुम सी क्यों? कोई बात हुई क्या? भाई तुम्हें इस तरह से उदास बैठे पहले तो नहीं देखा।
1: छोड़ो भी बातें बनाना।
0: अरे अरे तुम तो नाराज हो गई। बोलो बोलो क्या बात है?
1: नहीं कुछ भी तो नहीं।
0: फजी तुम परेशान हो और तुम्हारी परेशानी साफ साफ पता चल रही है। ठीक है अब तुम बताना ना चाहो तो भाई तुम्हारी मर्जी।
1: सारे को बुलवा लेते।
0: सारे को बुलवा लूं? क्यों क्यों बोला? अरे वो मायके ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: सारे है तो मायके में, पर लोगों को क्या कहें।
0: अरे इसमें लोगों को कहने वाली क्या बात हो गई?
1: आसपास के लोग क्या क्या बातें करते हैं तुम्हें क्या पता।
0: लोगों का क्या है? वैसे हुआ क्या जो तुम इतनी जिद कर रही हो कि सारे को बुला लूं?
1: आज मेहर बीबी आई थी, उन्होंने ही बताया कि लोग सारे और मुश्ताक को लेकर क्या क्या कहते हैं।
0: अरे तुम भी किसकी बात लेकर बैठ गई? अरे वो मेहर बीवी को तो बस जो मन में आया बक दिया, ना आगे सोचा ना पीछे, यूं ही मनगढ़ंत बोलती रहती है।
1: पर सारे को मायके गए भी तो कितना समय हो गया।
0: अरे भाई सारे अपनी अम्मी के घर ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: देखो जी निकाह के बाद मायके में इतने दिन रहना अच्छा नहीं होता। अब मुश्ताक को बोल दो कि सारे को ले आए।
0: ठीक है मुश्ताक को तुम ही बोल दो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
1: ठीक है मुश्ताक घर आता है तो कहूंगी कि कल ही सारे को लेने चला जाए।
0: ठीक है जैसा तुम ठीक समझो। और हाँ देखो देखो ये एक बात मैं कह देता हूँ, तुम मेयर बीवी जैसी औरतों की बातें मत सुना करो।
1: अरे मैं कोई सुनने थोड़े ही गई थी, वो तो खुद आई थी यहाँ।
0: देखो फजी लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो।
1: कैसे ना दूं, आखिर रहना तो इन्हीं लोगों के बीच में है।
0: तो ठीक है हसन भट्ट को पैगाम भेजता हूँ कि वो सारे को भेज दे।
1: हाँ मुश्ताक को भी कहती हूँ कि सारे को लेने के लिए चला जाए।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की चौथी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सतीश कक्कड़ और कोइना। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिस्कियां का चौथा भाग, डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदला जा रहा है। प्रदेश के अनूपपुर जिले में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। यह दुर्घटना पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के बिजोरा गांव में हुई, जहां करीब 6 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े सामने आए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपाल स्टील इंडिया कंपनी की निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो आज सेमीफाइनल में जापान की सायका होबारा और यऊची शिमोगामी से पराजित हो गए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों, लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है। सुख का तो ठीक है, लेकिन दुख में आत्मनिर्भरता ही आपके काम आती है। और आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसों से नहीं आती, ये आती है आपके टैलेंट से, आपके अपने कौशल से। आपका ये टैलेंट ही आपको हमेशा सही राह पर लेकर जाता है। कैसे, जानते हैं आज की युववाणी में। आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, अभी मैंने आपसे आत्मनिर्भरता की बात की, ये क्या है और कैसे काम आती है, जानते हैं राहुल और प्रिया की बातों के जरिए। राहुल ने कहा, आजकल हर तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, लेकिन सच बताऊं, आत्मनिर्भर बनना इतना आसान नहीं है। पहले तो हमें कुछ अच्छा कौशल सीखना पड़ेगा ना। प्रिया ने कहा, बिल्कुल सही कहा। कौशल विकास मतलब बस डिग्री ले लेना नहीं है, मतलब वो हुनर सीखना जो काम आए, जिससे आप पैसे कमा सकें और दूसरों पर निर्भर ना रहें। जैसे आजकल लड़के लड़कियां सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं। राहुल ने कहा, हाँ, मेरे बगल वाले भैया ने तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया था। पहले वो मजदूरी करते थे, अब खुद का छोटा सा काम शुरू कर दिया है। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ खुद ही संभाल रहे हैं अब वो। ये है असली आत्मनिर्भरता। प्रिया ने कहा कि हाँ, सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, पीएम कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ITI, पॉलिटेक्निक, मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग सिर्फ नाम सुनकर रह जाते हैं, असल में जाना, ट्रेनिंग लेना और फिर लगना भी तो पड़ता है। राहुल ने कहा, कौशल सीखने के बहुत से फायदे हैं। नौकरी की तलाश में भटकना बंद हो जाता है, खुद का छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अच्छी कमाई होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और देश भी मजबूत होता है। प्रिया ने कहा, बिल्कुल, एक गांव की लड़की अगर अच्छे से हैंडीक्राफ्ट, टेलरिंग या ऑनलाइन काम सीख ले तो वो न सिर्फ खुद कमा पाएगी बल्कि दूसरी लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे सकती है। एक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा, फिर पूरा गांव। राहुल ने कहा, लेकिन चुनौतियां भी तो हैं। सही ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिलता, लोग बीच में छोड़ देते हैं, लोगों का ये सोचना कि ये काम तो छोटा काम है, और शुरुआत में पैसे भी कम मिलते हैं। प्रिया ने कहा, चुनौतियां तो हैं, लेकिन रुकना नहीं है। आज के समय में सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्स, फ्री एप्स के जरिए भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस लगन चाहिए। राहुल ने कहा, वाकई में कौशल विकास आत्मनिर्भरता की सीढ़ी है। जितना ज्यादा हुनर सीखोगे उतना कम दूसरों पर निर्भर रहोगे। चाहे नौकरी करो, अपना काम शुरू करो, आत्मनिर्भर इंसान कभी हार नहीं मानता। प्रिया ने कहा, और सबसे बड़ी बात ये कि आत्मनिर्भर व्यक्ति न सिर्फ खुद खुश रहता है बल्कि परिवार, समाज और देश को भी मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, राहुल और प्रिया की बातों के जरिए ये तो समझ में आता है कि किताबी ज्ञान अच्छा है, लेकिन हाथ का हुनर जीवन बदल देता है। तो आज से ही तय कर लीजिए कि आप एक नया कौशल सीखना शुरू कर देंगे। छोटा कदम हो सकता है, लेकिन ये कदम हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ले जाएगा। कौशल सीखिए, आत्मनिर्भर बनिए और देश को मजबूत बनाइए। और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं KK की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

0: दोस्तों, आज के समय में हमारा युवा समाज नशे की लत का ज्यादा शिकार है। आज युवाओं के नशे का मुख्य कारण है उनमें सहन शक्ति की कमी। देश का युवा वर्ग आज नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। युवा आजकल बहुत जल्दी अपना हौसला खो देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं। अपने जीवन में कई बार लोग लगातार मिल रही असफलताओं से घबरा जाते हैं और इस कारण वो भविष्य में मिलने वाली सफलताओं की संभावना को भी खो देते हैं, फिर किस्मत और समय को दोष देते हैं। नशे को किस तरह से छोड़ा जा सकता है, नशे की लत से किस तरह से बाहर आया जा सकता है, जानते हैं आस्था तोमर से।
1: दोस्तों, देश की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चले तो इसमें नुकसान केवल उन युवा पीढ़ी का ही नहीं होता, बल्कि इसमें देश का भी नुकसान होता है। युवा पीढ़ी के गलत राह पर चले जाने से देश की तरक्की रुक जाती है, क्योंकि इन्हीं से तो देश की तरक्की है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी नशे के राह पर जा रही है। दोस्तों, एक व्यक्ति जब नशा करना शुरू कर देता है तो उसका घर परिवार सबके जीवन में अंधेरा छा जाता है। दुख तो इस बात का है कि यह सब जानने के बावजूद भी युवा पीढ़ी नशे का सेवन करना नहीं छोड़ रही। सारे देशों में भारत सबसे अत्यधिक युवा पीढ़ी वाला देश है। युवा पीढ़ी पर ही देश की तरक्की निर्भर करती है, लेकिन जब युवा पीढ़ी गलत राह पर चली जाए तो फिर देश की तरक्की कैसे हो सकती है। आज नशा इस कदर युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है जैसे एक दीमक लकड़ी को बर्बाद कर देती है। नशा नाश के समान होता है और आज भारत की युवा पीढ़ी बहुत तेजी से नशाखोरी की प्रवृत्ति अपना रही है। आजकल लड़कियां भी नशा करने लगी हैं। आजकल के युवाओं में नशा करने के बहुत सारे कारण मौजूद हैं, जैसे कि नशे को फैशन समझना, तनाव को कम करने का माध्यम बनाना, गलत संगत में फंसना, संस्कारों की कमी और नशीले पदार्थों का अत्यधिक प्रचार और प्रसार। यदि आज के युवा वर्ग को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाना है, उन्हें नशे की राह पर जाने से रोकना है, तो नशीले पदार्थों की बिक्री पर कठोरता से रोक लगानी पड़ेगी। जब नशीले पदार्थ की बिक्री नहीं होगी तो लोग उसका सेवन ही नहीं करेंगे। आज सरकार और बहुत सारे ऐसे संस्थान जो युवा पीढ़ी को नशा मुक्त करवाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ युवा पीढ़ी को भी यह समझने की ज़रूरत है कि वे पढ़े लिखे हैं, अच्छे बुरे की पहचान भली भांति कर सकते हैं, इसलिए नशीले पदार्थों को अपनी लत ना बनाएं। ये समझने का समय आ गया है कि स्कूल और कॉलेजों में पागलपन भरी प्रतिस्पर्धा युवाओं के भविष्य को सुधारने के बजाय बर्बाद कर रही है। प्रतिस्पर्धा का उच्च स्तर छात्रों को तनाव में डाल रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है। माता पिता का ध्यान अपने बच्चों को कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते देखने पर ही नहीं होना चाहिए। इसके बजाय वह एक स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चे की परवरिश करें जो सही और गलत के बीच का अंतर करने में सक्षम हो। माता पिता को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए और हर कदम पर उनके साथ रहना चाहिए। उन्हें अपने कौशल को निखारना चाहिए, लेकिन साथ ही उनकी क्षमता को भी समझना चाहिए। उन्हें पढ़ाई और ऐसी अन्य अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहिए। माता पिता को यह समझने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों को डांटना और उन्हें लत छोड़ने के लिए मजबूर करना मदद नहीं करता है। किसी भी तरह की लत से छुटकारा पाना एक क्रमिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान माता पिता को अपने बच्चों के साथ खड़े रहना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को नशे की लत से उबरने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता देनी चाहिए। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। धन्यवाद।
0: दोस्तों, अभी आप आस्था तोमर को सुन पा रहे थे। दोस्तों, माता पिता हमारे साथ हर जगह नहीं होते, इसलिए वो हमें संस्कार देते हैं और उनके ये संस्कार ही हमें जीवन में हर गलत राह पर जाने से रोकते हैं, हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें एक सही रास्ता दिखाते हैं। नशा छोड़ने के लिए जरूरी है कि युवा अपने आप को मजबूत बनाए और गलत संगति से बचे। कोई भी परेशानी अपने माता पिता के साथ या अपने संग साथियों या कोई ऐसा रिश्तेदार जो हमें समझ सके और जो सही और गलत में फर्क बता सके, उनसे शेयर जरूर करें। जब भारत का युवा वर्ग नशे की लत से दूर रहेगा, तब तो वो अपने करियर के बारे में सोच पाएगा। और आज के समय में करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत से रास्ते हैं, तो उन रास्तों की तरफ देखिए और नशे से दूर रहिए। और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

बताएंगे पिथौरा भित्ति चित्र कला के विषय में। पिथौरा भित्ति चित्र कला क्या है? दोस्तों, पिथौरा भित्ति चित्रकला गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों की बहुत खूबसूरत और जीवंत कला है। ये मुख्य रूप से राठवा और भील समुदाय के लोग ही बनाते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि पूजा पाठ और अपनी इच्छाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का एक पारंपरिक तरीका है। पिथौरा चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं, आमतौर पर घर की मुख्य दीवार या पूजा वाले कमरे की दीवार पर ही बनाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले सफेद, लाल, नीला, पीला, हरा और काला रंग इस्तेमाल होता है, जो कि प्राकृतिक चीजों से ही बनाए जाते हैं, जैसे चावल का आटा, हल्दी, फूल, पत्तियां, ये सभी। और आजकल बाजार के रंग भी इसमें उपयोग किए जाते हैं। लेकिन ये बनाया कैसे जाता है, ये जानते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले दीवार को गोबर और मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फिर कलाकार, जिसे कि लखेरा कहते हैं, वो बांस की पतली छड़ी या ब्रश से बिना किसी नक्शे के सीधे चित्र बनाते हैं। चित्रों में घोड़े, बैल, हाथी, मोर, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, देवी देवता और दैनिक जीवन के दृश्य दिखाए जाते हैं। बीच में एक बड़ा चौकोर या आयताकार बॉर्डर बना दिया जाता है, जिसमें मुख्य कहानी छुपी हुई होती है। चारों तरफ सुंदर बॉर्डर और छोटे छोटे प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। दोस्तों, पिथौरा मुख्य रूप से शुभ अवसरों पर बनाया जाता है, जैसे शादी, किसी बच्चे का जन्म, घर बनना या कोई मनोकामना पूरी होने पर। लोग मानते हैं कि पिथौरा बनाने से घर में सुख समृद्धि आती है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। ये आदिवासी संस्कृति का आईना है, जिसमें प्रकृति, पशु पक्षी और देवता सभी एक साथ रहते हैं। आजकल ये कला सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रही, कलाकार इसे कैनवास, कपड़े और कागज पर भी बना रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इसे बढ़ावा दे रही हैं, ताकि नई पीढ़ी इसे सीखे और कलाकारों की आय बढ़े। दोस्तों, पिथौरा कला हमें सिखाती है कि सादगी में भी कितनी सुंदरता छिपी हो सकती है। ये हमारी जड़ों, प्रकृति और आस्था का सुंदर मेल है। तो अगर आप कभी राठवा गांव जाएं, तो इन जीवंत दीवारों को देखना कभी मत भूलिएगा। ये चित्र सिर्फ दीवार नहीं सजाते, बल्कि हमारे दिल को भी छू जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे यूं ही टेंशन लेकर के जाया ना करें, क्योंकि आपको हर रोज आपका मूड डिस्टर्ब करने के हजारों बहाने मिलेंगे। लेकिन हर वक्त खुद को पॉजिटिव रखें। जब भी आप अच्छा फील ना कर रहे हो, तो अपने मूड को बदलने के लिए सॉन्ग सुने। इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं ये गीत सुजैन की आवाज में।

दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे खुलकर जीना चाहिए। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं विशाल दादलानी की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, इस गीत के साथ वक्त हो चला है हमारा आपसे विदा लेने का। तो जाने से पहले अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा ईमेल एड्रेस है yuvvanireeva@gmail.com। तो स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और निरोगी काया का ध्येय लिए विदा दीजिए अपनी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला को। नमस्कार, शुभ संध्या।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 5:30 होने को हैं। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
4: अरे
2: काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
10: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
9: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
10: आकाशवाणी है ना,
8: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
10: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
9: शाम सुहानी हो,
10: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
9: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भोले बिसरे पल, हर पल
10: सफर में
9: आपके साथ
10: आकाशवाणी।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म रावण से। एकॉन, विशाल ददलानी और श्रुति पाठक की आवाज़ों में ये गीत आप सुनेंगे, जिस गीत को लिखा है कुमार ने और संगीत है विशाल शेखर का।

अमृता काक और मीका सिंह की आवाज़ों में फिल्म रेडी का गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत के बोल लिखे आशीष पंडित ने और संगीत था देवश्री प्रसाद का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, आइए आपको अगला गीत हम सुनवाते हैं, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल की आवाज़ें हैं। जावेद अख्तर की शब्द रचना और संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: फिल्म मौसम का गीत अभी आप सुन रहे थे, मीका सिंह और पंकज कौर की आवाज़ों में, इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का संगीत। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस बॉलीवुड।

0: सो जैन ऑल नई पुरानी बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
3: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमारे युवा देश की आशा और सामर्थ्य हैं। उनके विचार और चरित्र ही देश का भविष्य तय करेंगे। जरूरी है कि हमारे युवा जो भी काम करें उसमें उत्कृष्टता और संवेदना पर विशेष बल दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम ने राहत भरा रुख अपना लिया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने ग्वालियर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओले गिरने और बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अप्रस्तुत है भारतीय प्रसारण के 90 वर्ष पर आकाशवाणी से जुड़े संस्मरणों पर पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी भोपाल एवं राज्य सूचना आयुक्त राजेश भट्ट से शुभम तिवारी की बातचीत।
1: साथियों नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा आपको जानकारी है कि भारतीय प्रसारण का ये 90वां वर्ष चल रहा है और अब से कुछ ही दिनों बाद यानी 8 जून 2026 को हम भारतीय प्रसारण के ये 9 दशक पूरे करने वाले हैं और इसी क्रम में हमने कोशिश की है कि हम आकाशवाणी के संस्मरणों को, इसकी यात्रा को, इसके विकास क्रम को जानें और समझें और इसलिए आज हमने एक बड़ी चिरपरिचित आवाज़ को अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है। उनका नाम बताए बिना, उनका परिचय दिए बिना केवल उनकी आवाज़ से आप उनको जान जाएंगे। हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है राज्य सूचना आयुक्त मध्य प्रदेश शासन श्री राजेश भट्ट जी को। भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद और आज एक नए रूप में हमारे तमाम श्रोताओं के बीच आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपके साथ भी।
1: सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब राज्य सूचना आयुक्त का कार्यभार आप संभाल रहे हैं तो क्या वहाँ जाकर आकाशवाणी को भूल तो नहीं गए?
2: देखिए, कार्यभार किसी भी पद का हो या ना भी हो तो भी आकाशवाणी को भूलना तो अब इस जन्म में संभव नहीं है। आकाशवाणी इतना रग रग में बस गया है, एक बहुत लंबा समय, लगभग 32 वर्ष से ज़्यादा का समय आकाशवाणी में बिताया। पूरा जिसको कहना चाहिए एक लाइफ का एक इतना बड़ा अहम हिस्सा इसकी स्टूडियोज़ में गुजरा है तो ये तो भूलना बिल्कुल असंभव है।
1: अब देखिए, हम 90 वर्षों पर बात कर रहे हैं और कितने अच्छे नोट से आपने इस बातचीत की शुरुआत की है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सर कि जब आप आकाशवाणी शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है?
2: देखिए, मैं सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। एक समय वो था जब आकाशवाणी मेरे लिए सिर्फ एक नौकरी करने की जगह हुआ करती थी। 1993 में जब मैं आकाशवाणी में पहली बार आया तो उस समय एक युवा के रूप में सिर्फ चूँकि एक अच्छी नौकरी लगी है ये एक दृश्य सामने था। लेकिन जिस तरह से आकाशवाणी के साथ फिर जब मैं जुड़ा, यहाँ की कार्यप्रणाली, यहाँ के चैलेंजेस, यहाँ के अपॉर्चुनिटीज़, इन सब को अपने पूरे 32 साल के कार्यकाल में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए जब देखा, सुना, समझा तो एक चीज़ में सबसे बड़ा डिफरेंस महसूस हुआ, वो ये था कि यहाँ दिमाग से ज़्यादा दिल से काम किया जाता है।
1: वाह।
2: और यही इस संस्था का एक जिसको कहना चाहिए

0: जिसकी आत्मा है,
1: यूएसपी।
0: ऑफिसेज बहुत सारे होते हैं, कई तरह के ऑफिस है जहाँ पे काम करना ही होता है और हमें उसकी तनख्वाह मिलती है, ये एक रूटीन वर्क है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिमाग से काम नहीं करना होता है, दिल से भी काम करना होता है। 24 घंटे एक तरह से हमारा दिमाग अपने इस केंद्र के लिए कुछ कार्यक्रमों के लिए चलता रहता है। तो अब ये कहना कि ये एक नौकरी का स्थान है, अब धीरे धीरे थोड़े थोड़े दिन बाद में नौकरी एक गौण होती चली गई और ये एक मिशन, एक कार्य के रूप में सामने आने लगा। तो जब इस तरह से कोई संस्थान के साथ जुड़ जाते हैं
1: जी,
0: तो अब इसका तो जवाब सिंपल सा ये है कि वो फिर इतना घुल मिल जाता है कि आकाशवाणी का शब्द सुनते से ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना मायका है, मेरा अपना घर है, ये मेरा अपना आंगन है जिसमें हम खेले कूदे बड़े हुए। यानी इतना हमारा व्यक्तित्व आकाशवाणी के साथ इतना ज़्यादा घुल मिल जाता है। तो जिस तरह से हमें अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से मिलने पर खुशी होती है, उनके बारे में सुनने पर खुशी होती है, वैसी ही खुशी आकाशवाणी के बारे में उसका नाम मात्र सुन लेने से, उसकी ट्यून मात्र को सुन लेने से महसूस होती है
1: जी। यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि आकाशवाणी ने पिछले 9 दशकों में समाज के विभिन्न वर्गों में एक बौद्धिक समृद्धि दी है, उनके जीवन को एक बदलाव दिया है और उसे लगातार लाने की सकारात्मक दिशा में कोशिश की है। उस प्रकार के बदलाव आप किस तरह से देखते हैं और किस प्रकार के बदलाव आपने महसूस किए हैं कि लोगों के जीवन में वो आ पाए?
0: बिल्कुल, मैंने अपने पूरे आकाशवाणी के पूरे कार्यकाल के दौरान इस चीज़ को बहुत महसूस किया। और शायद जो मैं बात शुरुआत जो भी की थी ना, दिल से जुड़ा होने का कारण यही होता है कि जब हम कोई काम करते हैं और हमें उसका परिणाम जब नज़र आता है तो काम करने का उत्साह और बढ़ जाता है
1: जी।
0: हम कार्यक्रम बनाते थे उन लोगों के लिए, उन श्रोताओं के लिए, उन दूरदराज में लोगों रहने वालों के लिए जिनके पास जानकारी का अभाव होता था, सही जानकारी का अभाव होता था, समय पर दी गई जानकारी का अभाव होता था। ऐसे में हमारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम जो एक अच्छी जानकारी दे रहा है, साथ ही साथ अच्छा मनोरंजन दे रहा है, और उसके बाद जब हम उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव देखते हैं
1: जी,
0: और जब हम ये पाते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले बदलाव के पीछे हमारा कहीं ना कहीं योगदान रहा है, तो वो जो खुशी मिलती है वो ज़बरदस्त होती है। और ये हमने लगातार किया, बल्कि ये हमारा काम ही था। एक लोक प्रसारक के रूप में ऐसे तमाम विषयों को हम उठाते थे जिसकी आवश्यकता आजकल लोगों को है
1: जी।
0: हो सकता है कि इस दौड़ में हम कई बार कई अन्य केंद्रों की साथ यदि तुलना करें तो हम कहीं पिछड़े हुए नज़र आएँ, क्योंकि हमें वैसा आकर्षक नहीं है या वैसे हम खिलंदड़ापन नहीं है, वैसा खुलापन नहीं है। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत कम, और हमें लोगों को जानकारी देने की, सही जानकारी गंभीरता के साथ और सटीक जानकारी, समय पर जानकारी देने की आवश्यकता ज़्यादा नज़र आती है। तो ये जो पूरा जीवन में, लोक जीवन में परिवर्तन जब हम आकाशवाणी के माइक से देखते हैं
1: जी,
0: जब हम लोगों से बातचीत करते हैं फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, या जब हम फील्ड में जाते थे लोगों से जब बात होती थी और हमें पता चलता था कि हमारे किसी एक पर्टिकुलर कार्यक्रम की वजह से उन्हें ये जानकारी मिली और उस जानकारी मिलने की वजह से उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया, तो ये हमने लगातार देखा है कई सारे एग्जाम्पल्स है इसके। तो ये हमें उत्साहित भी करते हैं। एक उदाहरण बताऊँ तो मैं, मनोरंजन की जब बात आई थी, तो जब हम मनोरंजन करते हैं हमारा हर गाना कई बार बड़ी अच्छी जानकारियों के साथ में भी लिपटा हुआ होता है। सुनने में हो सकता है कि वो छोटी सी जानकारी हो, लेकिन हम किसी अच्छे से गीत के पहले कही गई दो पंक्तियाँ, हमारे अनाउंसर द्वारा कही गई दो पंक्तियाँ किसी के जीवन में बदलाव ला सकती है क्या? बिल्कुल ला सकती है। कई बार हमारे किसी गाने के पहले की कही गई सकारात्मक बात को सुन करके कई लोगों ने अपने उस समय आने वाले आत्महत्या के विचार को भी टाल दिया।
1: क्या बात है।
0: तो जब वो हमें ये अपना अनुभव शेयर करते हैं कि हम उस क्षण में थे, हम विचार कर रहे थे कि हम आत्महत्या कैसे करें और कर नहीं जा रहे थे, उसी समय हमें गाने के पहले की कही गई ये दो बात सुनाई दी और हमने थोड़ी देर के लिए हमने अपना मन भटका और वो थोड़ा
1: आवेग चला गया
0: और आवेग चला गया और वो आज हमारे साथ है और समाज को एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिले। तो ये तो अनुभव बहुत सारे हैं इस तरह के।
1: समाज के विभिन्न वर्गों की बात चल रही थी, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपने आकाशवाणी जगदलपुर में भी अपनी सेवाएं दी थी और ऑफ द माइक आपने हमें कई किस्से उसके बताए हैं, तो इस संदर्भ में क्या कोई किस्सा आकाशवाणी जगदलपुर से संबंधित कोई आपको याद आता है?
0: बहुत सारे अनुभव हैं वहाँ पर। जगदलपुर की आपने बात निकली कही है यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे जगदलपुर का जब नाम आता है, बस्तर का नाम आता है, तो नक्सलवाद का भी वहाँ पर नाम आता ही है। जगदलपुर शहर में तो उसका प्रभाव ना के बराबर ही था, गाँवों में जहाँ मंदिर जब जाते हैं तो वहाँ इसका प्रभाव देखने को मिलता था। लेकिन मैं एक चीज़ को ज़रूर कहना चाहूँगा कि चाहे किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो, वो नक्सलवादी हो या ना हो, सामान्य इंसान हो, कैसा भी इंसान हो, रेडियो के साथ उसका रिश्ता, दिली रिश्ता मैंने वहाँ पाया
1: जी।
0: अनुभव की बात बताऊँ तो एक बार हम लोग शाम के समय किसी ऐसी जगह पर थे जहाँ दूरस्थ थे और हम चाय पीने के लिए रुके, और हमें थोड़ा सा कहीं ऐसा महसूस हुआ कि शायद कुछ ऐसे लोग वहाँ पर हैं जो हमें वहाँ पर शायद देखना पसंद नहीं कर रहे
1: जी।
0: तो हम लोग थोड़ा सा सहमे भी थे। इस बीच में बातचीत हुई वहाँ के लोगों से, उन लोगों ने ही थोड़ा सा छेड़ी, वो जानना चाहते कि हम कहाँ से, और जैसे ही उन्हें पता चला कि हम रेडियो से हैं तो उन सब की जो बॉडी लैंग्वेज वो एकदम बदल गई, और उन्होंने बड़ी आवभगत करी और चाय पान कराया हमको वहाँ पे अपनी तरफ से कि नहीं नहीं साहब, हम तो आपको तो हम सुनते रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बीच हैं। और उन्होंने फिर हमें सलाह दी कि अब आप जो है इस रास्ते से जाइए और अब आप जल्दी जगदलपुर पहुँच जाइए बस। अब उन्होंने कारण ना हमने पूछा ना उन्होंने बताया, हम खुद समझ सकते थे। तो इस तरह से जब हमको लगा कि हाँ, एक ऐसे संस्थान में हम काम कर रहे हैं जिसके प्रति जो भी उनके दिमाग में जो भी हो, उनकी अपनी विचारधारा जो भी हो, लेकिन रेडियो के प्रति जो उनका सम्मान, उनका आदर, उनका प्यार, वो हमें महसूस हुआ।
1: और जैसा हमने देखा कि हाल ही में मध्य प्रदेश जो है वो नक्सल मुक्त क्षेत्र हो गया, और इसमें हम कह सकते हैं, आप पुष्टि कीजिएगा इस बात की, कि क्या आकाशवाणी ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
0: बिल्कुल, मैं इस चीज़ को पूरे पुरजोर ताकत के साथ ये बात कहूँगा, क्योंकि ये जो प्यार है, ये प्यार ही तो है जो कहीं ना कहीं हमारी बातों को मानने के लिए या ना भी सीधे माने तो उनके मन परिवर्तन को करने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। क्योंकि वो हमारे गाने को सुनते, हमारे लोकगीतों को सुनते थे, हमारी बातों को सुनते थे। हो सकता है कि ऊपरी तौर पे नज़र आए कि वो हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिसको बोलते हैं बिहेवियरल चेंज लाना है, मन के अंदर जो परिवर्तन लाना है, वो कहीं तो जुड़ाव महसूस करते थे ना। तो लोगों के जो मन परिवर्तन की जब बात आती है तो रेडियो का वहाँ पर ना मान करके भी आप इसको चीज़ को मानेंगे कि बहुत बड़ा रोल उनके अपने जीवन में ये रहा, क्योंकि वो परिवार के साथ इस बात को मानते थे कि रेडियो जो कहता है वो सच कहता है
1: जी।
0: तो इस बात ने भी निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में ये काम किया और निश्चित तौर पे ये छत्तीसगढ़ में भी ये काम हो रहा है।
1: तो हम ये कह सकते हैं कि रेडियो जो है वो ग्रामीण भारत की सबसे विश्वसनीय आवाज़ रही,
0: बिल्कुल,
1: और आगे भी रहेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: यहाँ अब अगला प्रश्न ये उठता है कि नौवां दशक लगभग पूर्ण होने वाला आकाशवाणी का, भारतीय प्रसारण का, और अक्टूबर में आकाशवाणी भोपाल का भी सातवां दशक पूर्ण होने वाला है। आपने सबसे लंबे समय तक अगर कहीं सेवाएं दी हैं आकाशवाणी में तो वो आकाशवाणी भोपाल में दी हैं। हम चाहेंगे कि आप यहाँ की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हैं उन्हें रेखांकित करें।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी भोपाल का नाम तो बहुत सम्मान से लिया जाता है पूरे रेडियो जगत में, क्योंकि आकाशवाणी भोपाल ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए हैं, अनेक ऐसे उपक्रम किए हैं जिन्हें स्वीकार किया गया है। मैं याद करना चाहूँगा श्री रामचरित मानस गान की, जो आज पूरे भारत के सब केंद्रों में निरंतर जारी है। निरंतर इसलिए क्योंकि जिस दिन ख़त्म होता है आखिरी एपिसोड में जब आरती होती है, उसके अगले ही दिन फिर से पहला एपिसोड शुरू हो जाता है, और ये क्रम सालों से चल रहा है। इसके पीछे यदि कोई सोच है तो वो आकाशवाणी भोपाल की ही सोच रही है। 72 के आसपास की बात होगी जब समर बहादुर सिंह जी यहाँ पर स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे, पहला विचार उनके दिमाग में आया कि इस तरह का कोई श्री रामचरित मानस गान के साथ में कोई प्रयोग किया जाए। उस समय स्टाफ आर्टिस्ट बहुत थे, सरबत हुसैन जी थे, श्री रामकृष्ण चंद्रश्री जी थे, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पर, इंद्र कुमार बासु जी, तो ये सब लोगों को उन्होंने एकत्रित किया और कहा कि हम क्यों ना मानस गान शुरू करें। तब आकाशवाणी भोपाल में पहली बार ये मानस गान शुरू हुआ और पूरा आवर्तन हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया इसको, और ये पूरे देश में उस वक्त पहला ही होता था क्योंकि इस तरह का कोई विचार था नहीं। अब जब समाप्त हुआ, इसके बाद लोगों ने इसके लिए आवाज़ उठाना शुरू करी कि ये बंद क्यों कर दिया गया, और ये आवाज़ केवल भोपाल तक नहीं रही सीमित, ये संसद में भी, तत्कालीन संसद में भी ये उठी, और तत्कालीन जो भी माननीय सूचना प्रसारण मंत्री था उन तक बात पहुंची, और उन्होंने ये निर्देश जारी किया कि जो भी आकाशवाणी भोपाल में ये मानस गान चल रहा था इसे बंद न किया जाए, चालू किया जाए।
1: यानी बीज यहाँ बोया गया,
0: बिल्कुल,
1: वृक्ष जो है पूरे भारत में लगा,
0: बिल्कुल, और रातों रात फिर से तैयारी करके उसको पुनः उसका प्रसारण आरंभ किया गया, और वहीं से फिर ये आइडिया दिल्ली में भी चला और वहाँ से फिर मुंबई को ये निर्देशित किया गया कि वो वहाँ के और भी बड़े जो संगीत कलाकार हैं, लता मंगेशकर जी है, सुरेश वाडेकर, अनूप जलोटा, इन सब के आवाज़ों में फिर जो है ये रिकॉर्ड हुआ जो पूरे भारत में आज लगातार जा रही है। तो उसका जो है जिसका

0: जैसा आपने कहा कि ये बीज इसी आकाशवाणी भोपाल में बोया गया था। एक और सीरीज को मैं याद करना चाहूँगा जिसमें मानव के इतिहास को लेकर के एक लंबा सीरियल यहाँ यहीं पर निर्मित हुआ। पहले उर्दू में हुआ वो और वो बाद में हिंदी में राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रसारण किया गया। तो वो उर्दू की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। शाकिर हुसैन जी यहाँ पर अनाउंसर हुआ करते थे, सीनियर अनाउंसर, उन्होंने किया और भी काफ़ी सारे लोग इसमें पूरे टीम में शामिल थे जिन्होंने ये मानव का इतिहास करके एक पूरा सीरीज किया
1: जी।
0: इसके अलावा हमने ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम किए जिनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली, अवार्ड्स मिले। राही मतवाले एक प्रोग्राम है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। 1997 की बात है जब नया नया मोबाइल आया था, तो मोबाइल को रेडियो के साथ प्रयोग करने का श्रेय आकाशवाणी भोपाल को ही जाता है। उस वक्त हम भी जाते उसी नोकिया कंपनी के जो बड़े वाले सेलफोन हुआ करते जिसमें एंटीना होता था वो लेकर के हम रात के 11:10 से लेकर 12:10 तक सड़कों पे जाते थे और ट्रक ड्राइवर से बात करके और उनको HIV/AIDS के लिए जागरूक करना, उनकी पसंद के गानों को सुनवाना, ये रात को एक प्रोग्राम करते थे राही मतवाले, जिसको बाद में अवार्ड मिला। उसी समय में बात पते की भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया जो HIV/AIDS के ही प्रचार प्रसार के लिए था। उसका जो सजीव फोनी प्रोग्राम था वो 15 साल तक मैंने ही लगातार किया था। वो
1: आपका नाम तो बहुत प्रचलित रहा
0: जी, उसी प्रोग्राम के साथ जुड़ गया था। तो वो उसमें हम लोग सजीव फोनी के माध्यम से HIV/AIDS की जानकारी लोगों तक, और वो ही एक प्रोग्राम ऐसा था जिसकी वजह से एकदम से लोगों के बीच में जागरूकता
1: बहुत
0: बढ़ी थी
1: जी।
0: तो वो भी एक प्रोग्राम मैं ज़रूर याद करना चाहूँगा। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम और भी हैं जो समय समय पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किए गए, जो यहाँ निर्मित किए गए
1: जी। और हम अगर आकाशवाणी भोपाल का अगर गुणगान करने लगे तो शायद ये साक्षात्कार कम
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आगे बढ़ते हैं। और जैसा आप जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है, तो जो आकाशवाणी के प्रसारक हैं और आकाशवाणी के कार्यक्रमों के जो निर्माता हैं, उन्हें आप गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आज के युग को ध्यान में रखते हुए क्या सुझाव देना चाहेंगे, खासकर तब जब हमें अपने एक लोक सेवा प्रसारक की भूमिका भी निभानी है और साथ ही बाजार में भी रहना।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने यहाँ पर प्रश्न लिया है। सोशल मीडिया, यदि हम टेक्निकल रूप से देखें तो वो मीडिया तो एक अलग मीडिया है, जिस तरह से रेडियो एक मीडिया है, टेलीविज़न एक मीडिया है, प्रिंट एक मीडिया है, ऐसा एक सोशल मीडिया है। लेकिन उसके बढ़ते प्रभाव की वजह से यदि हम देखें सिनेरियो, तो जितने भी प्रिंट मीडिया है, जितने भी रेडियो के मीडिया हैं या दूरदर्शन के मीडिया, ये सब के सब सोशल मीडिया को एक सपोर्टिव मीडिया के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में आकाशवाणी क्यों पीछे रहे
1: जी?
0: तो आकाशवाणी भी उसके तमाम जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनका उपयोग करते हुए लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, अपने संदेशों को द्विगुणित करने के लिए उसका उपयोग कर रहा है। ये अलग बात है कि हम उससे उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। हम जो टेरिस्ट्रियल जो हमारा ब्रॉडकास्ट है या हम सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम वैश्विक स्वरूप पा रहे हैं उसको, उससे हम हमारे टेरिस्ट्रियल मीडिया को नहीं रिप्लेस कर सकते और करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि सब मीडिया का अपना अपना प्रभाव है। डिजास्टर के टाइम यदि हम बात करें
1: जी,
0: तो उस समय रेडियो ही एकमात्र ऐसा मीडिया रह जाता है जो उपयोगी रह जाता है।
1: आज भी
0: क्योंकि सोशल मीडिया खत्म हो जाएगा। आज जैसे ही नेटवर्क खत्म कर दीजिए आप लोगों को, यदि किसी डिजास्टर की वजह से यदि नेटवर्क नहीं है तो फिर सोशल मीडिया खत्म हो गया।
1: चेन्नई में देखा हमने, जम्मू कश्मीर में देखा,
0: सब जगह बाढ़ आई, जैसे ही लाइटें बंद हो गई लोगों के मोबाइल्स बंद हो गए, नेटवर्क बंद हो गया। तो आप सोच लीजिए कि वो सोशल मीडिया का स्वरूप, उस समय सिर्फ रेडियो ही एकमात्र ऐसा है जिससे हम तरंग पहुंचा करके लोगों को डिजास्टर के टाइम पे मदद कर सकते हैं। इसलिए उसको रिप्लेस करना तो उचित नहीं है।
1: NDRF की गाइडलाइन में भी होता है कि सबसे पहले आप रेडियो उठा कर,
0: बिल्कुल रेडियो NDRF की गाइडलाइन में है और पाया जाता है कि वही अंत में जो है उपयोगी वही साबित होता है, चाहे वो चक्रवात के टाइम हो, चाहे भूकंप का समय हो, चाहे वो बाढ़ का समय हो, या कोई भी और नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे। तो उसको रिप्लेस नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया का उपयोग हम अपने कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं
1: जी। एक और प्रश्न उठता है जब सोशल मीडिया की बात चल रही है कि युवा पीढ़ी को हम आकाशवाणी से और ज़्यादा जोड़ें, तो उसके लिए आकाशवाणी और यहाँ के प्रसारक क्या करें?
0: देखिए युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए मैं अभी की भी बात करूं तो अभी हम लोग ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं जो फील्ड में जाकर किए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये ज़रूर उस वक्त महसूस की गई थी और वाकई में इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिला जब हमारी युवाणी की टीम कॉलेजेस में जाकर के विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो ये जबकि आकाशवाणी का काम नहीं था लेकिन ये परिवर्तन समय की आवश्यकता को देखते हुए लाया गया कि किस तरह से युवाओं को जोड़ा जाए।

0: युवाओं के साथ में जब वन टू वन जब इंटरेक्शन होता है या उनको कोई अपॉर्चुनिटी के रूप में जब रेडियो नजर आता है तो वो ज्यादा प्रभावित होता है। तो एक दिन का आरजे की जो प्रतियोगिता शुरू की गई उसने बहुत प्रभावित करा, उसने लोगों को रेडियो को पुनर्जीवित करने में बहुत बड़ा मदद करी। तो इस तरह के या जो हाल ही में भी जैसे वॉकेथन किया गया, ये भी एक बहुत अच्छा एक उपक्रम था जिससे लोगों को रेडियो के प्रति जागरूक किया गया। उसमें युवा वर्ग सबसे जुड़ाव ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि युवाओं को जोड़ने का तात्पर्य सिर्फ नई फिल्मी गाना सुना देना या उसकी पसंद का गाना सुना देना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसको वहाँ तक लेकर के भी आना होगा
1: बिल्कुल,
0: ताकि वो उस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि कई युवाओं को हो सकता है हमारे रेडियो चैनल के बारे में नहीं पता है तो उसको पहले वो जानकारी भी देना है। तो उसके लिए युवाओं के बीच जा करके या स्टूडियोज में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आमंत्रित करके जिनसे वन टू वन इंटरेक्शन जब होता है तो लोगों को हमारी हम युवाओं की आवश्यकता बन पाए
1: जी।
0: तो ये जिस दिन हो गया उस दिन समझ लीजिए कि हम युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर पा रहे हैं।
1: हम देखते हैं कि ये जो कार्यक्रम हम प्रस्तुत कर रहे हैं इस समय, इसका एक उद्देश्य ये भी है कि आकाशवाणी की महिमा को लोग समझें और आकाशवाणी से और भी जुड़ें, युवा भी जुड़ें, हर वर्ग के लोग जुड़ें, और इसलिए भी जुड़ें क्योंकि आकाशवाणी ने बहुत भूमिका निभाई है लोगों के व्यक्तित्व निर्माण में। तो हम चाहेंगे कि आप अपने उदाहरण से ये बताएं लोगों को कि आकाशवाणी व्यक्तित्व निर्माण में किस प्रकार की भूमिका निभाता है।
0: बहुत अच्छा सवाल है और ये वाकई में हमारे तमाम युवाओं को भी जोड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, क्योंकि मैं पुनः वापस 93 के उस युग में जाना चाहता हूँ जब मैंने रेडियो में एक नौकरी के रूप या नौकरी करने के ही उद्देश्य के साथ प्रवेश लिया था। एकदम युवा और बहुत ज़्यादा अभी कामकाज को ना समझने वाले एक इंसान के रूप में जब मैंने प्रवेश किया, तब से लेकर के यदि मैं 32 सालों के ऊपर यदि निगाह डालता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मुझे एक मैच्योर इंसान बनाने में, समाज के प्रति जागरूक इंसान बनाने के लिए और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का एक मादा यदि अंदर पैदा किया है तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ रेडियो को जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करें, हमारे संचार की बात करें, हमारे व्यक्तित्व की बात करें, किस तरह से हम आकर्षक हो सकते हैं, किस तरह से हम लोगों से प्रभावशाली तरीके से बात कर सकते हैं, मिलना जुलना कर सकते हैं और समाज के विभिन्न ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के क्रीमी लेयर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा उपलब्धि पाने वाले, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे वो साइंस की बात हो, चाहे वो पत्रकारिता की बात हो, कवियों की बात हो, गायक गायिकाओं की, वादकों की बात हो, सब वो सब क्रीम लोग यहाँ जहाँ मिलते हैं। तो उनके साथ उठने बैठने, उनके साथ बातचीत करना, उनको समझना और उनके उनके ज़रिए समाज को देखने का एक बहुत बड़ा नज़रिया पैदा होता है। तो वो आपके व्यक्तित्व में जिस तरह का निखार लाता है वो मैं महसूस करता हूँ और शायद मैं आज जहाँ हूँ उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हाथ रेडियो का ही रहा है, क्योंकि रेडियो ने वो मेरे जीवन में परिवर्तन किए, मेरी सोच में, मेरे व्यक्तित्व में, जिसने कि आज मुझे इतना बड़ा काम हाथ में लेने के लिए और मुझे देने का अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए मुझे तैयार किया
1: जी।
0: तो ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत बड़ा एहसास मन में होता है कि हम रेडियो में यदि गाना भी बजा रहे हैं तो हम किसी के भले के लिए बजा रहे हैं। प्रोग्राम तो छोड़ ही दीजिए, प्रोग्राम में तो सीधे से जानकारी है, पर वो जो गाना जो बजा रहे होते हैं वो गाना बजाना भी समाज सेवा है, ये एक भाव जब अंदर आ जाता है
1: बिल्कुल,
0: तो एक एक क्षण रेडियो में बिताया, एक एक क्षण जो है वो ऋणी हो जाता है या वो व्यक्ति ऋणी हो जाता है जो रेडियो में काम करता है।
1: यानी हम मनोरंजन भी कर रहे हैं तो स्वस्थ मनोरंजन कर,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। एक प्रश्न यहाँ उठता है कि आप एक संवैधानिक पद में हैं और बहुत अल्प अभी आपका समय हुआ है उस पद में काम करते हुए, लेकिन यहाँ पर जो आपके अनुभव थे काम करने के, उसने किस प्रकार से इतने अल्प समय में वहाँ आपकी मदद की?
0: जी बहुत अच्छा सवाल है और वाकई में बहुत सहायता की है ज़रूर मानना चाहूँगा। सबसे पहले जो मैं बात करूँ तो संचार कौशल जो हो जाता, संवाद कौशल जो विकसित हुआ है आकाशवाणी में रह करके, उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि इस पद पे आकर के हमें ऐसे बहुत सारे काम करने होते हैं जहाँ में हमें अपने निर्णय की क्षमता को भी देखना होता है, साथ ही साथ अपने निर्णय के प्रति या लोगों को जागरूक करने के लिए संवाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो हम बहुत बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और जो एक बात मैंने और भी करी कि एक समाज के प्रति कुछ करने का यदि मन में भाव आ जाता है तो इस पद पर बैठ करके वो भाव भी सामने हमेशा बना रहता है कि आज हम यदि हम जैसे सूचना के अधिकार अधिनियम की बात कर रहे हैं तो उस की कितनी रक्षा कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ हम शासकीय कार्यालयों के लिमिटेशंस को भी समझ पा रहे हैं, तो उसका इस तरह से कोई रास्ता निकाला जाए जिससे वो अधिकार भी सुरक्षित रहे, लोगों को अपने पूरे अधिकार का उपयोग करने का अवसर भी मिले, और साथ ही साथ जो उसकी जो मूल भावना है

0: सूचना के अधिकार अधिनियम की, वो जीवित रहते हुए इस समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने का एक प्रयास कर सके। तो ये बहुत बड़ा जो इसको कहना चाहिए मदद मिलती है आकाशवाणी से, जो कुछ सीखा उसकी वजह से वहाँ पर काम करने में आनंद भी आता है।
1: निश्चित तौर पर राजेश भट्ट जी, अगर हम आपके अनुभवों से सराबोर होने का ठान लें तो समय बहुत कम पड़ जाएगा, इतना डायनेमिक आपकी पर्सनालिटी है और इतने सारे अनुभव आपके विविध क्षेत्रों के हैं आकाशवाणी के अंदर ही। लेकिन समय अब हमें इजाज़त दे रहा है कि हम ये बात यहीं पर संपन्न करें और कभी और के लिए इन बातों को इसी छोर पर छोड़ दें।
0: बिल्कुल, आप जरूर इस बातचीत को यहाँ छोड़ रहे हैं लेकिन रेडियो को छोड़ना मेरे लिए असंभव है, इसलिए रेडियो मेरे अंदर जीवित है और मैं रेडियो के साथ हमेशा रहूंगा, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा चाहे मैं किसी भी पद पर रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, बहुत अच्छे सार्थक बातचीत के लिए,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारतीय प्रसारण के 90 वर्ष पर आकाशवाणी से जुड़े संस्मरणों पर पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी भोपाल एवं राज्य सूचना आयुक्त राजेश भट्ट से शुभम तिवारी की बातचीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण कुछ ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहला गीत हम सुनते हैं फिल्म लव आजकल से। नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की आवाज़ें हैं, इरशाद कामिल के लिखे बोल और प्रीतम का संगीत।

श्रोताओं, फिल्म जब वी मेट का गीत अभी आप सुन रहे थे मीका सिंह की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का संगीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म बचना ए हसीनों से। सुखविंदर सिंह, शेखर रवजियानी और हिमानी कपूर के स्वर हैं, अन्विता दत्त गुप्ता के लिखे बोल और विशाल शेखर का संगीत।

फिल्म जाने तो या जाने ना का गीत अभी आप सुन रहे थे। राशिद अली के स्वर, अब्बास टायरवाला के लिखे बोल और एआर रहमान का संगीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से। जयदीप सहानी की शब्द रचना, सलीम सुलेमान का संगीत और सुखविंदर सिंह के बोल।

0: प्रसून जोशी का लिखा यह गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज़ में। फिल्म का नाम था दिल्ली सिक्स और संगीत था एआर रहमान का। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हम आपसे पुनः जुड़ेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब से कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में डीके शिवकुमार को नया नेता चुना गया है। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धारमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। विधायकों ने उन्हें अपना नेता और अगला मुख्यमंत्री चुना है। श्री शिवकुमार को नेता चुने जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बैठक में पार्टी विधायकों को आधिकारिक रूप से इसकी सूचना दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांव को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांव को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार है। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपॉन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित और परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। शाम के 7:05 हुए हैं और इस समय होता है कार्यक्रम विवरण का। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण के साथ हाजिर हूं मैं आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में यानी 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं के लिए दैनिक कार्यक्रम ग्राम सभा। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण रात्रि 8 किया जाएगा और फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 8:15 पर। कार्यक्रम युवा भारती का प्रसारण रात्रि 9:30 पर किया जाएगा और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे स्मिता मोक्षी का ख्याल गायन रात्रि 10। श्रोताओं, ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल यानी रविवार 31 मई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, कल सुबह 11 आकाशवाणी से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात। सुबह की शुरुआत होगी हमारे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल के साथ 7:20 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का आनंद आप लेंगे सुबह 8:30 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत 9:15 पर आप सुनेंगे रामकिशोर यादव द्वारा गाए बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधियत जी सुरहाण। सुबह 10:05 पर सुनिए कार्यक्रम सामुदायिक गान शिक्षण पाठ और फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 10:30 पर। श्रोताओं, इन सभी कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल के अंतर्गत किया जाएगा। आपको पुनः याद दिला दें, कल सुबह 11 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम। संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिस्किया का 5वां आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। दोपहर 1 सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के योगदान से प्रसारित किए जाएंगे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए दोपहर 2 शाम 5:33, 6 और रात्रि 8:30 पर। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे बच्चों का कार्यक्रम, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की होगी। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिए 2:50 पर। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर किया जाएगा। 7:30 पर सुनिए सजीव फोरन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा। इसके अंतर्गत डॉक्टर प्रवीण कुमार जग्गा से आप बातचीत कर सकेंगे। विषय होगा आगामी खरीफ फसलों में उर्वरक प्रबंधन एवं समसामयिक कार्य। रात्रि 8 कार्यक्रम सुर्खियों में आकाशवाणी छतरपुर के योगदान के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम डगर विकास की रात्रि 8:15 पर। कार्यक्रम का विषय होगा प्रधानमंत्री ई विद्या योजना। संयोजन एवं प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की होगी। कार्यक्रम अनुगूंज का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा और रात्रि 10 आकाशवाणी दिल्ली से अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में आप सुनेंगे श्री ए यरैया का सैक्सोफोन वादन। श्रोताओं, ये थे कल यानी 31 मई 2026 रविवार को प्रसारित किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना, और मानसून ने पकड़ी रफ्तार, इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। खेत बचाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य उर्वरकों का संतुलित और उचित उपयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की सक्रिय भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ये बातें केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान कही।
3: खेत बचाओ अभियान में गांव गांव तक पहुंचने का हमारा प्रयास होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारी, हमारे वैज्ञानिक, कृषि विभाग का एक्सटेंशन का अमला, हमारे प्रगतिशील किसान, हमारे KVK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथी, ये सब के सब जुटेंगे। और इसी दौरान एक तरफ हम बेहतर और संतुलित खेती पर चर्चा करेंगे, वहीं कई योजनाओं का लाभ भी, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो हम बना के वहां देने का प्रयास करेंगे, मैकेनाइजेशन के यंत्र बटना है तो उसमें बट सकते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड अगर देना है तो उसमें दिए जा सकते हैं, तो जितनी चीजें व्यवहारिक रूप से हो सकती है उसमें देने का प्रयास करेंगे। ये खेत बचाओ अभियान 1 से लेकर 30 जून तक व्यापक पैमाने पर चलेगा।
2: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि गोमती नदी के नाम पर बने INS गोमती युद्धपोत के कारण लखनऊ का नौसेना से पुराना नाता रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस निर्माण के जरिए देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहा है।
4: 2014 तक भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वह बहुत कम हुआ करता था। हम केवल 1,000 करोड़ रुपए से भी कम के हथियार और साजो सामान दुनिया को बेच पाते थे, लेकिन आज वही बढ़कर हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के सामान दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। इस तरह के अनेक उपलब्धियां रक्षा क्षेत्र में हम लोगों ने हासिल की है। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है, और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध 1 हफ्ते में दूर कर लिया गया है। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
5: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल संघर्ष विराम जैसी स्थिति है। जरूरत पड़ी तो तीनों सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने एक मानक तय कर दिया है जो कि भारत किसी भी उकसावे पर कैसे जवाब देता है ये जाहिर कराता है। ये बातें सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड के दौरान कही। इस वर्ष रक्षा अकादमी ने कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हमारे युवा देश की आशा और सामर्थ्य हैं, उनके विचार और चरित्र ही देश का भविष्य तय करेंगे। जरूरी है कि हमारे युवा जो भी काम करें उसमें वे उत्कृष्टता और संवेदना पर विशेष बल दें। राज्यपाल आज रविन्द्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में आयोजित सिस्टेक ग्लोरी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन में संवेदना का भाव ही सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है। ममता और करुणा का मोल पैसों से कहीं ज्यादा हुआ करता है, इसलिए भावी जीवन में सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए कभी भी उन लोगों को नहीं भूलें जिन्होंने आपका सहयोग किया है। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 में उत्साहजनक बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में तीव्र प्रगति के आंकड़े बताए गए हैं। ये सर्वेक्षण वर्ष 2023-24 के दौरान किया गया, जिसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवार शामिल हुए। सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार भारत में संस्थागत प्रसव वर्ष 2019 से वर्ष 2021 में 88.6% से बढ़कर 2023-24 में 90.6% हो गए हैं। बात मौसम की करते हैं। बारिश की आशा लगाए नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। मानसून ने एक बार फिर से गति पकड़ ली है। अगले 4 से 5 दिन के भीतर केरलम और तमिलनाडु में मानसून के पहुंचने के लिए वातावरण की परिस्थितियां तेजी से अनुकूल हो रही हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तथा लक्षद्वीप और कन्याकुमारी क्षेत्र के कुछ इलाकों में मानसून आगे बढ़ रहा है। इधर नौतपा के बीच मध्य प्रदेश के मौसम ने अचानक करवट बदली है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है, जबकि शेष इलाकों में खासी गर्मी पड़ रही है। प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिलों में तो रातें भी बहुत गर्म रही हैं। इस दौरान नरसिंहपुर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी क्रम में राजगढ़ में 42, खरगोन में 41.6, भोपाल में 40 और इंदौर में 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, दतिया, भिंड, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा आधे से अधिक प्रदेश में आंधी तूफान की परिस्थिति भी निर्मित हो सकती है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। मंडला जिले में आज वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों के बाहर वन्य जीव अनुश्रवण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कान्हा टाइगर रिजर्व में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधायक बैतूल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आज नगर पालिका बैतूल अंतर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। शहडोल जिले में इस साल समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी लक्ष्य से अधिक हुई है। 25,000 मीट्रिक गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि इस साल 29,244 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। सीहोर जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत अब तक 2,555 चेक डैम निर्माण, 10 तालाब निर्माण, 17 सोसर निर्माण और 4 तालाब गहरीकरण जैसे कार्य लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण किए गए हैं। नीमच जिला चिकित्सालय के रेडक्रॉस सभागार में वृद्धजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। झाबुआ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस बघेल ने आज जिला अस्पताल झाबुआ के ब्लड स्टोरेज सेंटर का निरीक्षण किया और आमजन को रक्तदान के महत्व की जानकारी दी। छिंदवाड़ा जिले में स्कूल छोड़ चुके या नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे। खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड खंडवा द्वारा वर्ष 2026-27 में कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिले के बेरोजगार युवक और युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हार्निया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा समय पर उपचार के लिए इंदौर में 2 दिवसीय निःशुल्क हार्निया जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। खेत बचाओ अभियान युद्ध स्तर पर किया जाएगा संचालित, कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है सेना और मानसून ने पकड़ी है रफ्तार। इधर प्रदेश के मौसम ने बदली करवट। इस बुलेटिन में इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम चौपाल और उसके साथ साथ नन्हे मुन्ने कार्यक्रम फुलबगिया का आनंद उठाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं चौपाल पर।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भैया हरन को भौजी बिन्ना हरन को आरती की राम राम। और संगे संगे जो आज अपने नौनिहाल बैठे हैं उन्हें भी हमारी तरफ से खूब ही लाड़ दुलार। तो नन्हे मुन्नों से तो बस हम यही कहें कि अबे बखत है अपने किसान भैया हरन से भौजी बिन्ना हरन से चर्चा करवे को, तो तनक पहले उनसे बातें कर लें और बाकी बात फिर आपसे कार्यक्रम फुलबगिया में रूबरू हुए। तो सबसे पहले भैया रो जैसे हमेशा की तरह हम आपसे आपके हालचाल लेते हैं कि कैसे हालचाल हैं आप सबके। तो भैया देखो तुम्हारे जो इतने बैठे हो आराम से भौन में गांठे नहीं हैं, सूर्य देख के तो यही लग रहा है कि मौसम ने जो है चेहरा पे तनक सी हवा और पानी की बौछार कर दी है। सुबह से तनक राहत की सांस है ना, नहीं तो कहा हतो कि इतने गर्मी हती कि घर और बाहर तनक भी चैन नहीं मिल रहा हतो। तो भैया चलो कछु तो ईश्वर ने अपनी सुनी तनक राहत तो पहुंचाई। तो अब भैया जो बताओ कि कैसे का दिना कट रहे हैं। हम सब जानते हैं कि देखो आप और अपने हाथ पे हाथ धरे तो बैठे नहीं हुई हो, है ना भाई, कछु बच्चू काम खेत में लग कर ही आते हैं। अब जैसे देखो खेतन में गहरी जुताई आप और ने कर दी हुई है और अब कछु खाली खेत पड़े हैं। तो देखो का है कि कछु कछु भैया हारे जिनके खेत खाली हैं उनने का करो है कि मूंग उड़द मक्का जायद की फसल अपने खेतन में बुई हुई है। तो हमारे भैया हारे उतने बा में बिजी हुई हैं, बा काम में बिजी हुई हैं। लेकिन जिन भैया हारन के खेत खाली हैं और कछु उनके पास काम नहीं है, तो हम तो जई के हैं कि काहे हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। अरे आपके हाथ में हुनर है और केवल भैया हारे ही नहीं, हम तो जो कहें कि हमारी जो भौजी बिन्ना हारे हैं वे भी बड़ी कुशल हैं हाथ की बने सामान बनावे में, है ना। फिर चाहे वो कोनो काम हो, कढ़ाई सिलाई बुनाई को काम हो, अचार बड़ी पापड़ को जो लकड़ी है, पत्थर माटी के खिलौने हो, कछु भी काम की बात कर लो, हमारे चाहे भैया हारे हों चाहे हमारी भौजी बिन्ना हारे हों, सब हाथ के बने सामान में उन सब की मास्टरी है और जो हम जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भैया हारो समय को बर्बाद नहीं करने, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठने हैं, बल्कि हाथ के बने सामान को बाजार में बेच के, हाट में बेच के हम अपने पैरन पे खड़े हो सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं, है ना, और अपने समय को सदुपयोग कर सकते हैं। तो भैया रो आप और अन्य स्टार्टअप इंडिया स्टैंडअप इंडिया को नाम तो सुने ही हुए, जो दो योजनाओं को नाम तो आप और अन्य सुने ही हुई है। अब देखो ना कि अपन कहते हैं ना कि हमें कछु काम नहीं करने हैं, बस आराम करने हैं, मोबाइल चलाने हैं और अपना टाइम बर्बाद करने हैं। तो भैया सांची कहे तो मोबाइल चलावे में भी कछु बुराई नहीं है, लेकिन बा को सदुपयोग करो, बासे नई नई चीज़ें सीखो, नई नई जानकारी लो और फिर सीखी चीज़न को अप जो है अपनी आमदनी को जरिया बना लो। तो भैया हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप इंडिया की, तो जी को मतलब जो ही है कि जब दिमाग में होए कछु नव आइडिया तो बा आइडिया को अपन उद्योग को रूप दे सकते हैं। अब जी को अपन ऐसे समझते हैं कि को ऐसो नवो अनोखो काम जी को कभों को ने ना करो होए, या फिर अपना जो पुरानो काम है वो बिल्कुल नए और आधुनिक तरीके से अपन बाय करें। तो यदि तुम्हारे और दिमाग में कछु नव आइडिया आ रहो होए, कछु घूम रहो हो, तो भैया फिर चाहे वो घरेलू उत्पादन से जुड़ो आइडिया हो, खेती किसानी से जुड़ो कछु काम हो, है ना, तो भैया जैसे आप नई तकनीकें होते हैं सामान अपन बाजार में ऑनलाइन बेच सकते हैं, को नई मशीन बनावो, चाहे हमें कई भैया नई नई मशीन भी बना लेते हैं, तो भैया इन सब काम में शासन तुम्हारी मदद करे, है ना। शासन भैया जय कहते हैं कि तुम्हारे नौकरी मांगन वाले ना बनो बल्कि नौकरी देवे वाले बनो। तो जब तुम अपना काम शुरू करबो चाहत तो भैया शासन तुम्हारी मदद करे और तुम्हें जी के लाने शुरुआती पैसा और जो अपन लोन कहते हैं ना बाकी व्यवस्था करे, और फिर जब रजिस्ट्रेशन आप कराओ तो भैया देखो मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। अब जी में आपको दफ्तर के चक्कर भी निकाटन पर है, तो जब योजना के अंतर्गत भैया शुरू के साल में आपके टैक्स में भी बड़ी बचत सी होते है। तो भैया हम तो यही कहें कि जो स्टार्टअप इंडिया को काम आप शुरू कर सके, तो अब जैसे अपन बात करें कि स्टैंडअप इंडिया के, तो जी को सीधो जैसो नाम वैसो काम, यानी कि अपने पैरन पे खड़े हो जाओ। तो भैया हरो जय योजना समाज के उन भैया बहनन के लाने हैं जो बिजनेस व्यापार में छूट गए हैं या कछु नव काम शुरू करवो चाह रहे हैं, या फिर अपने अनुसूचित जाति जनजाति के भैया बहन हैं, या अपनी जो महिला उद्यमी बहनें हैं वे जी को लाभ उठा सकते हैं। और जी में आपको 10 लाख से 1 करोड़ तक को बैंक से लोन भी मिल जाते हैं, लेकिन भैया शर्त यही है कि काम आपको बिल्कुल नव होना चाहिए और अपनों काम शुरू जो आप कर रहे तो हमें 4 जनन की हिस्सेदारी हो और जी में कम से कम 51% की हिस्सेदारी अपनी जोन बिन्ना भौजी हरे होते ना, या फिर अपने SC ST भैया भरे भैया बहन हैं उनके नाम पे 51% की हिस्सेदारी होनी चाहिए।
तो भैया देखी जाए इन दोनों योजनाओं में स्टार्टअप इंडिया योजना जो है वो सबके लाने हैं, और जिनके पास कछु नव अनोखो आइडिया है तो स्टैंडअप इंडिया उनके लाने, और संगे संगे अपने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के लाने स्टैंडअप इंडिया योजना है। तो भैया आप अपने क्षेत्र में कछु भी काम शुरू कर सकते हो, आप ऑर्गेनिक खेती है, डेयरी है, या हाथ के बने कई तरह के, चाहे मिट्टी हो, चाहे पीतल हो, चाहे पत्थर के हों, शिल्पकारी है, खिलौना है ना, या फिर अपनी जो भिन्ना भौजी हरे हैं बिस सिलाई की कछु बड़ी यूनिट डाल सकते हैं, खान पियन से जुड़े सामान को अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं, कौन फैक्ट्री डाल सकते हैं। तो भैया वो जमानो गौ जब बिना रुपया के धंधा रुक जाता, तो अब तो अगर तुम्हारी सोच में भैया अरे दम है, तुम्हारे पास नव आइडिया है, तो हम तो यही कहें बस उठो और जा योजनाओं से जुड़ जाओ और अपनों काम शुरू कर दो और अपनों गांव देश को नाम रोशन करो। और भैया अब पशुधन की भी चर्चा हो जाए तो देखो गर्मी बहुत है, अपने पशुधन को भी जा गर्मी से बचाने हैं तो जी के लाने भैया देखो उन्हें अपन लू से बचाएं, लू से बचावे के लाने उन्हें अपन ठंडे स्थान पे हवादार स्थान पे उन्हें बांध के रखें, और जो उनको जो शेड है वो चारों तरफ से अपन जो जूट की बोरी है या टाट है या पर्दा लटका के ऊखों अपन पानी से गीलो रखें और उतें हो सके तो पंखा लगा दें, और दिन में उन्हें 3-4 बार उन्हें ठंडो पानी पिवाएं, है ना। और भैया देखो कहा है कि पशुधन जो अपने हैं उन्हें कम से कम 80 से 100 लीटर तक को पानी की ज़रूरत होते है ना, और कोशिश करें दोपहरिया में उनको कछु खावे को ना दें, उन्हें सुबह और संजा बिरिया हरो चारा है और जो पाचन से भरपूर जो दाने हों उन्हें भोजन दें, और संगे संगे दिन में 2-3 बार नभावें जिसे उनके शरीर को तापमान नियंत्रित रहे। और भैया देखो कहा है कि पानी में अपन उनके पानी में तनक नमक और तनक गुड़ और थोड़ा सा मीठा सोडा मिला के अगर पिलाएं तो उनके शरीर में पानी और खनिज तत्व की कमी जो है वो जो ऊखों वो रोक है। और भैया देखो अगर अब अपन सोचें कि भैया अपने पशुधन को लू कैसे लगे, कैसे अपन को पता पड़े, तो भैया हम तो यही कहें कि देखो अपन उन्हें ऐसे देख ले कि अगर उनको मान लो मुंह खुलो है, जीभ बाहर निकल रही है, बेहाँफ रहे हैं, मुंह से ज़्यादा लार निकल रही है, झाग निकल रहा है, आँखें उनकी लाल हो रही हैं, तो भैया समझ जाओ कि उन्हें लू लगी है। तो देरी नहीं करने उन्हें सीधे अपन सबसे पहले तो घर में कछु प्राथमिक चिकित्सा दे दें कि उन्हें तनक ठंडी हवादार स्थान पर लिटाएं और फिर उनके शरीर पर पानी डालें, बर्फ़ के पानी की ठंडे पानी की उन पर पट्टी रखें और पास के पशु चिकित्सालय में जाके पशु चिकित्सक को दिखाएं। काहे से भैया तनक सी असावधानी है ना, अगर है अगर अपन ने जरा सी भी लापरवाही कर दी तो अपन अपने पशुधन को खो दें, तो भैया हमें अच्छे से उनकी देखभाल करने हैं और अच्छे से करी उचित तरीका से करी देखभाल से भैया देखो हम अपने पशु को स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। और भैया मालूम है आज भी 30 मई को एक खास दिन भी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है, तो जीखो मनावे के पीछे को उद्देश्य भी भैया जो ही है कि आलू जो है वो खाद्य सुरक्षा पोषण और हमारे जो किसान भैया हैं वे उनकी आजीविका में जो आलू को बहुत ही महत्व है। तो भैया हम सभी जानते हैं कि आलू पोषण को खजाना है, जी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जी में विटामिन होते हैं, विटामिन सी होते हैं, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, जो ऊर्जा और पोषण को बड़ा अच्छा माध्यम होते हैं। तो भैया देखो अब अपन अपनी चर्चा को देते हैं विराम, काहे से भैया 7:30 हो गए हैं और आज शनिवार है, तो आज अपने नन्हे मुन्ने कार्यक्रम फुलबगिया को इंतज़ार कर रहे हैं, तो देखो उन्हें देर ना करात भाई, चलते हैं फुलबगिया की ओर, लेकिन वहाँ से पहले सुन लेते हैं ये विज्ञापन।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

तो सभी बेटा हरन को सभी बिटिया हरन को आरती दीदी की तरफ से खूब ही लाड़ दुलार। और बताओ का चल रो है। तो देखो आज अपन एक बड़ी मज़ेदार बात करें हैं। अच्छा पहले एक बात बताओ, तुम सबके दोस्त कौन कौन हैं? अरे वो तो ठीक है, पर पहले बताओ कि तुम्हारो ऐसा कौन सो दोस्त है जो कभी कछु मांगत नहीं है, बस देत रहते। अब देखो ज़्यादा सोचवे की जरूरत नहीं है, हम बताए देते हैं। अरे बेटा हरो, वो जो अपनो सबसे अच्छो सखा है वो है अपने पेड़ पौधा, है ना। और जो पेड़ जो हैं वे अपने सच्चे मित्र होते, काहे से जो अपन से कछु नहीं मांगते ही, बस अपन को देते ही रहते, है ना। अब देखो जब बताओ कि पेड़ अपने लाने का का करते। भाई देखो अपन को सांस लेबे के लाने बढ़िया साफ ऑक्सीजन देते हैं, शुद्ध प्राणवायु देते हैं, अपन का मीठे फल देते हैं, आम जामुन बेर, है ना, अमरूद, सभी तो अपन को इसे मिलते हैं। और आज तो तुम्हारे अबे तो देखो खूब आम के जो व्यंजन बना बना के खा रहे हुए, काहे से खूब आम जा समय आ रहा है। और संगे संगे देखो ठंडी ठंडी छाँव, जब घाम है धूप लगाते हैं तो जो शीतल छाँव जो होती है तो जो अपन खा सुस्तावे की जगह देते हैं। संगे संगे अपने जो पशु पक्षी हैं उनको चिड़िया चिरौटन को सबको जो घर होते हैं, है ना, ये सभी तो पेड़न पे अपनों घोंसला बनाते। तो बच्चों देखो आज अपनों जो मित्र यानी अपना जो पेड़ बड़ा उदास है, बड़ो परेशान है, काहे से ऊपे बड़ी भारी आफत सी आ गई है। अब आफत का आ गई है बेटा हरों कि देखो का है कि अपन और का करते, मतलब किलाने मकान और सड़क

पा है, पेड़ नहीं तो बेटा हरो पानी नहीं, और पानी नहीं तो कच्छू भी नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब अपने सखा पे मुसीबत आते है, जब सखा मुसीबत में होते हैं, तो मदद कौन करे? हम औरन कोई तो मदद करने पर है। बोलो, अगर हम औरें अपने पेड़ पौधन को सच्चो सखा मानत है, तो आज से अपन तीन बातें ठान लें। पहले तो ये कि जब अपन अपनों जन्मदिन मनाएं, अपने सखा को जन्मदिन मनाएं, है ना, अपने दोस्तन को जन्मदिन मनाते, तो बाकी लाने कछु गिफ्ट ले जाते, तो भाई गिफ्ट में अपन क्या करें, छोटो सो पौधा बाय गिफ्ट में दें, है ना, उपहार में दें। और दूसरों जब पौधा जो लगे हैं उनको रोज़ रोज़ तनक तनक पानी देते रहें, ऊखी रखवारी करें। और जीवन में बेटा हरो, अपन और कम से कम 10 पेड़ जरूर लगाएं, और 10 पेड़ ऐसे लगाएं कि उनकी अपन को अच्छे से देखभाल करने है, ऐसी देखभाल कि जब तक वो पनप नहीं जाए, है ना। और तीसरा एक बात और कि कहूँ भी हरो भरो पेड़ हो तो ऊखो ना तो खुद काटे और ना कौनों को काटवे दे। तो बेटा हरो, हम तो यही के हैं, पेड़ लगाओ, पानी पाओ और अपने सखा को बचाओ, है ना। तो आज देखो अपनी चर्चा अपन आगे भी करत रहे, अब मनोरंजन को वक्त है, तो चलो हम आपको सुनवाते हैं जे 900 गीत।

0: बेटा हरो, जो गीत आपको कैसो लगो, हमें उम्मीद है कि जो गीत आप सबको खूब ही अच्छो लगो हुए। तो अब अपन बात करते हैं जैव विविधता की। बेटा हरो, जैव विविधता का होता है, सबसे पहले तो अपन ये समझे। तो देखो, जैव विविधता जो है अपनी धरती पे खूब ही अलग अलग तरीका के जीव जंतु, पेड़ पौधा, चिड़ैया, चुनमुन, कीड़ा मकौड़ा, सब जो हैं, सबकी गिनती और उनकी अलग अलग वेराइटी। तो अपन सरल भाषा में कहें तो अपन जो है कि जे अपनो जैव परिवार है जे सभी। तो आज इन जैव परिवार पे देखो कितनी परेशानी सी आ गई है ना। काहे कि अपन और हैं अपने लालच में जंगल काट रहे हैं, अंधाधुंध केमिकल कीटनाशक दवाई खेतन में डाल रहे हैं। इसे कहा हो रहा हो कि जो अपने कीट मित्र हैं, कैचुआ है, मधुमक्खी है और कई किस्म की चिड़ैया भी गायब होती जा रही हैं। तो भैया, हम तो कहते ना, अपन सभी जो है शुरू से ही प्रकृति को पूजत रहे हैं, है ना। आम, पीपल, तुलसी, है ना, तो तुलसी पे, पीपल पे, बरगद पे जल चढ़ाते हैं। तो इको मतलब यही है कि हम अपने फ़ायदे के लाने प्रकृति को काहे नुकसान पहुंचा रहे, है ना। हमें इको नुकसान नहीं पहुंचाने, अपने जीव जंतुओं को बचा के रखने। तो बेटा हरो, जब जीव जैव विविधता का है और जैव विविधता से पर्यावरण को अपन कैसे संरक्षित कर सकते हैं, आइए जैव विषय पे आज अपन को जानकारी देवे जा रही हैं डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव दीदी। तो चलते दीदी के पास और लेते हैं जानकारी।
1: बच्चों, आज की वार्ता का एक बहुत ही अच्छा शीर्षक है, जैव विविधता से पर्यावरण संरक्षण। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता से हमारा आशय होता है जीवन के सभी रूपों की विभिन्नता, चाहे वो पादप जगत की हो या प्राणी जगत की, हम इसे ही जैव विविधता कहते हैं। और इसी के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि हमारी पृथ्वी पर जीवन लगभग 4 अरब साल पुराना है। पेड़ों की बेहिसाब कटाई और प्रदूषण जैसी समस्याओं के कारण पौधों और जीवों की अनेक प्रजातियां आज विलुप्त होती जा रही हैं, और बहुत सी ऐसी हैं जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इसी वजह से दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया है। अतः 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अब जानते ही हो कि इस धरती पर अनेक इकोसिस्टम मौजूद हैं जिनका निर्माण किससे होता है, पौधों और जीवों की अलग अलग जातियों से। और इन्हीं इकोसिस्टम पर हमारी पूरी मानव जाति का अस्तित्व निर्भर करता है। तो ये सब बताया मैंने आपको जैव विविधता के बारे में। पर हम जैव विविधता की इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, आखिर क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, जैव विविधता हमारे लिए इतने मायने क्यों रखती है। पूरे विश्व में खाए जाने वाले भोजन का लगभग 80% पौधों की अलग अलग जातियों और जीवों से मिलता है। लगभग 4000 प्रजातियां तो ऐसी हैं जिनका दैनिक उपभोग होता है ना। आश्चर्य की बात, क्या आप जानते थे ये सब? अच्छा, दूसरा, हम सब जानते हैं दवाइयों के बारे में। दवाइयां कहाँ से मिलती हैं? दवाइयों की भी बहुत बड़ी मात्रा हमें जैविक स्रोतों से ही मिलती है। 60% से ज़्यादा दवाइयाँ हमें पौधों और सूक्ष्म जीवों से, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से आप जानते हो। हमारे देश में आयुर्वेदिक दवाइयों का बहुत उपयोग होता है। ये सब किससे मिलती हैं? जड़ी बूटियाँ आखिर कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये सब पेड़ पौधों से। तीसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है औद्योगिक सामग्री। औद्योगिक सामग्री सीधे हमें जैविक संसाधनों से प्राप्त होती है। औद्योगिक सामग्री कौन सी होगी? रबर, तेल, रेजिन, रंग, फाइबर, जो कि हमारे दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, ये सभी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। और इसके अलावा जैव विविधता के और भी कई फायदे हैं। वो क्या हैं? पृथ्वी के वायुमंडल का नवीनीकरण। आप जानते हो हमारे जीवन की प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऑक्सीजन जितनी अधिक होगी वो हमारे लिए, हमारे पेड़ पौधों के लिए उतनी ही स्वास्थ्यवर्धक होगा। दूसरा, प्रदूषण को कम करना, ये भी काम जैव विविधता के द्वारा होता है। मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखना अति आवश्यक। अगर उपजाऊपन खत्म होता है तो इसका सीधा असर किस पर होगा? फसलों का उत्पादन कम हो जाएगा। बच्चों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आहार, ऊर्जा स्रोत, दवाएं, औद्योगिक सामान आदि सभी कुछ हमें विभिन्न इको तंत्रों से और पृथ्वी के हर कोने से मिलता है। तो ये सब था जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है, ये सभी चीज़ें आपने समझी हैं अच्छे से। अच्छा, एक बात और है कि अब पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण आखिर है क्या? बच्चों, आप सब जानते ही हो कि इस धरती पर होने वाले सभी कार्य एक निश्चित क्रम में होते हैं, लेकिन ये क्रम जब टूटता है या इसमें प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है और इसका परिणाम मालूम है क्या होता है? बाढ़, सूखा, प्रदूषण जैसी समस्याएं। आप सभी जानते हैं कि पेड़ों की कटाई से इस धरती का तापमान बढ़ रहा है, मौसम में बदलाव आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द एक बड़ा ही कॉमन शब्द है, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। वो क्या है? धरती का तापमान बढ़ रहा है और इस बदलाव से जीवों और पौधों की प्रजातियों में कमी आ रही है। उनमें कमी आने से क्या हो रहा है कि जो अलग अलग इकोसिस्टम है उनमें भी परिवर्तन आता जा रहा है। इस सब का परिणाम ये हो रहा है कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है। इन सभी प्रदूषणों का परिणाम क्या है? मनुष्यों में होने वाली गंभीर बीमारियाँ। पेड़ जितने ज़्यादा होंगे वो ध्वनि के प्रसार को कम करते हैं, और पेड़ों का कम होना मतलब ध्वनि का फैलाव ज़्यादा होना, इससे कान संबंधी गंभीर बीमारियाँ होती हैं। इसी तरह पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होने से मिट्टी का कटाव जो है बढ़ता जा रहा है। मिट्टी का कटाव बढ़ेगा इसका मतलब मिट्टी में जो पानी को धारण करने की क्षमता है वो बहुत कम होती जाएगी। वर्षा का पानी आखिर मिट्टी में ही तो समाता है, आगे के लिए हमें काम में आता है। वातावरण में क्या हो रहा है? कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है जिससे कई गंभीर बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। धरती का तापमान बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ आपने और भी सुना होगा ग्लेशियर्स के बारे में। ग्लेशियर्स की बर्फ पिघल रही है, उसका नतीजा यह है कि समुद्रों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और समुद्र के किनारे बसे शहर हैं उनके लिए खतरा हो रहा है। समुद्रों का फैलाव हो रहा है, जलवायु परिवर्तन होता जा रहा है, अनाज का उत्पादन घट रहा है। तो ये सभी समस्याएं जो हैं किसका परिणाम है? ये प्रदूषण का, वनों की अंधाधुंध कटाई का। इसी तरह हम अगर अपने जल के साधनों पर नज़र डालें तो आज हमारी देश की जो अधिकांश नदियां हैं वो नाले में तब्दील हो गई हैं। नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। इसके कारण पता है आपको क्या क्या है? उद्योगों से निकलने वाला जो दूषित जल है वो सीधा नदियों में मिला दिया जाता है, और हमारे द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक बैग्स हैं वो नदियों के पानी में मिला दिए जाते हैं। हम उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि हम ये सब चीज़ें हम कहाँ डाल रहे हैं। हमारे देश में नदियों की बहुत पूजा की जाती है, और लोग पूजा करते समय जिस सामग्री का उपयोग करते हैं वो सभी नदियों के जल में ही प्रवाहित कर दिए जाते हैं, पर उसका नतीजा कोई नहीं सोचता कि इन सब चीज़ों से होता क्या है। नदियों का जल प्रदूषित होता है। ये सब हमको ही तो ध्यान रखना होगा कि हम अपने जो जीवन के स्रोत हैं, हमारी जो प्राणवायु है, जल है, जल के बगैर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, इन सभी चीज़ों को हम स्वच्छ रखें। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है हमारे जल, भोजन, स्वस्थ हवा की आवश्यकता भी बढ़ रही है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पर्यावरण

0: को बचाने की भरपूर कोशिश करें। अब अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं। अच्छा, सिर्फ पेड़ों को लगाकर उन्हें छोड़ ना दें, समय समय पर उनकी देखभाल भी करें। पानी का अनावश्यक दुरुपयोग ना करें। जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि ब्रश करते समय लगातार नल को चलाए रखना। आपने कभी सोचा है इसका नतीजा क्या होता है? पानी का कितना दुरुपयोग हो रहा है, वो पानी और भी लोगों के काम आ सकता है। महानगरों में शॉवर से देर तक नहाने की एक आदत होती है लोगों में, ये भी एक गलत आदत है। प्लास्टिक के थैलों का उपयोग, बच्चों हमें इसका उपयोग पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। आपने देखा होगा कि कचड़े के ढेर में जब जानवर वहाँ अपना भोजन तलाशते हैं तो उसमें वो इन प्लास्टिक बैग्स को भी साथ में खा जाते हैं। नतीजा क्या होता है? उन बेजुबान जानवरों की मृत्यु। तो क्या ऐसा करना ठीक है? क्या हम इन थैलों का उपयोग बंद नहीं कर सकते? शुरुआत हमको करनी होगी, और ये पहल बच्चों हम कर सकते हैं, आप सभी कर सकते हैं इस चीज़ को। जब भी बाजार जाएं तो घर से ही कपड़े के बैग्स लेकर जाएं। पॉलीथीन का उपयोग पूरी तरह से बंद होना चाहिए। घरों से निकलने वाले कचरे को भी हम खुले में ना फेंकें। अपने घर के पास एक गड्ढा खोदें, उस गड्ढे में इन सभी को इकट्ठा करें। इससे क्या बन सकता है आप जानते हैं? बहुत ही ज़रूरी खाद बन जाती है, किसान भाई जो हैं उसको अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है, जो गांव या शहर नदियों के किनारे पर बसे होते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए कि घर से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है वो कभी सीधा नदियों में ना मिले। नदियों में मौजूद जीवों का शिकार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जल को शुद्ध करने में मदद करते हैं। अंत में सभी बच्चों से मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बच्चों, अपने तथा अपने मित्रों के जन्मदिन पर आप जो उपहार देते हैं, उपहार के रूप में पौधे देने और लगाने की एक स्वस्थ परंपरा हमें शुरू करना चाहिए। शुरुआत हमको करनी ही होगी अपने सुखद और स्वस्थ भविष्य के लिए, तभी तो हम जैव विविधता के द्वारा अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं।
1: तो बच्चों देखो, अभी अपन ने जैव विविधता से पर्यावरण संरक्षण जैव विषय पर डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव दीदी से कितने एक नौनी जानकारी ली है ना। तो बेटा हरों, हम तो यही कहें कि जैसे दीदी ने अपन का बताई कि अपन अपने पर्यावरण को संरक्षित करें, अपने आसपास पेड़ पौधा लगाएं, और जन्मदिन पे उपहार में एक पौधा जरूर दें, और अगर अपन को जो पौधा मिल रहा है तो उसकी देखभाल भी अपन ऐसे करें जैसे अपन छोटे बच्चन की देखभाल करते हैं ना। ऊखों अच्छे से सवारें, जंगली जानवरन से बचाएं है ना, तो ऊख के चारों तरफ कांटेदार बाड़ लगा दो, तब तक देखभाल करें जब तक वो अच्छे से पनप नहीं जाए। तो इस तरीके से अपन अपने आसपास के पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित कर सकते। और बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पंचतंत्र की एक कहानी, कटी पूंछ। तो चलो आप और तैयार हो जाओ दीदी से कहानी सुनने के लाने। बच्चों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। तो बहुत चालाक थी और कभों कभों तो दूसरों को बहुत परेशान करती थी। अब का भाव कि एक दिन बाकी पूंछ जो है, बड़ी सी पूंछ जो होती वो झाड़ी में फंस गई। अब्बा ने खूब जोर लगाओ, अब जोर के कारण कब हो कि जो उन पूंछ को एक हिस्सा वो कट गया। अब तो बेचारी बड़ी दुखी कि और सोचने लगी कि अब वो कैसे अब दूसरी और लोमड़ी हैं उनके सामने जाए। फिर बाने कहते हैं ना, लोमड़ी तो बहुत चालाक होते हैं है ना, दिमाग उस खूब होते बाके। तो बाने एक तरकीब सोची और उसने अपनी सब जितनी भी अपनी जो लोमड़ी सखी हती उन सबको बुलाओ, इकट्ठो करो और बोली, सबसे बोली, अब लोमड़ी सखी, अपने भैया बहन जो भी हते लोमड़ी, सबको बुलाओ, उनसे कहो, देखो भाई बहनों, पूंछ तो मेरी बेकार की चीज़ है ना, और मैंने अपनी पूंछ जानबूझ के कटवाई है ताकि दौड़वे में आसानी होए। अब लोमड़ी तो चालाक होते हैं, तो कछु लोमड़ी तो बाकी बात मान गई, लेकिन एक चालाक लोमड़ी समझ गई कि ये झूठ बोल रही है। तो बेटा हरो, जब कहानी से हमें यही सीख मिलत है कि हमें अपनी कमियों को छुपावे के लाने कभों भी कौनों के सामने झूठ नहीं बोलन चाहिए, और हमेशा सच बोलें है ना। अब देखो, लोमड़ी ने झूठ बोलो तो झूठ से उसकी झूठ पकड़ोगा कि नहीं पकड़ोगा? तो जय मारे, जो झूठ होता है बेटा हरो, वो बहुत गलत चीज़ है, तो हमेशा सच बोले। और आइए चलते चलते एक गीत और हो जाए, तो चलो हम और आप मिलके सुनते हैं ये गीत।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना, नहीं जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं।

कभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया।
1: तो बेटा हरो अब जावे की बेरा हो रही है, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। सभी नन्हे मुन्नों को आरती दीदी की तरफ से खूब ही लाड़ दुलार। तो किसान भैयारो अब आपसे भी आज्ञा चाहते हैं, विदा लेते हैं। तो सभी भैया हरन को आरती की तरफ से राम राम, जय जवान जय किसान।

0: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण अभी किया जा रहा था। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही है सोनू सूद।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 कल जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं में प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। क्या है इस सर्वेक्षण का महत्व, क्या है इसके प्रमुख पहलू और क्या है आगे की संभावनाएं, इन सब पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुश्री आराधना पटनायक। आराधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में।
3: सभी को मेरा नमस्कार।
2: जी आराधना जी, ये जो सर्वेक्षण जारी हुआ है, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या NFHS कहा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है और जो NFHS 6/2023-24 के आंकड़ों के आधार पर जो जारी हुआ है कल, उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या है।
3: ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण अभी जारी हुआ है, ये 2023-24 के लिए जारी हुआ है, ये 6th सर्वेक्षण है। ये सर्वेक्षण लगभग 6.79 लाख घरों को कवर किया है और इसमें लगभग 7.16 लाख महिलाएं और लगभग 1 लाख पुरुषों को कवर किया गया है। ये पूरे देश में ये सर्वेक्षण हुआ है और इस सर्वेक्षण के माध्यम से मुख्य रूप से हम कई सारे स्वास्थ्य के जो मानक है उनमें क्या प्रगति हुई है, उस पर हम मुख्य रूप से ये सर्वेक्षण करते हैं। चाहे स्वास्थ्य की हम बात करें, चाहे पोषण की बात करें, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, परिवार नियोजन की बात करें, बच्चों के स्वास्थ्य की बात करें, तो ये सभी चीजें इस सर्वेक्षण में कवर करते हैं। इस बार जो ये सर्वेक्षण हुआ है, तो इसमें मुख्य रूप से जो हमें सबसे अच्छी उपलब्धि मिली है वो है कि हमारे जो प्रसव अस्पतालों में जो होता है, वो प्रसव हमारा लगभग 88.6 से बढ़कर 90.6 हो गया है। फिर जो बच्चों का टीकाकरण होता है वो लगभग 96% से ऊपर चल रहा है और सबसे अच्छी बात इसमें है कि लगभग 95.6% बच्चों को जितने भी टीकाकरण जो लगते हैं वो सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो मुझे लगती है उपलब्धि है, हमारे सरकारी स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूरे देश में फैले हुए हैं, जहां हम ये सुविधाएं देते हैं टीकाकरण का और जो हमारी ANM बहने बच्चों का टीकाकरण करती है। तो ये एक बहुत अच्छा हमें इसमें उत्साहवर्धक हमें सर्वेक्षण में ये रिपोर्ट आया है। दूसरा एक और है ANC, जो गर्भवती माताओं का प्रसव पूर्व जांच जो किया जाता है, वो करीब 92% से बढ़कर 95.9 वो हो गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस है हमारा। और बच्चों का जो टीकाकरण करते हैं, तो जो पूर्ण टीकाकरण वो 83.8% से बढ़कर 87.1% हो गया है। तो यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। पोस्ट नेटल केयर, जो प्रसव के पश्चात जो माताओं को सुविधा देनी है, उसमें बढ़ोतरी हुई है 79.1% से 85.3% वो बढ़ा है। तो इस तरह काफी सारे उत्साहवर्धक हमारे जो इंडिकेटर्स आए हैं, सभी चाहे वो मातृत्व की बात करें या शिशु की बात करें, अभी में ये बढ़ोतरी हुई है। और एक और मैं आंकड़ा भी बताना चाहूंगी, जो हमारे गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों में जो एक ये समस्या रहती है, उसमें काफी कमी आई है। तो जो स्टंटिंग और वेस्टिंग, हम सीवियर वेस्टिंग की बात करते हैं, इसमें काफी कमी आई है और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज काफी बढ़ा है, 41% से बढ़कर वो

0: 60.2% हुआ है। तो इसमें जो हमारा आयुष्मान भारत पीएमजे है, पीएम जन आरोग्य योजना, उसकी एक अहम भूमिका नजर आ रही है।
1: सो जैसा आपने मेंशन किया आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ऐसी और भी इसके जैसी जो प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उन्होंने आपको लगता है कि विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है?
0: हाँ, जो पहला मैंने कहा कि सबसे पहले जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था
1: जी।
0: उसका मुख्य उद्देश्य था कि हम स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों के समीप ले जाएं, और उसमें कई सारे पैकेजेस इसमें जोड़े गए थे। पहले हम लोग मुख्य रूप से मातृत्व और शिशु पर ही, स्वास्थ्य पर ही ध्यान देते थे, अब वृद्ध लोगों पर, फिर जो बढ़ते हुए एनसीडीज हैं उस पर भी ध्यान दे रहे हैं, ओरल हेल्थ, डेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जेरियाट्रिक केयर, पैलेटिव केयर, ऐसे और 6 पैकेजेस जोड़े गए। तो अभी कुल मिला के 12 पैकेजेस ये सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दिए जाते हैं,
1: और सभी आयु वर्ग के लिए।
0: मुझे खुशी है बताने में कि ये जो टोटल फुटफॉल की बात अगर हम करें 2018 से लेकर अब तक, लगभग 522.41 करोड़ लोगों ने इसका लाभ लिया है। और जब हम सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर की बात करें तो वहां पर जो हमारा आयुष्मान भारत पीएमजे आ गया
1: जी,
0: उसके माध्यम से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं। जो 5 लाख अगर कोई भी बीमारी है और उसका इलाज वो कराना चाह रहे हैं तो उसमें आयुष्मान कार्ड जो दिए जाते हैं, लगभग 44 करोड़ कार्ड दिए गए हैं और लगभग 12 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस ऑथराइज हुए हैं, और जो ट्रीटमेंट हुआ है अभी तक वो लगभग 1.85 लाख करोड़ का हमारे लगभग 36,000 पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के माध्यम से दिया गया है
1: जी।
0: और अगर हम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन की आप बात करें तो उसमें जैसे हमारे कई सारे ऐसे कार्यक्रम है, जैसे पीएम जनमन, जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, पीवीटीजीज, उन तक पहुंचने के लिए हम लोग मोबाइल मेडिकल यूनिट्स चलाते हैं जिसके माध्यम से हम उनके लिए कैंप्स करके उन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से ट्राइबल पॉपुलेशन को ध्यान देते हुए। जहां भी अगर हमारे स्वास्थ्य केंद्र 5 किलोमीटर के अंदर में नहीं है क्योंकि वहां आबादी बहुत कम है, तो वैसे जगह भी हम मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से यही जो 12 पैकेजेस की मैं बात कर रही थी वो हम उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हम हर महीने आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित करते हैं। ये शिविर हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में होता है, चाहे वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, चाहे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे जिला अस्पताल हो, और वहाँ पर स्पेशलिस्ट जाते हैं, जो सीएचसी जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस से स्पेशलिस्ट जाते हैं और वो विशेषज्ञ सेवाएं देते हैं। और उसी तरह जो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर्स है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, जहाँ पर सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ है, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स जाते हैं, तो डॉक्टर्स जाते हैं सेवाएं देने के लिए। इसके अलावा हमारा टेली कंसल्टेशन भी होता है जिसके माध्यम से डॉक्टर स्पेशलिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं अगर कोई मरीज ऐसे आए हैं जिनको वो स्पेशलिस्ट सेवा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दवा और डायग्नोस्टिक, जो मेडिसिन और डायग्नोस्टिक्स होते हैं, उसमें फ्री ड्रग इनिशिएटिव हमारा प्रोग्राम है और फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस इनिशिएटिव प्रोग्राम है, सरकारी अस्पतालों में वो मुफ्त दिया जाता है।
1: तो ये जो इतना व्यापक आपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमें बताया जो हमारे देश में उपलब्ध है, और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से जनधन, आधार, मोबाइल के बल पर जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो भी बहुत बढ़ गया है, लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई है आम आदमियों के पास, आपको लगता है कि प्रौद्योगिकी का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है? ये जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध भी है और उसके लिए जो पहुंच है वो भी आसान है एक आम नागरिक के लिए, इन दोनों चीजों में टेक्नोलॉजी का ओवरऑल क्या रोल है? ये जो हम पब्लिक हेल्थ इकोसिस्टम में इतना भारी एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं,
0: ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इसमें रोल है। अभी जैसे मैं बता रही थी कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम जो सेवाएं देते हैं 12 पैकेजेस, अगर वहां पर अगर किसी को कोई स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन की आवश्यकता है तो ई संजीवनी हमारा टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल है, इसके माध्यम से आप स्पेशलिस्ट से सेवाएं ले सकते हैं। फिर अगर आपको मानसिक कोई बीमारी है या मानसिक आपको कोई परेशानी है तो हमारा एक टेली मानस कार्यक्रम है जिसमें काउंसलर से डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर भी मैं बताना चाहूंगी, 1-44-16, ये टोल फ्री नंबर है, कोई भी डायल कर सकता है, और हमारे करीब ऐसे 53 सेंटर्स हैं जहां पर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, तो कोई भी अगर कनेक्ट करता है और उसको कोई भी मानसिक बीमारी है, अगर दवा की आवश्यकता है या कोई सुझाव की आवश्यकता है, परामर्श की आवश्यकता है, तो वो उनसे बात कर सकते हैं, काउंसलर्स बात करेंगे और फिर वो उन्हें साइकेट्रिस्ट से जोड़ेंगे। उसके

0: साथ साथ जो बता रही थी हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के जो मिशन है हमारा, उसके एनएचएम के माध्यम से जो हम विभिन्न कार्यक्रम चलाते हैं, चाहे एमएमआर कम करने की बात हो या अंडर 5 मोर्टेलिटी घटाने की बात हो या डिजीज एलिमिनेशन की, हर एक में हमारा पोर्टल है जिसमें हम ट्रैक करते हैं, एक एक मरीज को ट्रैक करते हैं। तो जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे हमारा यूविन पोर्टल है तो बच्चों का टीकाकरण इसमें पूरा ट्रैक होता है। तो हर बच्चे का जिस दिन ड्यू उसका डेट है उससे पहले माँ को वो मैसेज जाता है कि आप अपने बच्चे को निकटतम स्वास्थ्य उपकेंद्र में ले आइए टीकाकरण करने के लिए। अगर वो मिस कर गई तो उसको फिर जाता है कि भाई आप अपने बच्चे को लेकर नहीं आए, अगला ये डेट है उस पर जरूर आए। तो ये रिमाइंडर भी जाता है। वो घर बैठे बैठे अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकती है बच्चे का। तो इस तरह कई सारे हमारे पोर्टल्स है। एनसीडी के लिए एक अलग पोर्टल है जिसके माध्यम से हम जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, ओरल ब्रेस्ट, सर्वाइकल कैंसर, ये सभी की स्क्रीनिंग हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में करते हैं। उनका फिर ट्रैकिंग होता है कि उनको वो रेफर किए गए, फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, अंडर कंट्रोल है कि नहीं। टीबी का निक्षय पोर्टल है। तो इस तरह हर एक प्रोग्राम के लिए, लेप्रेसी के लिए निकुष्ट पोर्टल है। तो हर एक प्रोग्राम के लिए हमारा एक पोर्टल है जिसके माध्यम से ट्रैक करते हैं। और सबसे अच्छी बात और खुशी की बात मैं बताना चाहूंगी कि अभी हाल ही में हम लोगों ने इन सभी पोर्टल्स का भी इंटीग्रेशन करके एक स्वस्थ भारत पोर्टल लॉन्च किया है, और उसी के साथ साथ उसका स्वस्थ भारत ऐप भी लॉन्च किया है। इसके माध्यम से हम सभी के बीच में जो हम समन्वय स्थापित करना चाह रहे हैं कि मरीज तो एक है, उसको तीन प्रकार की बीमारियां हो सकती है, लेकिन पहले हम अलग अलग पोर्टल से ट्रैक नहीं कर पाते थे। अब इस स्वस्थ भारत पोर्टल से अगर उदाहरण स्वरूप अगर कोई गर्भवती माता है वो अपना चेकअप के लिए गई, लेकिन पहले वो 2 महीने पहले गई थी और डायबिटिक पाई गई थी, तो ये हमें बता देगा कि अब वो आई है गर्भवती माँ अपने चेकअप के लिए, लेकिन वो महिला पहले से डायबिटिक है। तो ये जानकारी प्राप्त करके फिर डॉक्टर उनको फिर विशेष परामर्श दे सकते हैं। तो ये डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से हम जो कहते हैं ना लास्ट माइल तक पहुंचना, आखिरी घर तक पहुंचना और आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना, वो हम कर पा रहे हैं। और
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे देश में प्रमुख उभरती स्वास्थ्य चुनौतियां क्या है।
0: इस सर्वे में काफी अच्छी प्रगति हुई, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चुनौती आज के दिन में हमारे लिए और इस सर्वे में भी ये आया है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। ये व्यक्ति के खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का एक बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो अगर व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो और वो अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करे, जैसे हम कहते हैं एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। इस सर्वे में भी आया है कि एनसीडीज बढ़े हैं, चाहे वो हाइपरटेंशन की बात करें, हाइपरटेंशन वैसे थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन डायबिटीज काफी बढ़ा है, एडल्ट ओबेसिटी बढ़ा है। तो ये एक दिखा रहा है कि अब हमें इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा जो NPNCD प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत हम लोग सभी 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हाइपरटेंशन, डायबिटीज और 3 प्रकार के जो कैंसर है, जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, ओरल ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर, इसका हम नियमित रूप से स्क्रीनिंग करते हैं। और 2018 से ये स्क्रीनिंग प्रारंभ हुआ, तब से लेकर अब तक हम लोग लगभग 42 करोड़ हाइपरटेंशन का स्क्रीनिंग कर चुके हैं और डायबिटीज का 42 करोड़ लोगों का कर चुके हैं, लगभग 35 करोड़ से ऊपर लोगों का ओरल कैंसर का स्क्रीनिंग कर चुके हैं, लगभग 16 करोड़ से ऊपर ब्रेस्ट कैंसर की महिलाओं का स्क्रीनिंग हो गया है और सर्वाइकल कैंसर का भी 9 करोड़ से ऊपर का स्क्रीनिंग कर लिए हैं। हमारे लिए यही चुनौती है कि स्क्रीनिंग तो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, वो भी सरकारी अस्पतालों में फ्री है, प्लस TMJ के तहत अगर आप एम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां भी ट्रीटमेंट आपका फ्री है। जो खुद को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है, एक्सरसाइज नियमित रूप से करना है, खाने पीने पर ध्यान देना है, कम तेल का उपयोग करना है, कम नमक का उपयोग करना है, कम चीनी का उपयोग करना है, ये इसको आम लोगों को इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है। एक और भी हम लोग करते हैं, ईट राइट कैंपेन हमारा FSSAI के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके माध्यम से हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में काफी अवेयरनेस कर रहे हैं। फिर आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोग महीने में 10 दिन वेलनेस सेशंस करते हैं जिसमें योगा, जुम्बा, ये सब भी किया जाता है, उसमें भी लोगों को जागरूक किया जाता है। हर व्यक्ति को खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। आज के दिन में चुनौती, हर कोई अगर खुद को स्वस्थ रखने के लिए खुद मेहनत करे तो सरकारी तंत्र पर बोझ काफी कम होगा। सरकार लगातार प्रयासरत है इसमें कार्य करने में और प्रिवेंशन पर ध्यान देने में, आशा बहनें उनको ट्रेनिंग दिया गया है और सभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है सभी को ट्रेनिंग दिया गया है जागरूक करने के लिए, लेकिन लोगों को भी खुद आगे आना होगा, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना होगा।
1: आराधना जी, आपने इतनी समग्र चर्चा की और जो हमारा देश का हेल्थ इको सिस्टम है उसमें क्या प्रगति हो रही है उसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला, आगे की संभावनाओं पर प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 प्रमुख निष्कर्ष, चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुर्खियों में। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म बुढ़ा मिल गया से। किशोर कुमार के स्वर, मजरू के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म एक फूल दो माली से। आशा भोसले की आवाज़, प्रेम धवन की शब्द रचना और रवि का संगीत।

0: गया जी।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। ये गीत अभी आपने सुना फिल्म मिस्टर एंड मिसेज 55 से। मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ें थी। मजरू के बोल और ओपी नैयर का संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं हसरत जयपुरी का लिखा यह गीत। सुनिए फिल्म संगम से मुकेश की आवाज़ और शंकर जयकिशन का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए फिल्म कारवां से, लता मंगेशकर के स्वर, मजरू के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

0: नूर देवासी का लिखा है गीत, अभी आपने सुना फिल्म किस्मत से, आशा भोसले के स्वर और ओपी नैयर का संगीत। श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
2: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं, ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है, एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करती हुई एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है, दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरो गोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि DK शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब DK शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 200,000 शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष। आज उसकी बढ़कर के संख्या 25-30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मार्तंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब, इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मार्तंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्यामे आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे, और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से 35 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा यह मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहता है।

0: खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई वो है विकास पत्रकारिता, विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आप कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है, वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थीं बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया, और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा

0: के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया, एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष। लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। यह मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ड्राइविंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहाँ पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है। आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है। आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है, तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
1: सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस
4: चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
5: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इतने भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
4: अच्छा।
5: क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कॉन्टेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे। शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं मीडिया एडिटिंग कर रहा था। जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें। तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की। स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है। बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के, ये हमारी सेविंग्स थी। तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया। एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कॉन्टेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो। तो ये हमारी स्टोरी चली। तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10 हजार से हमने शुरू किया था उस टाइम।
4: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है। एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी, आगे कैसे होगा। और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10,000 फॉलोअर्स थे, वो 10,000 भी कैसे आए? और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत उसको करना चाहते हैं, कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो?
5: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते। देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती है आसपास। अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से। लेकिन हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं, वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे। हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये।
4: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं।
3: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ। जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट नहीं करना मुझे, ये मेरे दिमाग में। लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सब इंडिपेंडेंट तो हो गए अब। तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग। पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से, फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता। तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम, जो फिर मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई। फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है।
4: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा? कैन यू गिव सम एग्जांपल?
3: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है, तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स हैं।
2: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं तो हर एक कंटेंट का एक यूएसपी होता है। जब हम आपका कंटेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं, संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
3: लोफर गामिनी।
2: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
3: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है, मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है। हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था, तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें। हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी, मुझे कुछ वर्ड, जैसे इंग्लिश वर्ड जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है तो उसमें, जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती, तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है। बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें।
5: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था। हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है, जब हम वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं, हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ेगा। तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा और दूसरा हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं।
2: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी, आपने पूरा इंडिया घूमा, तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक, तो हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो।
3: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है, बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए, लेकिन अभी तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया। और

0: दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला. और पता है ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहां पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है.
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
0: बहुत ही मजेदार होता है. हाँ,
1: तो एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राइपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
2: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को. हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 1 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ. उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी. मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, आप जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक. आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है. तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उस पर ही स्टार्ट करना चाहिए, वो ही इस्तेमाल करना चाहिए. पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमरा खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है. अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है. तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए.
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड
2: या ये जितना छोटा हो सके, मतलब
0: कॉम्पैक्ट रखो.
2: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है.
1: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस
0: मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स. हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है. हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है. ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो इस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं. आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना उसमें जो आइसक्रीम खाई थी बहुत मजा आया था और जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए. फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है. बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं.
2: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो. पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो.
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है. वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए. लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती. कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो. और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की. आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं. स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में.
4: जी धन्यवाद.
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी अब समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है. मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें. मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है.
3: तो आपको क्या लगता है कि अभी
5: जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
4: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग के, तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है, खासतौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटे की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उसपे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कंपोनेंट है
5: जी।
4: तो अगर आप सामान्य बीए बीकॉम बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
5: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी कारण से
4: जी,
5: वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह से रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं अगर इग्नू की बात करें तो?
4: देखिए ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप तो विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मोकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मोकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह लीविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही है राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रेसाइटल टुडे She presents Raag Maru Bihag. The first is Vilambit composition set to Ektaal with the lyrics Maan Taj Deho Pyare. This is followed by a Madhyalay composition set to Teentaal with the lyrics Mano Na Jiera Mora. She concludes this Raag with a Drut composition set to Ektaal with the lyrics Mano Na Hi Tumri Baat. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना के बोल हैं साजन बिन सुनी एरी आली, और द्रुत एक ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्यलय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिसनिंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग

0: उपयोग होता है, वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जाँच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:55 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।